मास्टर बिल्डर भी है, 2007 से ये अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आप जितने भी एंट्रीज डालना चाहते हैं, मल्टीपल एंट्रीज करना चाहते हैं, आप कर सकते हो, इस पर कोई रुकावट नहीं है। लेकिन ये याद रखना है आपको कि स्टैंडर्ड कैरियर रेट्स डू अप्लाई। तो IH लिखो, स्पेस दो, फिर अपना नाम लिखो और 5599 पर आप मैसेज कर दो, और हु नोज, शायद इस शो में ही आपका नाम लकी एंट्री रहे और यही नाम यानी कि आपका जो एंट्री है ये पिक हो जाए फ्राइडे 30th अक्टूबर को। तो जल्दी से जल्दी भेजो, जबकि दो गाने आपको सुनवाएंगे और कुल 5 मिनट्स का ही टाइम है आपके पास में। तो डू इट स्ट्रेट अवे और 5599 पर आपको भेजना है।

हम पर मैं हूँ अभी आपका साथ दे रहा हूँ, और जो प्रमोशन हमने आपके साथ में किया था यहाँ पर एंट्रीज आई है। मोहम्मद आपके नाम को भी शामिल कर दिया गया है ड्रॉ में, साथ में मोना, डोली, अविनाश, जाकिया और साथ में शनाया, शेरोन, उमेश और साथ में मोहन, आपके एंट्रीज को ड्रॉ में शामिल कर दिया गया है। एक और एक प्रमोशन है जो आपके साथ में रहेगा कुछ देर बाद, लेकिन अभी के लिए आपको रिमाइंड कर दूँ, दो के बाद स्ट्रेट आफ्टर न्यूज़ आपके साथ में रहेगा एपिक बॉलीवुड चैलेंज। इसमें भी आपको खेलना है, पार्टिसिपेट करना है। कोशिश हमारी ये रहती है हम पर कि कुछ आपको अलग सुनाए जस्ट चिल में, और इसी कारण से अगला जो गीत है रेमो फर्नांडिस की आवाज़ में है, और आई एम क्वाइट श्योर कि उनको कंपनी करने के लिए जसविंदर नरूला है, और ये भी आप सुनना पसंद करोगे।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Amsterdam AM.
1: With unmissable deals and huge reductions on the rest of the store, the savings are just too good to miss this weekend at Briscoe's. Shop unmissable deals and huge reductions on the rest of the store. But hurry, end Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.
2: I was 11 when I was put into an induced coma and airlifted to Starship. I have a rare lung condition, and my family gathered to say their goodbyes. But instead,
3: I woke up. The people at Starship saved my life, and now I have two beautiful kids of my own. Looking back, seeing how far I've come, I think little me would be so proud.
4: Mercury, helping Starship turn little into big for 25 years.
5: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
6: The Cooperative Bank's home loan crew are in the house. Check it. Got that home dream, but don't know where to start? Little KiwiSaver and lots of listings bookmarked. LIMS, LVRs, what does it all mean? Been checking out listings since 2019. Deposit, pre-approval. How much can I borrow? Let's make a plan today for your tomorrow. Talk to the Cooperative Bank's home loan crew. From first questions to front door keys, we got you. T's and C's apply.
7: दिवाली आ रही है और फॉर्च्यून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका लोटस मेनिकाओ माउंट रॉस्किल या बोटनी एंड नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी टू फॉर्च्यून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट बस एंट्री फॉर्म भरो रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो फॉर्च्यून दिवाली बी इन टू विन एंड 15th November टीज एंड सीज अप्लाई.
8: Shop fresh deals at New World North Island this week. Get skinless chicken thigh cutlets, $11.99 per kilo. Or avocado, $2 for $2.50. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
0: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
9: Just chill.
10: जश्न में मैं हूं अभी आपके साथ में, जबकि आज से नवरात्रि का जो उत्सव है ये शुरू होने जा रही है. और ऐसे में आप कहां कहां पर जा रहे हैं, जा सकते हैं अगर जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, तो रामकृष्ण मंदिर 25 ओंसलो एवेन्यू मेनेकाउ में आज से लेकर 20 तारीख अक्टूबर तक आप यहां पर शाम 6 बजे से जा सकते हैं, जहाँ पर कथा के बाद में गरबा और डांडिया रास भी रहेगा. इसके साथ साथ श्री हनुमान मंदिर 14 बे पार्क प्लेस बिगडेल नोचो में भी यहाँ पर कोडापा 6 से जो प्रोग्राम है शुरू हो जाएगी. उसके बाद में डीजे गरबा भी रहेगा और साथ में भजन जैमिंग भी रहेगा ऑन द 18th of October 8:30 PM. इसके अलावा श्री आदि शक्ति दुर्गा माता मंदिर यहाँ पर आज से लेकर 20 तारीख अक्टूबर तक 7 PM से लेकर 9 PM तक कथा रहेगी. 38A वोम्सली रोड ओटाहू ओकलैंड में आप जा सकते हैं. इसके साथ साथ में दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट ये भी ऑर्गेनाइज कर रहा है आज से लेकर 20 तारीख अक्टूबर तक 6:30 PM इन द इवनिंग आप जा सकते हैं एट द केव 5/57 कैवेंडिश ड्राइव मेनेकाउ, जो बिल्कुल वेयर हाउस के ठीक सामने है, और वहाँ पर आप जाकर कथा का आनंद ले सकते हैं. गरबा भी रहेगा, डांडिया भी रहेगी, खुद्दा तासा भी रहेगा डेली आफ्टर कथा. तो ये कुछ जगह है जहाँ पर आप जाकर भाग ले सकते हैं, माता रानी की कथा आप जाकर सुन सकते हैं.

आप सुन रहे थे कुमार शानू को हम पर, और मैं हूं आपका साथी अभी। कल रात को एक ज़बरदस्त मैच हुआ यहां ईडन पार्क में, जहां पर ऑल ब्लैक्स और वल्बीज के बीच में ब्लडी स्लो कप को लेकर चैलेंज हुआ, और यहां पर ऑल ब्लैक्स ने काफ़ी अच्छा मैच दिखाया है और 50-19 से इनकी जीत हुई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और ऐसा बताया जा रहा है कि जबकि मैंने मैच देखा भी है और काफ़ी ब्लिस्टरिंग स्टार्ट था वल्बीज का, और एक समय पर ऐसा लग रहा था कि शायद ये ट्रॉफी ब्लडी स्लो कप जो है हमारे हाथ से फिसल ही जाएगी, लेकिन जो यंगस्टर्स थे काफ़ी अच्छा खेल दिखाया, जैसे पीटर लकाई और साथ में डेमियन मैकेंजी थे, इन्होंने काफ़ी अच्छा खेल दिखाने के बाद में ऑल ब्लैक्स को एक जीत दिलाई और ब्लडी स्लो कप को एक बार फिर उनके हाथ लग गया है। जबकि 24 ईयर्स से ये जो चैलेंज है ब्लडी स्लो कप, इसको ऑस्ट्रेलिया जीतने की कोशिश कर रही है लेकिन नाकाम रही है। तो 24 स्ट्रेट ईयर्स तक इस ट्रॉफी को, ब्लडी स्लो कप को, ऑल ब्लैक्स अपने पास रखेगी और नेक्स्ट ईयर विल बी अनदर ईयर जहाँ पर ये चैलेंज करेंगे। लेकिन जो रिटर्न मैच है ये सिडनी में होने को है नेक्स्ट वीक, जहाँ पर ऑल ब्लैक्स के कुछ खिलाड़ी शायद रिटर्न मैच में नज़र नहीं आएंगे क्योंकि कुछ खिलाड़ी को चोट भी लगी है। तो यहाँ पर जो क्राउड थी क्लोज टू 50,000 लोग थे ईडन पार्क में जिन्होंने गेम जाकर देखा। तो अगर जो आपने भी इस खेल को देखा, एंजॉय किया, इट वाज अ लवली मैच, और 50-19 से ऑल ब्लैक्स की शानदार जीत यहाँ पर हुई।

0: Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: Keep calm because Punjabi swag is on.
2: Hey, hey.

0: Just chill.
1: That's right, this is me, Avi, keeping you company. 15 मिनट बाकी रह गए हैं 2 बजने में. 2 पर आपके लिए रहेगा समाचार, और समाचारों के ठीक बाद हमारा जो खेल रहता है एपिक बॉलीवुड चैलेंज, ये भी आपके साथ में रहेगा. लेकिन अभी के लिए आपको बता दूं, दिवाली स्पेशल ऑन हम आ रहा है, जबकि हमने एक सोचा है, एक नया ख्याल कि आपके लिए लेकर आए, प्रेजेंट करेंगे ओनिया रामायण, एक गाथा दिवाली को लेकर, जहाँ पर एक स्पेशली प्रोड्यूस किया गया सीरीज़ है, जो कि 1 से लेकर 2 मिनट के अंदर अंदर आपको रामायण की जो कथा है, जो चरित्र है, इसके बारे में आपको बताएगा, और साथ ही साथ में जो कैरेक्टर्स है इसको लेकर भी काफ़ी बातें होंगी विद इन टाइम स्पेन ऑफ 1 to 2 मिनट्स. तो अगर जो आप अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं रामायण से, तो ये एक अच्छा मौका रहेगा, जबकि दिवाली स्पेशल ऑन हम, और दिवाली को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आएगा रामायण एक गाथा, जिसे आप जल्द से जल्द सुन सकेंगे ओनली ऑन हम. तो ये सभी कुछ आपके लिए दिवाली को खास में ध्यान रखते हुए ये तैयार किया गया है. तो 1 से लेकर 2 मिनट के अंदर अंदर ही आप जो कथा है, प्रसंग है, जो चरित्र है, इसको आप सुन पाएंगे, और जल्द से जल्द ये होने वाला है हम पर. तो समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, रामायण एक गाथा.

0: में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: बिग बाजार में बिगेस्ट रेंज ऑफ पूजा घर मिल रहे हैं। प्योर मार्बल मूर्तिज, कॉपर मूर्तिज, गन मेटल मूर्तिज, देवी देवताओं के वस्त्र, सभी तरह के हार एंड एक्सटेंसिव रेंज ऑफ पूजा आइटम्स, बिग रेंज ऑफ कंसोल टेबल्स, मिरर्स, कर्टन्स, सोफा कवर्स, बीना एंड लाहौर ब्रांड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी अवेलेबल है। बिग बाजार 302 ग्रेट साउथ रोड, पापटोई, योर वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन दिस नवरात्रि।
2: फ्री गोल्ड कॉइन्स ऑन डायमंड ज्वेलरी, सीरियसली माही?
3: यस बेबो।
2: कैच क्या है?
3: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ। डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री गोल्ड कॉइन्स, साथ ही सिलेक्टेड ज्वेलरी पर डायमंड वैल्यू और मेकिंग चार्जेस में अप टू 40% ऑफ का फायदा उठाओ।
2: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच।
3: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो। दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, बॉटनी टाउन सेंटर, ईस्ट ऑकलैंड,
4: पीएनसी सप्लाई।
5: Time check.
6: Brought to you by Maan Tyres. For all kinds of tyres and mechanical services. Open 7 days. Call Maan Tyres on 0800-00-00-10.
5: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
7: Good afternoon to you. I'm Jeff Bryan with the latest at 2. National is pledging to set nationally consistent start and end dates for schools, along with a new policy on requiring students to stay on until they finish Year 11. Education spokesperson Erica Stamford says they will also standardise the school calendar if re-elected.
8: Parents have told us how frustrating it is that when different schools have different start and finish dates, those families who've got children at more than one school often mean having to take additional days leave or find expensive childcare.
7: The Labour Party has released what it's calling the Cost of Living Action Plan. The document lays out the party's promises to voters regarding the cost of living. And the Green Party says it will guarantee a pathway into education, training or a new job for every 16 to 24-year-old who's been out of work for 6 months. The policy, released in Auckland today, is expected to cost $4.86 billion over 4 years. American prisoner Krista Pike has been discharged from hospital and returned to the facility she spent decades in before that botched execution attempt. It's not clear if authorities will try to carry out her death sentence again. To sport, motorsport with Magan Turbo's 80,000k tyre warranty. The Bathurst 1000 underway at Mount Panorama. Aaron Seaton co-driving for pole sitter Zach Bates away safely and leading in the early going. Kiwi Matt Payne with partner Will Davison at the wheel up to 8th from 10th on the grid. To the final MPC quarterfinal of the weekend, Canterbury and Waikato joining or vying to join Northland, Taranaki and Otago in next weekend's semis. And Canterbury up 14-0 over Waikato, still early in the first half.
9: Sports News.
5: Brought to you by

0: You're listening to Avineet.
1: That's right, मैं हूँ अभी आपके साथ में, जबकि 2:02 हो रहे हैं। तो ऐसे में इस हवा पर हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे एपिक बॉलीवुड चैलेंज के साथ में, जहां पर आपको क्लूज देंगे और बेस्ड ऑन दोज क्लूज आपको पहचानना होगा कि किस गाने के बारे में हम बात कर रहे हैं, और अपने नाम के साथ में जवाब 5599 पर टेक्स्ट करना होगा। तो समय उतना ही रहेगा जैसे ही आपको क्लूज बताना शुरू करेंगे, और गाना बजाने से पहले उसके बीच का जो समय है उतने ही दौरान आपको अपना जवाब हमारे पास में भेजना होता है। जो सबसे पहले अपना जो मैसेज है हमारे पास में भेज देता है वही उस वीक का विनर ठहराता है। जैसे लास्ट वीक दिवनेश आनंद ने पहचाना था आशिकी का टाइटल ट्रैक और सबसे पहले अपना जवाब भेज दिया था, और इसी कारण वो लास्ट वीक के विनर ठहरे थे। तो आज भी एक इंटरेस्टिंग सॉन्ग है जिसको हमने सेलेक्ट किया है आपके लिए, होपफुली आप इसको पहचान पाए और अपना जो जवाब है 5599 पर हमेशा की तरह आज भी आप भेज पाए। जो हमारे यूजुअल कॉन्टेस्टेंट्स है, फाल्गुनी है, साथ में ऐश है, और इनके साथ में दिवनेश भी है और गौरव है, आप सभी आज फिर से दोबारा अटेम्प्ट करें और ट्राई करें, शायद आपको पता चले। तो हियर इट गोज। 1999 की इस फिल्म ने क्रिटिक्स और साथ में बॉक्स ऑफिस दोनों को इम्प्रेस किया। ये एक प्योरली म्यूज़िक बेस्ड फिल्म है और इस फिल्म का नाम भी यही सजेस्ट करता है कि कहीं ना कहीं म्यूज़िक से ही जुड़ा है। इसका मतलब हुआ, नाम का मतलब हुआ रिदम, और आज का जो गाना है इस फिल्म का टाइटल ट्रैक भी है। ये कहानी है मानसी, मानव और विक्रम कपूर की, डायरेक्टेड बाय शोमैन सुभाष घई। मानसी को प्ले किया है ऐश्वर्या राय बच्चन ने, जहां मानव को प्ले किया है अक्षय खन्ना ने, और विक्रम कपूर को जो कास्टिंग हुई थी इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है। सुभाष घई ने सबसे पहले चूज़ किया था या फिर ऑफर किया था इस फिल्म को गोविंदा को प्ले करने के लिए फॉर द रोल ऑफ विक्रम कपूर, लेकिन उन्होंने टेन डाउन कर दिया और यही कहा कि इस पिक्चर का जो मेन हीरो है वो है ऐश्वर्या राय, क्योंकि इनके ऊपर ये कहानी बेस्ड है, और फिर जो दूसरे हीरो है ये है अक्षय खन्ना, क्योंकि उसके बाद में इनका ही नंबर आता है और उनके हिसाब से ही इज़ द थर्ड लीड ऑफ द फिल्म। तो उन्होंने यही कहकर एक्सक्यूज़ किया अपने आप को और फिल्म से अलग हो गए। फिर मेकर्स ने अप्रोच किया अनिल कपूर को और उन्होंने विक्रम कपूर को बहुत ही बेखूबी से निभाया। इस फिल्म के सारे गाने बहुत अच्छे थे और सुभाष घई की बाकी फिल्मों से काफ़ी अलग सुनाई दिए। इसका एक कारण ये भी है क्योंकि सुभाष घई ने मेजोरिटी फिल्म्स में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को ही यूज़ किया था, शायद वो राम लखन हो या फिर कोई और फिल्में हो उनकी, जहां पर ज़्यादातर के उन्होंने यूज़ किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को। लेकिन इस फिल्म से पहले परदेश भी आई थी जिसमें उन्होंने नदीम श्रवण को भी यूज़ किया था, तो इसीलिए उसका भी साउंड ट्रैक काफ़ी अलग आपको साउंड करेगा। लेकिन इस बार के लिए पहली बार वो टीम अप हुए थे अय्यर रहमान के साथ में। अय्यर रहमान काफ़ी लोग बताते हैं कि ये ज़्यादा रात को ही काम करते हैं और उनकी जो रिकॉर्डिंग्स है ये रात को ही होती है। इसके बारे में कई बॉलीवुड सिंगर्स ने कंप्लेन भी किया है कि इनके साथ में इसी कारण से काम करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जबकि वो रात में ही काम करते हैं दैट्स व्हेन ही क्रिएट्स मैजिक, और ऐसा ही मैजिक उन्होंने क्रिएट किया है इस गाने के साथ में। इस फिल्म की कहानी एक लव स्टोरी है, लेकिन कैसे पैसा कला पर भारी पड़ जाता है और फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण रोमांटिक लीड्स को बिछड़ना पड़ता है, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, यही कहानी है। स्टोरी का एक एंगल ये भी है कि गांव में फोक सॉन्ग्स गाने वाली फैमिली के गानों को कैसे एक रिच अर्बन म्यूज़िक कंपनी चुरा कर रिमिक्स करती है और फिर उसे बेचती भी है। वहीं बाद में उसी म्यूज़िक कंपनी का हेड मानसी को काम देकर कामयाबी तक पहुंचाते भी है, और फिर अल्टीमेट डिसीशन जो होता है वो मानसी के ऊपर निर्भर करता है, हु डज शी चूज। ये क्लाइमेक्स तक आकर कहानी ख़त्म होती है। अगर जो आपको पता लगता है कि किस फिल्म के गाने के बारे में बात हो रही है तो 5599 पर जल्दी से मैसेज करो अपने नाम के साथ में। और एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया ये भी है इस फिल्म का, एक और गाना है इस फिल्म का कहीं आग लगे लग जाए, अगर जो आप इसको ध्यान से देखोगे, गौर से देखोगे, तो यहाँ पर एक यंग शाहिद कपूर को आप देख पाओगे ऐश्वर्या राय के बिल्कुल करीब, और वो अपिया होते हैं एज अ बैकग्राउंड डेंसर, जबकि उस समय उनकी खुद की करियर शुरुआत नहीं हुई थी। इसका टाइटल ट्रैक को आप फिल्म में दो बार सुन या देख पाएंगे. एक तो क्लासिकल वर्जन है जिसे आज हम बजाएंगे और दूसरा एक वेस्टर्न वर्जन भी है. क्लासिकल वर्जन को गाया है उदित नारायण साथ में अलका याग्निक ने और जो वेस्टर्न वर्जन है इसको सुखविंदर सिंह ने गाया है. इंटरवल पॉइंट पर आप इसे देख पाते हैं जहाँ पर अनिल कपूर का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है. इस फिल्म की रिलीज पर फिल्म को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया था जहां पर अनिल कपूर को और उनको ये अवार्ड भी मिला था. अलका याग्निक को इसी गाने के लिए बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड दिया गया था और ए.आर. रहमान को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का भी अवार्ड मिला था. तो अगर जो आपको पता है कि किस फिल्म का टाइटल ट्रैक था 5599 पर जल्दी से भेजो हमारे पास में जबकि गाना बस प्ले ही होने वाला है.

यही था आज का जो एपिक बॉलीवुड चैलेंज, और इसी गाने को आपको आइडेंटिफाई करना था, और काफ़ी लोगों ने अटेम्प्ट किया, अपना जो मैसेज है हमारे पास में भेजा, और सबसे अगर जो मैं टेली में देखूं तो जो लास्ट मैसेज आया है श्रुति आपका आया है, उसके बाद में क्वीन आपने भी मैसेज किया, साथ में नायशा आपका भी जवाब आया है, रीचा आपने भी भेजा है, थैंक यू सो मच। इसके अलावा मेघा आपने भी जवाब भेजा है, उमेश आपका भी मैसेज हमको मिला। उमेश, मेरे ख्याल से मैंने जब पलटकर अपने पन्नों को देखा तो लास्ट आपने जीता था 21st of December 2025। उमेश आपने पहचाना था खुदा गवाह का गाना तू ना जा मेरे बादशाह, उसके बाद में मेरे ख्याल से आज आपका मैसेज आया है, लेकिन एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर ट्राइंग एंड प्लेइंग। लेकिन आज का जो सबसे पहला मैसेज था ये हमारे पास में दिवनेश आनंद ने भेजा है, एंड ही हैज़ डन वंडर्स, क्योंकि दो स्ट्रेट विंस इनका हो गया है कंसेक्यूटिव वीक्स में, तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हुआ था पहले, और दिवनेश ने लास्ट वीक भी जीता था और इस वीक भी अपना जो जवाब है सबसे पहले भेजा था, तो वेल प्लेड, थैंक यू सो मच पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर जो लीडिंग कॉन्टेंडर्स देखे तो इतना सीरियसली हम इसको लेते हैं कि टेली किया जाता है, तो दिवनेश इज विथ 4 wins, जबकि जुलाई से इन्होंने खेलना शुरू किया है, तो जुलाई से लेकर अब तक 3 महीनों में इन्होंने 4 wins हासिल किए हैं। श्रुति इज़ एट नंबर 4 एज वेल, और फाल्गुनी जिन्होंने आज नहीं अटेम्प्ट किया, नहीं खेला, ये अभी भी लीड कर रही हैं विद 5 wins। तो आप सभी को थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीक एक और एक गाना कोई लेकर आएंगे बढ़िया सा आपके लिए, जिसे आप खेल सकेंगे एट स्ट्रेट आफ्टर 2 जस्ट चिल में। अभी थोड़ी देर में आपके पास में एक और एक प्रमोशन का मौका भी लेकर आऊँगा, और ये सभी कुछ रहेगा, लेकिन आज के लिए आप सभी को शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ये अगला गाना आप सभी के नाम डेडिकेट करते हैं।

104.2 FM साथ में रोवा पर आप सुन रहे हैं मुझे, मैं हूं आपका साथी अभी। कुछ और इंटरेक्टिव करने की कोशिश कर रहा हूं, चलो एक बार फिर ट्राई किया जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि घर पर ऐसा कौन सा काम है जो आपको बिल्कुल करना पसंद नहीं है? कोई एक ड्यूटी होगी जिसको लेकर आप हमेशा परेशान हो जाते हैं या फिर आप ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, यानी कि आपको वो असाइन किया जाता है लेकिन आप किसी और को बहलाकर फुसलाकर आप उनको देना चाहते हैं वो काम, ताकि ये काम आपको ना करना पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर जो मुझे नेक्स्ट डे का लंच भरना को कहा जाए तो मैं ये नहीं करता, कतराता हूँ ये करने से, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है। और इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि घर पर कोई और ये काम कर दे और उनके लिए मैं कुछ और बदले में कर दूँ। तो ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को कोई काम शायद पसंद नहीं हो, शायद वो बिन्स, रबिश बिन्स बाहर निकालना हो रास्ते पर कलेक्शन के लिए, या फिर फोल्डिंग ऑफ क्लोथ्स, घर पर अगर जो कपड़े धुले हैं और आपको उनको फोल्ड करना है, ये आपको पसंद नहीं है और आप अक्सर उसको ट्रेड करने की कोशिश करते हो, किसी और को देना चाहते हो या फिर बहला फुसला कर आप उनको डिजर्ट प्रोमिस कर देते हो। तो अगर जो आपके पास में कोई ऐसा काम है जिससे आप बिल्कुल खुश नहीं है, जो आपको असाइन किया जाता है, एंड उसके बारे में आप 5599 पर टेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर इस बार के लिए मैं 0800004866 पर आपसे बातें भी करना चाहूँगा कि ऐसा कौन सा काम है जो आप हमारे साथ में शेयर कर सके जो आपको बिल्कुल करना पसंद नहीं है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, और आपको याद दिला दूं क्योंकि अक्सर लोग भूल जाते हैं, ये टोल फ्री नंबर है, 0800 नंबर है, इसीलिए आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं हमारे पास में, शेयर कर सकते हैं कि आपको ऐसा कौन सा काम है घर पर जो बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे रिचा ने लिखा है, इनको आयनिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, और हाँ ये काफ़ी मुश्किल का काम है क्योंकि अगर जो आप स्पेशली समा में इसको करते हो तो एक तो आपको खुद गर्मी लगने लगती है और फिर उसके बाद में टन्स एंड टन्स ऑफ क्लोथ्स होता है जो अक्यूमुलेट हो गया है ओवर टाइम, और ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आई टोटली अंडरस्टैंड। और कुछ लोगों को शायद डिश वॉशर लोड करने में आपत्ति होती है, बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तो आप हमें बताइए कि ऐसा कौन सा काम है, ड्यूटी है घर की, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है एंड यू कुड ट्रेड इट ऑफ विदाउट अ थॉट, यानी कि कुछ और करना बिल्कुल पसंद करोगे। तो चलो एक और एक गाना सुनवाते हैं, उसके बाद में आई एम होपफुल कि कोई ना कोई ऑनलाइन आकर बातें करेंगे और बताएंगे कि उनको स्पेसिफिकली क्या पसंद नहीं है।

0: चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
1: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
0: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
1: इंटरेस्टिंग। और कुछ?
0: बस इतना ही।
1: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
2: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटिफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry. And Fortune, bring home the fortune.
3: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. 140cc quality lawn mowers, just $249. Cordless leaf blower and battery, just $70. Cordless weed eater and battery, just $70. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
4: Do 8 Sudokus. Save 3 people's lives. Count the holes in a ceiling tile or just count the edges and then multiply it. 2 chapters of an audiobook about stoicism. Help create life-saving products. Watch a round of darts. Take a small nap.
5: These are some of the things you can achieve in one blood or plasma donation at your local NZ Blood Donor Centre or mobile drive. Visit nzblood.co.nz to book your blood or plasma donation appointment.
6: Power into summer with Powerball. There's 100 extra prizes of $20,000 that must be won. Get a triple dip at your local Lotto NZ store or online. Prizes drawn 17th October. T's and C's apply.
7: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing, or buying a business or commercial property. Parmesh can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800 634 234. TCs and lending criteria apply.
8: This weekend's to-do list is filling up fast. Kids' activities, visiting the grandparents. But Woolworths takes going shopping off the list with delivery right to my door. I can even sit down before it arrives. That's my kind of Woolies.
9: दिवाली आ रही है और फॉर्चून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका। लोटस मेनिकाओ, माउंट रॉस्किल या बोटनी एंड नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी टू फॉर्चून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश। साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट। बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो। फॉर्चून दिवाली, बी इन टू विन, एंड 15th November, टीज एंड सीज अप्लाई।
10: जबरदस्त हिट्स
11: शुरू हो जाए तो रुकते नहीं,
10: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
12: हम पर जशिल में मैं चर्चा कर रहा था आपके साथ में, ऐसा घर का कौन सा काम है जिसको आपसे यूँ कहें कि आप उसको ट्रेड करने में बिल्कुल हमेशा तैयार होते हो क्योंकि आपको बिल्कुल पसंद नहीं है वो काम करना घर पर। तो हमारे पास में जब तक ये गाना बज रहा था, राजू ने कॉल किया और राजू ने बताया कि मैं ओने या तो नहीं आऊँगा लेकिन उन्हें वैक्यूम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये हमारे साथ में राजू ने शेयर किया। और अगर जो आपके पास में भी कोई ऐसा ड्यूटी है, जो टास्क है जो आपको असाइन किया जाता है और आपको इसको लेकर हमेशा परेशानी होती है क्योंकि आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई भी काम हो सकता है घर का और इसे आप हमेशा ट्रेड करने के लिए रेडी होते हो या फिर किसी को देना चाहते हो, किसी और को असाइन करना चाहते हो, तो इसके बारे में आप 5599 पर टेक्स्ट भी कर सकते हैं या फिर हमारे पास में 0800004866 पर कॉल करके बातें भी कर सकते हैं। अब की बार आपको सुनवाते हैं आतिफ असलम की आवाज़ में ये अगला तराना।

0: opportunity.
1: Liverpool investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.
2: हम पर 20 मिनट्स अवे फ्रॉम 3 अभी का साथ है और एक और एक कम्युनिटी न्यूज है हमारे पास में जो आपके साथ में शेयर कर लेता हूं. B.R. अंबेडकर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब ये अपना जो 34th एनुअल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल टूर्नामेंट है 24th एंड 25th अक्टूबर को होस्ट करेगी. तो ये डेट्स आप मार्क कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग जो गेम्स है यहाँ पर आयोजन किया जाएगा. 2-day इवेंट है जहाँ पर खेलों में शामिल है कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल और टग ऑफ वो. तो अगर जो आप इसे देखना भी चाहते हैं तो 24th और 25th ऑफ अक्टूबर को ये रहेगी. इसके अलावा बच्चों के लिए भी काफ़ी फन एक्टिविटीज़ हैं, साथ में महिलाओं के लिए भी लेमन एंड स्पून रेसेस, म्यूजिकल चेज और साथ में बच्चों के लिए भी कुछ और गेम्स को ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा. एंट्री बिल्कुल फ्री है लेकिन यहाँ पर आपको रजिस्टर होना पड़ेगा. तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप प्रदीप को 021-238-5948 पर कॉल कर सकते हैं. और जबकि इन्होंने अभी तक वेन्यू कन्फर्म नहीं किया है तो प्रदीप से आप बातें करके ये भी पूछ सकते हैं. ऑल ऑफ दिस बस आप थोड़ी देर में आपके साथ में रहेगा एक और एक जो प्रमोशन बचा है जो फॉर्च्यून फेस्टिवल जो है यहाँ पर जो $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस इस दिवाली आप जीत सकते हैं विद हम. जो ड्रॉ होने को है 30th अक्टूबर इसके अंतर्गत आपको बस थोड़ी देर में एक और एक चांस देंगे ताकि आप भी अपने आप को इसमें इस ड्रॉ में शामिल कर सकें.

0: 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
7: With unmissable deals and huge reductions on the rest of the store, the savings are just too good to miss this weekend at Briscoe's. Shop unmissable deals and huge reductions on the rest of the store. But hurry, end Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.
8: Voting feels easier when you know what to expect. Accessible resources are available to help you prepare to vote in the 2026 general election. Get information in the format that works for you. Choose from audio, braille, easy read, large print, and New Zealand Sign Language. Visit vote.nz or call 0800 36 7656. You can vote from Monday 26 October to 7 p.m. on Election Day, Saturday 7 November. Brought to you by the Electoral Commission.
9: A message for all parents. Kids aged 12 and under can now ride their bikes on footpaths, and parents or caregivers can ride with them. Remember to look out for children on bikes when driving in and out of driveways. Learn more at nzta.govt.nz.
10: दिवाली आ रही है और फॉर्च्यून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका। लोटस मेनिकाओ, माउंट रॉस्किल या बोटनी इन नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी टू फॉर्च्यून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश। साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट। बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो। फॉर्च्यून दिवाली, बी इन टू विन, एंड्स 15th November। टीज एंड सीज अप्लाई।
11: इस दिवाली घर को दियो के साथ सोना संसार के गहनों से भी रोशन कर डालिए।
12: अरे तेजल, चल जल्दी जाइए धनतेरस माटे शॉपिंग करवा सोना संसार में। तने जे पसंद पड़े ए बाय करी लेजे। लेटेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन के लिए एक ही पता, सोना संसार।
11: दिल वाली दिवाली सोना संसार के साथ 190 स्टोरा रोड, माउंट रॉस्किल। कॉल 09629333।

और साथ में फर्नीचर आपको मिलेगा। हैरिंगटन लिविंग जो सिचुएटेड है मेनेकाओ में, स्प्रिंग सेल यहाँ पर अभी चल रहा है उनके ब्यूटीफुल फर्नीचर के लिए, जहाँ पर 60 मंथ्स का इंटरेस्ट फ्री रेट भी है। तो आप ये सभी कुछ जाकर ले सकते हैं हैरिंगटन लिविंग मेनेकाओ में। और अभी के लिए अगर जो आप अपना लक आजमाना चाहते हैं तो HL लिखकर, H for Harrington, L for Living, HL लिखकर स्पेस दे, फिर अपना नाम लिखे और टेक्स्ट कर दे 5599 पर। HL लिखे स्पेस दे फिर अपना नाम लिखकर 5599 पर टेक्स्ट करें, ताकि आपके नाम को ड्रॉ में शामिल किया जाए, ताकि ये वाउचर होपफुली आपके हाथ लग सके। तो ये सभी कुछ है आपके पास में, सिर्फ समय है 5 मिनट्स का, जल्दी से भेजो। और जो स्टैंडर्ड कैरियर रेट्स है ये अप्लाई करते हैं, तो इसका भी ख्याल रखिएगा। लेकिन यू कैन सेंड एज मेनी एंट्रीज एज यू वांट, तो जितनी बार आप टेक्स्ट करना चाहते हैं HL विद अ स्पेस इन योर नेम आप अभी कर सकते हो।

Unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

0: You're listening to Avineet.
1: मैं हूं अभी आपका साथ दे रहा हूं एंड इट्स 301 हियर इन आवर स्टूडियोज और जबकि 6 तक हमारा और आपका साथ रहेगा. इसका मतलब हुआ ये वी आर हाफ वे थ्रू द शो, देखते ही देखते और इसी तरह से आपका साथ देते रहेंगे. अगर जो आपको भी कुछ सुनना है, कोई स्पेशल तराना है, नगमा है जिसे आप सुनना पसंद करोगे, तो 5599 पर अपने जो रिक्वेस्ट है आप हमारे पास में भेज सकते हो. इसके अलावा बस थोड़ी देर में आपके साथ में एक नंबर्स गेम का भी सवाल लेकर आएंगे एंड इसको भी हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं. तो चलो आवा की शुरुआत करते हैं विनीत सिंह की आवाज में. यह अगला तराना है, इसको आप जरूर सुनना पसंद करोगे.

हम पर मैं अभी आपके लिए लेकर आया हूँ जशिल में नंबर्स गेम, जहां पर कुछ एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपको देते हैं, इसके बारे में आप पता लगाते हो। तो आज के लिए सिनेरियो कुछ ऐसा है, एक 60 सीटा बस है जहां पर पैसेंजर्स से ये 2/3 फुल है। तो 60 सीटा बस है जहां पर पैसेंजर्स यहां पर 2/3 फुल है और स्टैंडर्ड बस फेयर है $2 पर पर्सन। तो आपको ये पता लगाना है कि बेस्ड ऑन दिस कि जबकि बस 2/3 फुल है 60 सीटा बस, तो इसके हिसाब से कितने लोग हैं और टोटल जो फेयर बनता है सारे पैसेंजर्स का ये कितना कलेक्ट हुआ। तो एक 60 सीटा बस है जहां पर पैसेंजर्स से ये 2/3 फुल है और स्टैंडर्ड बस फेयर है $2 पर पर्सन। तो आपको यही कैलकुलेट करना है कि जबकि बस 2/3 फुल है तो इसके हिसाब से कितने लोग हैं और कितना टोटल फेयर कलेक्ट हुआ। आपको 5599 पर हमारे पास में अपना जो जवाब है भेजना है।

0: ब्यूटीफुल सॉन्ग, अगर जो आप अपने कॉफ़ी या चाय का मज़ा ले रहे हैं। और जो सवाल हमने किया है इसका जवाब हमारे पास में भेजा है उमेश ने सबसे पहले, और उसके साथ में एक और एक पेशेंट ने भेजा, अपना नाम नहीं लिखा लेकिन आखिरी डिजिट्स आपके हैं 5603, और आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया है। तो अभी तक सिर्फ दो लोगों ने अटेम्प्ट किया है, एक बार फिर इसको दोहरा दूँ। एक 60 सीटा बस है जो पैसेंजर्स से 2/3 फुल है, और स्टैंडर्ड बस फेयर है $2 पे पेशन। तो अगर जो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जो 2/3 के हिसाब से जो कि पैसेंजर से बस फुल है तो कितने लोग हैं, और इनके मुताबिक से कितने टोटल बस फेयर कलेक्ट हुआ है, अगर जो आप ये जोड़ पाते हैं, कैलकुलेट कर पाते हैं, तो 5599 पर ज़रूर हमारे पास में अपना जवाब भेजें। या फिर इसका जवाब आप ओनिया भी देना चाहते हैं तो 0800004866 इज़ द नंबर, यहाँ पर आप कॉल भी कर सकते हैं, या फिर अपने नाम के साथ में 5599 पर जवाब भेजो। एक बार फिर से 60 सीटा बस है जो कि 2/3 पैसेंजर्स से फुल है, स्टैंडर्ड बस फेयर है $2 पे पर्सन, और इसके हिसाब से जबकि बस 2/3 फुल है और $2 पे पर्सन भाड़ा है बस का, तो कितने लोग हैं और टोटल कितना फेयर कलेक्ट हुआ, ये आपको अंदाज़ा लगाना है।
1: जबरदस्त हिट्स
2: शुरू हो जाए तो रुकते नहीं।
1: Playing Bollywood's biggest hits.
3: हम हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
4: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
3: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
4: इंटरेस्टिंग, और कुछ?
3: बस इतना ही।
4: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
5: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 months इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु कंडोला, a household name in finance and insurance industry, and Fortune. Bring home the fortune.
6: At Bunnings, you can make any home spooky this Halloween with our new range. We've got inflatables, stake lights, and even animatronics. Plus, we've got buckets for the kids trick-or-treating. Come and get more Halloween for less.
7: Bunnings Warehouse.
8: दिवाली आ रही है और फॉर्च्यून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका। लोटस मैनिकाओ, माउंट रॉस्किल या बोटनी एंड नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी 2 फॉर्च्यून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश। साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट। बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो। फॉर्च्यून दिवाली, बी इन टू विन, एंड 15th November, टीज एंड सीज अप्लाई।
9: Glad I got my enrollment sorted the other day.
10: See, mate, I told you it was easy.
11: Enrollment for voting? I still haven't done mine. The election isn't until November. I've got time, right?
10: No, not this year. You need to be enrolled by the 25th of October. You can't enroll and vote on the same day.
11: Really? What if I miss it?
10: Well, your vote won't count for this year's election.
11: Achcha, you've convinced me. I'll enroll tonight.
12: Last chance to enroll is midnight 25 October. Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
13: Shop fresh deals at New World North Island this week. Get skinless chicken thigh cutlets, $11.99 per kilo, or avocado, 2 for $2.50. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
14: मैं हूँ हरीश लोडिया। दिवाली की धूम एट सोना संसार, नया स्टॉक्स ऑफ 22 कैरेट ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी की स्टॉक्स आ गया है, सिल्वर स्टॉक्स और सोने और चांदी की बिस्किट्स आ गया है, लक्ष्मी गणेश और प्योर चांदी के मूर्तियाँ वो भी आ गई है, डायमंड ज्वेलरी इंक्लूडिंग न्यू अराइवल्स ऑल एट हाफ प्राइस। सोना संसार 190 स्टोरार्ड रोड माउंट रॉस्किल, या फिर 138 ग्रेट साउथ रोड पेपरटोए, कॉर्नर ऑफ ईस्ट तमाकी एंड ग्रेट साउथ रोड। हमारा फोन नंबर 6293333। फॉर स्पेशल डील्स विजिट आवर वेबसाइट sonasansar.co.nz।
15: न्यूजीलैंड के रीसेंट फ्लड्स ने काफी डैमेज किया है।
7: Focus Kitchen सारे न्यूजीलैंडर्स की तरह इन विक्टिम्स के साथ खड़े हैं एंड आर हेल्पिंग देम गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ बाय हेल्पिंग देम आउट विद देयर किचन कैबिनेट्स. Focus Kitchen प्रोवाइड कर रहे हैं अ वेरी स्पेशल प्राइस फॉर पीपल विद फ्लड डैमेज किचन्स. कॉन्टैक्ट Focus Kitchen ऑन 09281-3050, यूनिट के 33 वॉम्सली रोड, ओटाहूहू. फॉर इन्फो एंड डिजाइन आइडियाज विजिट focuskitchens.co.nz.
0: That's right, Humper. We always play the biggest hits for you. और मैं हूँ आपका साथी अभी साथ देता रहूंगा छह तक. जबकि सवाल हमारा वही है, बिल्कुल सिंपल है और हमें जवाब का इंतजार है. 60 सीटा बस है, ये पैसेंजर्स से 2/3 फुल है. तो आपको पहले वर्कआउट करना होगा कि 60 का 2/3 क्या होता है. और फिर जबकि स्टैंडर्ड फेयर है $2 पे पर्सन, तो टोटल में कितने लोग हैं और कितने फेयर्स कलेक्ट होंगे इन जनरल टोटल, यही आपको 5599 पर भेजना है. अभी के लिए मैं दो गाने और बजाता हूँ, उसके बाद में आपके साथ में शेयर करूँगा कि जवाब क्या है. तो 60 सीटा बस है, 2/3 फुल है, पैसेंजर्स से $2 स्टैंडर्ड फेयर है पर पर्सन, और कितने लोग हैं और कितना टोटल फेयर कलेक्ट हुआ. 5599 पर अपना जवाब अपने नाम के साथ में भेजो. और अगर जो कुछ सुनना भी चाहते हो तो इसके इसी जवाब के साथ में गाना का जो चॉइस है आपका, ये भी आप भेज सकते हो हमारे पास में.

हाँ, पर मैं अभी आपके लिए लेकर आया था नंबर गेम्स, जहां पर काफी लोगों ने सवाल का जवाब भेजा है, और जिनमें शामिल है शनाया, उसके साथ में है चीफ, आपने भी भेजा था जवाब, थैंक यू सो मच। उमेश, आपका भी जवाब मिला है, साथ में माया, आपने भी भेजा है, और इसके लिए थैंक यू। जाकिया, आपने भी अटेम्प्ट किया, अपना जवाब भेजा है, थैंक यू फॉर ट्राइंग। इसके साथ में उमेश थे, प्रमा महाराज, आपको भी थैंक यू सो मच, शुक्रिया, आपने जवाब भेजा है। साथ में प्रवीण महाराज भी हैं और प्रोग्राम सुन रही हैं आज कशवी भी, और कशवी ने फ्लैटबुश से जो जवाब है ये भेजा है, और थैंक यू सो मच फॉर अटेम्प्टिंग आप सभी को। और ये लगता है कि आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की है, तो जो 60 पैसेंजर्स थे उनमें जो 2/3 हुआ 40 लोग, और 40 पैसेंजर्स पर $2 पर पर्सन, $80 का जो टोटल फेयर है ये कलेक्ट होता है। थैंक यू सो मच एक बार फिर आप सभी को। नेक्स्ट वीक ऐसा ही कुछ ट्विस्टेड सवाल लेकर आएंगे जो एंटरटेनिंग भी रहे, और कहीं ना कहीं एक लेजी संडे को आपको एक नंबर्स के साथ में खेलने को एक फन गेम भी रहे। ऑल ऑफ दिस इज 20 मिनट्स अवे फ्रॉम 4। अभी का साथ है ऑन हम 104.2 FM, साथ में रोवर पर।

0: Grant Smear. Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
2: ये गलत बोल दिया यार.
1: और पहनता भी नहीं है उसको.
2: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुजबे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया अभी वो.
2: अभी ब्रांड हो गया ना.
1: रुजबे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Poke Koi, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Poke Koi, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J Crew.
4: Thinking of switching lanes? How about insurers? Switching to Tower is easy. Plus, get $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code EASYSAVE. T's and C's apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
5: When you're finishing off that DIY project this weekend, remember to have a hmm and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.

0: हम पर जबकि वीकेंड है तो वीकेंड में अक्सर स्पोर्टिंग एक्टिविटीज होती रहती हैं, तो ऐसे में आईडीसी टूर्नामेंट जो कि एचएफसी स्टेडियम सुबह में चल रही है, आज इसका जो ग्रैंड फाइनल है ये रहेगा बा और नाहवा के बीच में, और ये जो मैच है न्यूजीलैंड समय अनुसार 4 बजे इसकी शुरुआत होगी। तो अभी तक बा टीम ने इस साल लीग को जीत लिया है, साथ में फिजी फैक्ट को जीत लिया है, बीओजी को भी जीत लिया है, और अब इनका जो नज़र है ये इंटर डिस्ट्रिक्ट टाइटल पर है। तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं कि क्या बा के हाथ ये जो ट्रॉफी है ये भी लग जाएगी? रास्ते में नाहवा टीम है और बा टेक्स ऑन नाहवा एट 4 PM न्यूजीलैंड टाइम। इस पर जो भी अपडेट्स हमको मिलती रहेंगी हम अपने सोशल्स पर भी अपडेट करते रहेंगे या फिर आपको ओनिया भी प्रोवाइड करते रहेंगे।
1: कभी उसे नूर नूर कहता हूँ, कभी मैं हूर हूर कहता हूँ।

हम पर आप सुन रहे हैं मुझे, मैं हूं अवि, और एक और एक कम्युनिटी न्यूज है हमारे पास में जो बिल्कुल जरूरी है आपके साथ में शेयर करना। मेनोबोस ग्लोबल लेकर आ रहे हैं ग्लोबल पावर सर्ज, जबकि वर्ल्ड मेनोपोज डे पर जो कि रहेगा संडे 18 अक्टूबर को, यहां पर ढेर सारी बातें होंगी आपके साथ में। एक फ्री ऑनलाइन इवेंट है जहां पर आप जाकर ज्वाइन इन कर सकते हैं। मेनोपोज पर बातें होंगी ढेर सारे और इसको लेकर आप काफ़ी नॉलेज हासिल कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन के लिए आप जाइए globalpowersurge.com और यहाँ पर आप जाकर रजिस्टर हो सकते हो, जो कि वर्ल्ड मेनोपोज डे है संडे 18 अक्टूबर को ये मार्क किया जाएगा, विच इज़ नेक्स्ट वीक संडे।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

हम पर आप सुन रहे हैं मुझे, मैं हूं अभी आपके साथ में। और जबकि दिवाली बिल्कुल करीब है, ऐसे में हम पर आपको ध्यान में रखते हुए दिवाली स्पेशल लेकर आया जाएगा बहुत ही जल्द हम पर, जहां पर रामायण एक गाथा आप सुन सकेंगे। एक ऐसा स्पेशली प्रोड्यूस किया गया सीरीज जहां पर एक से लेकर दो मिनट के अंदर अंदर आपको रामायण से जुड़ी जो कहानियाँ हैं सेगमेंट्स के तौर पर सुनाई जाएगी हम पर, और इन्हीं कहानियों से आप कनेक्ट कर पाओगे उन्हीं चरित्र से जहां पर जो कैरेक्टर्स थे, मोमेंट्स थे रामायण से, जो कथाएं थी, ये सभी कुछ आप एक से लेकर दो मिनट के अंदर अंदर सुन सकेंगे। ये जो प्रेजेंटेशन है दिन में अलग अलग टाइम पर रहेगा, लेकिन बिल्कुल आप लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं इसको। और अगर जो अपने बच्चों को आप इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं विद द नॉलेज ऑफ रामायण, तो ये एक अच्छा बेहतरीन मौका रहेगा आपके लिए, जबकि एक से लेकर दो मिनट के अंदर अंदर ही आप इसे सुन सकते हैं। तो याद रहे, रामायण एक गाथा बहुत ही जल्द आप हम पर सुन सकेंगे दिवाली स्पेशल में।

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Save big at Rebel and get the kids sorted for back to school. Grab a huge range of kids' running shoes for just $69. Get 20% off selected bags and bottles. Plus, score an extra 20% off all clearance. Back to school value is on now. Only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
2: Now when you're in the loop with ANZ and take the train, money loops back. Get 50% cashback on Wednesdays and weekends in October when you tag on and off AT trains with a personal ANZ Visa card. Eligibility terms and conditions, fees and exclusions apply.
3: Diwali aa rahi hai aur fortune la raha hai aapke liye jeetne ka mauka. Lotus Manukau, Mount Roskill ya Botany and Namaste Indian Supermarket se koi bhi two fortune ya simply products khareediye aur jeetiye $501 ka trolley dash. Saath mein har hafte 10 winners ko $101 ka in-store credit. Bas entry form bharo, receipt lagao aur entry box mein dal do. Fortune Diwali, be in to win. Ends 15th November. T's and C's apply.
4: 35 minutes and we've moved 3 kilometers. Welcome to peak hour commute, bye. Maybe I should use this time to check if I'm eligible to vote.
5: Over 18? Lived here for more than a year? And a resident for electoral purposes?
4: Yeah, that sounds like me.
5: Then why don't you enroll now? Only takes a few minutes.
4: Well, you're driving, so I'll do it now. That was quick and easy.
6: Last chance to enrol is midnight 25 October. Enrol now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
7: इस दिवाली घर को दियो के साथ सोना संसार के गहनों से भी रोशन कर डालिए।
8: अरे तेजल, चल जल्दी जाइए। धनतेरस माटे शॉपिंग करवा सोना संसार में। तने जे पसंद पड़े ए बाय करी लेजे। लेटेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन के लिए एक ही पता सोना संसार।
7: दिल वाली दिवाली सोना संसार के साथ 190 स्टोरार्ट रोड माउंट रॉस्किल कॉल 09629333.
9: Free gold coins on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
10: Yes, Bebo.
9: Catch kya hai?
10: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free gold coins. Saath hi, selected jewelry par diamond value aur making charges mein up to 40% off ka fayda uthao.
9: I still can't believe it. No catch.
10: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar Gold and Diamonds. Botany Town Center, East Auckland.
11: PNC supply.
12: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
13: हम पर मैं अभी आपके लिए लेकर आया हूं एक इंटरेस्टिंग न्यूज़, जबकि मिनिस्टर फॉर टेशरी एजुकेशन पेनी सिमंस ने अनाउंस किया है मेसी यूनिवर्सिटी में जो प्रोग्राम है बेचलर फॉर वेटरनरी साइंस, यहां पर जो 125 प्लेसेस थी अब इसको 2027 से इंक्रीज करके 140 कर दिया जाएगा। ऐसा तब हुआ जबकि ये पता लगा है कि जो वेटरनरी का डिमांड है इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, काफ़ी हाई हो चुका है, और इसी को ध्यान में धरते हुए मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि इस एलोकेशन में 2027 के लिए 140 प्लेसेस अवेलेबल रहेंगे। तो अगर जो आप भी कुछ अपना करियर को लेकर सोच रहे थे वेटनरी के बारे में, तो मे बी इट इज़ अ गुड टाइम, जबकि मेसी यूनिवर्सिटी में ये कोर्स अवेलेबल भी है और यहाँ पर जगह को लेकर जो स्पेसेस है इंक्रीज किए जाएंगे 2027 से।

पर दिस इज मी अवी कीपिंग यू कंपनी, और जबकि आज है 11 तारीख अक्टूबर, तो ऐसे में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का जन्मदिन है। ही इज सेलिब्रेटिंग हिज 84th बर्थडे, और इसी को लेकर हमारे हम के फेसबुक पेज पर हमने एक पोस्ट डाला है, उनको विश भी किया है, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली पूछा गया है आपसे कि आपका फेवरेट अमिताभ बच्चन फिल्म कौन सा है। तो यहाँ पर आप जाकर हमारे हम के फेसबुक पेज पर कॉमेंट सेक्शन में नीचे आप लिख भी सकते हैं, What is your favorite अमिताभ बच्चन फिल्म जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आई है, तो इसके बारे में आप वहां पर कॉमेंट में शेयर भी कर सकते हैं।

0: ऑफ बॉलीवुड
1: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
3: बिग बाजार में बिगेस्ट रेंज ऑफ पूजा घर मिल रहे हैं। प्योर मार्बल मूर्तिज, कॉपर मूर्तिज, गन मेटल मूर्तिज, देवी देवताओं के वस्त्र, सभी तरह के हार एंड एक्सटेंसिव रेंज ऑफ पूजा आइटम्स, बिग रेंज ऑफ कंसोल टेबल्स, मिरर्स, कर्टन्स, सोफा कवर्स, बीना एंड लाहौर ब्रांड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी अवेलेबल है। बिग बाजार 302 ग्रेट साउथ रोड पापटोईटोई, योर वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन दिस नवरात्रि। न्यूजीलैंड के रीसेंट फ्लड्स ने काफी डैमेज किया है। फोकस किचन सारे न्यूजीलैंडर्स की तरह इन विक्टिम्स के साथ खड़े हैं एंड आर हेल्पिंग देम गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ बाय हेल्पिंग देम आउट विद देयर किचन कैबिनेट्स। फोकस किचन प्रोवाइड कर रहे हैं अ वेरी स्पेशल प्राइस फॉर पीपल विद फ्लड डैमेज किचन्स। कॉन्टैक्ट फोकस किचन ऑन 09281-3050, यूनिट के 33 वॉम्सली रोड, ओटाहूहू। फॉर इन्फो एंड डिजाइन आइडियाज विजिट focuskitchens.co.nz।
0: Playing Bollywood's biggest hits.
4: हम पर मैं हूँ अवि आपका साथ दे रहा हूँ और अक्सर आपके साथ में कुछ इंस्पायरिंग बातें भी होती रहती हैं ताकि आप अपने जो मंजिल है उससे आप अपनी नज़र ना हटाए। तो ऐसा कहते हैं कि उम्र कोई टोक नहीं लगाती है अपने सपने को कायम या फिर पूरा करने में। तो आप भी अगर जो अपने सपने को देख रहे इसको साकार करने में उम्र कोई रोक नहीं लगाती है। तो जब भी आप चाहे अपने सपने के लिए काम कर सकते हैं, एक नई शुरुआत कर सकते हैं।

हाँ, पर मैं अभी आपके साथ में जसचिल में जरूरी बातें भी करता रहता हूं। तो 7th ऑफ नवंबर को न्यूजीलैंड में जनरल इलेक्शन है, जिसके लिए आपको 25th ऑफ अक्टूबर से पहले रजिस्टर होना है, एनरोल होना है, ताकि आप वोट कर सके। तो इसी इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए सेंडी और रुजबे ने बातें की हैं अपने पॉडकास्ट में खरक सिंह जी से, जो कि लेबर कैंडिडेट है, और इनसे बातें हुई हैं, सवाल जवाब हुए, जहां पर पूछा गया है स्मॉल बिजनेस के बारे में और साथ में कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में, और सुपरमार्केट के कंपटीशन को भी लेकर बातें की गई हैं, साथ में रिटेल क्राइम को लेकर, कम्युनिटी में लोग कितना सेफ है, ये सभी कुछ सवाल उनसे पूछा गया है और इसका जवाब खरक सिंह जी ने दिया है। अगर जो आप इसे सुनना चाहते हैं तो ड्राइव लिखकर 5599 पर जरूर टेक्स्ट करें, और ताकि आप भी इन्फॉर्म्ड रहें, वेल अपडेटेड रहें कि आने वाले इलेक्शंस में आप अपना जो वोट है इसको ज़रूर एक्सरसाइज करें, और आपका मत बहुत कीमती है और ज़ाया नहीं होना चाहिए, इसीलिए आप जिसको इंडिपेंडेंटली वोट करना चाहते हैं आप कर सकें।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is a very acceleration.
2: Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: You're listening to Avineet.
1: देखते देखते हम फाइनल आवाज में पहुंच ही गए हैं, जबकि इस जस्ट आफ्टर 5 और 6 तक हमारा और आपका साथ रहेगा। ऐसे में इस आवाज पर भी ढेर सारी इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ में रहेंगी और कुछ इंटरेस्टिंग लाइनअप ऑफ सॉन्ग्स भी है, तो ये सभी कुछ आप इंजॉय करते रहें। जस्ट चिल का कारवा, फाइनल आवर टू गो और ऐसे में 104.2 FM साथ में रोवा पर आप हमारा साथ दे रहे हैं। बस साथ देते रहिए, मैं हूँ अभी आपके साथ में।

हाँ, पर मैं अभी आपके साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहा हूँ। आप अक्सर हमें सुनते रहते हैं 104.2 FM साथ में रोवा पर, थैंक यू सो मच इसके लिए। लेकिन फेसबुक भी एक जरिया है जहाँ पर आप जाकर हम फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो, ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स हम वहाँ पर अपने सोशल्स पर डालते रहते हैं इसका भी आपको पता रहे। और ढेर सारी प्रमोशंस वहाँ पर भी अक्सर किए जाते हैं और उसमें भी आप भाग ले सकते हैं। तो काफ़ी फायदे हैं अगर जो आप हम फेसबुक पेज को फॉलो करते हो। लेकिन वापस मैं लेकर आना चाहता हूँ आपको रोवा पर। अगर जो किसी कारण से अभी तक आपने रोवा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इसके भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हम रिवाइंड है, जहाँ पर 60s और 70s के गाने हैं बॉलीवुड के, ये आपको सुनने को मिलेंगे। इसके साथ साथ हम 80s का भी जुकबॉक्स है, जहाँ पर 80s के ईरे के जितने भी गाने हैं बॉलीवुड से, ये भी आपको सुनाई देंगे। तो अगर जो आपको खासकर संडे इवनिंग सुनना पसंद है 80s के कुछ हिट्स, तो ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा फिजी भजन्स भी है, जिसको काफ़ी अच्छी तरीके से आपके लिए स्टोर किया गया है, यहाँ पर स्ट्रीम हो रही है। और ऑन टॉप ऑफ दैट चढ़दी कला पंजाबी हिट्स है, जो आपके पार्टी नंबर्स हो सकते हैं। और फिर फिजी कीर्तन संग्रह भी है, जहाँ पर फिजी के जो कलाकार हैं इनकी आवाज़ों में कीर्तन को रिकॉर्ड किया गया है, और अब तो इसको रिवैम्प भी किया जा रहा है। जल्द से जल्द आप नए आर्टिस्ट को भी सुन सकेंगे ऑन फिजी कीर्तन संग्रह। साथ में राहत फतेह अली खान के गाए हुए सूफी और कवालियाँ भी आप सुन सकते हैं।

0: calm because Punjabi swag is on.
1: Hey, hey.

0: idea.
1: Streaming on Rover.
2: Reliance Ventilation System.
3: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
2: Moisture और ventilation का problem लगता है.
3: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
2: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
4: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18.
5: मेंटल हेल्थ इज पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल हेल्थ. जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही मन का भी ख्याल रखना जरूरी है. अगर आप ओवरवेल्ड हैं या इमोशंस मैनेज करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अकेले सामना करने की जरूरत नहीं है. एशियन फैमिली सर्विसेज आपके कल्चर को समझते हैं और प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंशियल और फ्री इमोशनल सपोर्ट देते हैं. कॉल एशियन हेल्पलाइन फ्री ऑन 0800 862 342. अगर आप या कोई जानने वाला डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें.
6: MediaWorks Complaints. How can I help?
7: Yeah, hi. You guys made some ads for my local business.
6: Nice.
7: And you talked me into creating this funny character.
6: Great.
7: And now everybody comes into the shop asking for Bobby.
6: Are you?
7: Yes.
6: Are you Bobby the Baker?
7: Yes.
6: What's that thing you do again?
7: Stop it.
6: You bring the mouse.
7: Stop it.
6: I'll bring the pie.
7: Stop it, please.
6: Okay.
7: Yeah, sure. I might have 3 stores now, but Bobby's more famous than me.
6: So what's the problem?
7: My name's Bruce.
8: Advertise with MediaWorks.
6: New Zealand listens to us.
9: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing, or buying a business or commercial property. Parmesh can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800 634 234. TCs and lending criteria apply.
10: You know a restaurant's good when you can't get a table for 3 weeks. Just like it's a great sign if a specialist is booked till next month. And if a builder can't fit you in till the summer, you know it's probably worth the wait. So when we tell you that Diocesan School for Girls is generally booked 2 years ahead, that should tell you everything you need to know. So if you're thinking about what's next for your daughter, join us at our open day on Thursday, the 22nd of October from 9 till 11 a.m. Register at diocesan.school.nz.
11: हम्पर, दिस इज मी अवि कीपिंग यू कंपनी. जबकि हम आपका फेवरेट बॉलीवुड डाल है, ऐसे में कुछ बॉलीवुड की खबरें आपके साथ में शेयर कर लेता हूं. दृश्यम द कंक्लूजन ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कुछ 400 करोड़ रुपए कलेक्ट किए हैं, तो एक इम्प्रेसिव नंबर है. जबकि ये अपने फ्रेंचाइज का आखिरी भाग था द कंक्लूजन, तो ये काफ़ी सक्सेसफुली रन हुई है बॉक्स ऑफिस पर. लेकिन आने वाले एक फोर्थ कमिंग मूवी है जिससे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं. गन मास्टर जीनन, इमरान हाशमी को आप देख सकेंगे अलॉन्ग विद जेनेलिया देशमुख. और इस फिल्म का एक गाना है रिक्रिएटेड वर्जन ऑफ अफसाना, अगर जो आपने इस गाने को चेकआउट किया है तो आपको भी काफी पसंद आया होगा. लेकिन ये खबरें हैं कि नवंबर 27 के आसपास आप इस फिल्म को सिनेमा हाउसेस में देख सकेंगे. ऑल ऑफ दिस विद बॉलीवुड न्यूज जो कि हम आप तक लाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आपको बॉलीवुड की खबरें खासकर पसंद है.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: मैं हूँ हरीश लोढ़िया। दिवाली की धूम एट सोना संसार, नया स्टॉक्स ऑफ 22 कैरेट ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी की स्टॉक्स आ गया है। सिल्वर स्टॉक्स और सोने और चांदी की बिस्किट्स आ गया है। लक्ष्मी गणेश और प्योर चांदी के मूर्तियाँ वो भी आ गई है। डायमंड ज्वेलरी इंक्लूडिंग न्यू अराइवल्स ऑल एट हाफ प्राइस। सोना संसार 190 स्टोरार्ड रोड माउंट रॉस्किल या फिर 138 ग्रेट साउथ रोड पेपरटोए कॉर्नर ऑफ ईस्ट तमाकी एंड ग्रेट साउथ रोड। हमारा फोन नंबर 629-3333। फॉर स्पेशल डील्स विजिट आवर वेबसाइट sonasansar.co.nz।
2: फ्री गोल्ड कॉइन्स ऑन डायमंड ज्वेलरी, सीरियसली माही?
3: यस बेबो।
2: कैच क्या है?
3: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ। डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री गोल्ड कॉइन्स, साथ ही सिलेक्टेड ज्वेलरी पर डायमंड वैल्यू और मेकिंग चार्जेस में अप टू 40% ऑफ का फायदा उठाओ।
2: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच।
3: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो। दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, बॉटनी टाउन सेंटर, ईस्ट ऑकलैंड,
4: PNC सप्लाई।
5: न्यूजीलैंड के रीसेंट फ्लड्स ने काफी डैमेज किया है। फोकस किचन सारे न्यूजीलैंडर्स की तरह इन विक्टिम्स के साथ खड़े हैं एंड आर हेल्पिंग देम गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ बाय हेल्पिंग देम आउट विद देयर किचन कैबिनेट्स। फोकस किचन प्रोवाइड कर रहे हैं अ वेरी स्पेशल प्राइस फॉर पीपल विद फ्लड डैमेज किचन्स। कॉन्टैक्ट फोकस किचन ऑन 09281-3050, यूनिट के 33 वॉम्सली रोड, ओटाहू। फॉर इन्फो एंड डिजाइन आइडियाज विजिट focuskitchens.co.nz।

हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में और थोड़ी देर तक और ये कारवा चलता रहेगा, लेकिन आदत से मजबूर इतने बजे अक्सर मैं आपके लिए कोई ना कोई एक गज़ल पेश कर देता हूँ, जबकि 6 बजे के बाद में जीकाश आपके लिए और भी मेलोडियस सूदिंग नंबर्स लेकर आएंगे, लेकिन अभी के लिए हमारे साथ में आप ये गज़ल इंजॉय करिए।

आज का विचार कहता है कि जहाँ शांति नहीं वहाँ ठहरना क्यों। हर उस रिश्ते से दूरी बनाना सीखिए जो आपकी आंतरिक शांति, आत्मसम्मान और मानसिक संतुलन को लगातार चोट पहुंचाता है। हर उस रिश्ते और हर उस व्यक्ति से दूरी बनाना चाहिए जो आपको ठेस पहुंचाते रहते हैं बार बार लगातार। वेल, आई होप आपका वीक बहुत ही अच्छा गया है एंड आपका वीकेंड और भी बढ़िया जा रहा है। आफ्टर टायरिंग हेक्टिक येट अ प्रोडक्टिव वीक, अब आप शांति महसूस कर रहे हैं क्योंकि आज है रविवार एंड इफ़ यू वर्क मंडे टू फ्राइडे यू डिजर्व ऑल द पीस इन द वीकेंड। तो आइए, आप सभी का स्वागत कर रहे हैं इन संडे नाइट मेलोडीज। 11 तारीख अक्टूबर है 2026, ये बस आस्ते आस्ते अपनी समाप्ति की ओर पहुंच रहा है, मतलब ये साल। एंड नाउ थोड़ा सा क्लीशे हो जाएगा अगर मैं कहूं कि यार इतना साल इतना जल्दी चला गया, क्योंकि हर साल हमारे साथ यही होता है। जिंदगी बहुत ही मसरूफ हो चुकी है, बहुत ही हम बिजी होते हैं एंड इस बिजी शेड्यूल के बीच में समय कब कहां कैसे निकल जाता है ये बस सोचने वाली बात रह जाती है। लेकिन अगर आपने कुछ हासिल किया है, कुछ अचीव किया है इस साल, तो देयर इज़ वन थिंग टू सेलिब्रेट। तो आइए, आप सभी का दिल इस्तकबाल कर रहे हैं इन संडे नाइट मेलोडीज। मैं हूं जिकाश, आपके साथ में शामिल हो चुका हूं राइट टिल मिडनाइट। ये प्यारा सा सफर हम साथ में होकर बिताएंगे एंड आई होप जो लाइनअप ऑफ सॉन्ग्स हमने लेकर आए हुए हैं ये आपको अच्छा लगे। आपसे कुछ बातें करेंगे, आपकी सुनेंगे, अपनी सुनाएंगे, आपके आसपास क्या कुछ हो रहा है इसकी भी जानकारियाँ बस थोड़ी ही देर में आपको हम प्रदान करेंगे। वेदर नेक्स्ट वीक कल से कैसा होने वाला है, जानते हैं नहीं जानते हैं तो घबराइए मत, यूं ही हमारे साथ बने रहे, हम ये सब बातें करते चलेंगे आज संडे नाइट मेलोडीज में। स्वागत कर रहे हैं आपका, क्योरा।

संडे नाइट मेलोडीज में कम्युनिटी न्यूज आपके लिए भी हम लेकर आते रहते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप सभी को जय माता दी हम विश कर रहे हैं, कह रहे हैं। जो लोग नवरात्रि का पावन पर्व आज से मनाना शुरू कर दिए हैं, 11th अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में कई जगहों पर नवरात्रि की पूजा होगी, जैसे कि रामकृष्ण मंदिर 25 ओंसलो एव मनुकाओ में आज से नवरात्रि की पूजा शुरू हो चुकी है। फ्रॉम 6 PM गरबा एंड डांडिया रास रहेगा एवरी डे आफ्टर कथा। श्री हनुमान मंदिर 14 बाय पार्क प्लेस बर्गडेल नोचो में भी 6:15 से हर रोज कथा होती रहेगी। डीजे गरबा फ्रॉम 8:10 PM टिल 9:30 PM, भजन जैमिंग और डीजे गरबा रहेगा 18 अक्टूबर को फ्रॉम 6:30 PM। श्री आदि शक्ति दुर्गा माता मंदिर पर भी नवरात्रि की पूजा होगी 11 से 20 अक्टूबर के बीच में, हर रात 7 से 9 बजे के बीच में पूजा रहेगी 38A वोम्सली रोड और रहुहु ऑकलैंड में। दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट भी आज से नवरात्रि की पूजा कर रही है ऑल द वे थ्रू टिल 20th of October, हर रात 6:30 PM पर कथा शुरू होगी एट द केव 5/57 कैवेंडिश ड्राइव मनुकाओ में ऑपोजिट द वेयर हाउस। गरबा डांडिया एंड हुदतासा रहेगा डेली आफ्टर कथा। इसके अलावा द बी आर अम्बेडकर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब होस्ट कर रहा है 34th एनुअल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल टूर्नामेंट 24th और 25th अक्टूबर को, जहां पर कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टग ऑफ वो, लेमन एंड स्पून रेसेस, म्यूजिकल चेयर्स एंड चिल्ड्रंस रेसेस। तो दिस फंक्शन, दिस टूर्नामेंट इज फॉर एवरीबॉडी, मैन, वुमेन, किड्स, ऑल ऑफ यू कैन कम अलोंग, क्योंकि एंट्री फ्री है फॉर एवरीवन। लेकिन अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू गेट इनटू द फन साइड ऑफ इट टू पार्टिसिपेट एंड विन, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा अपने लिए एंड एनी स्पोर्टिंग टीम्स के लिए। आपको कॉल करना है प्रदीप को ऑन 0212385948 पर। प्रदीप को आप कॉल करें ऑन 0212385948 पर फॉर द 34th एनुअल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल टूर्नामेंट happening on 24th and 25th of October. इसके अलावा ग्लोबल पावर सर्ज वर्ल्ड मेनोपोज डे संडे 18th अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जा रहा है। मेनोपोज ग्लोबल की द्वारा ये प्रस्तुति है, ये एक फ्री ऑनलाइन 24-hour एक्टिविटी है, जहां पर a free online event that opens at first light in Aotearoa, New Zealand and follows the sun around the world. इसके लिए आपको रजिस्टर करना है globalpowersurge.com पर। Drop in for 20 minutes or stay the full 24 hours. Your first free guide arrives the moment you register. तो अगर आप भी World Menopause Day के लिए जानकारी चाहते हैं या फिर से ऑब्जर्व करना चाहते हैं, हेड टू globalpowersearch.com एंड गेट योर रजिस्ट्रेशंस डन। 200 प्लेसेस इन द फर्स्ट मेनोपोज चैंपियन कोहोर्ट, योर चांस टू एनरोल इन अ फ्री प्रोग्राम फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड।

वेलकम बैक टू संडे नाइट मेलोडीज, जहां पर मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूं। कल हम आपसे मुखातिब हुए थे इन रेडियो पब कल दिन में 12 से 6 बजे के बीच में, जहां पर हमने आपको तीन बार मौके दिए टू गेट इनटू आवर फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून वाले ड्रॉ में, जहां पर यू विल विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस दिस दिवाली विद हम। ड्रॉ होगा 30 अक्टूबर को और अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग इनामों के लिए हम कॉम्पिटिशन्स रच रहे हैं। एंड टूडे वी हैव टू ऑसम प्राइजेस जिसके लिए आप ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं। एंड नाउ आपको हम दे रहे हैं अराउंड 9 मिनट्स का मौका, दो गाने हम बजाएंगे और उस गानों को सुनते सुनते आपको हमारे पास मैसेज करना है। याद रहे स्टैंडर्ड कैरियर रेट्स अप्लाई व्हेन यू मैसेज टू 5599। थोड़ा सा चार्ज है, कितना चार्ज है ये तो आप जानते हैं, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि इफ़ यू आर द विनर $1,000 का इनाम आपको मिलेगा। 10 का नहीं, 100 का नहीं, 50 का नहीं, 500 का नहीं, $1,000 का। एंड इस बार आपको हम देना चाहते हैं $1,000 वर्थ ऑफ माइटा 10 वाउचर्स। DIY करना आपको पसंद है या फिर घर पर कुछ प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं जिसके लिए कुछ चीज़ें, कुछ टूल्स खरीदनी है, माइटा 10 में आप जाते हैं तो आपको तो पता ही है कि वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यू हैव अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो आप बस खरीद लेना चाहते हैं। वेल यू हैव द मौका, $1,000 हम आपको देना चाहते हैं। इफ़ यू बिकम द विनर, दिल खोल कर आप शॉपिंग कर सकते हैं माइटा 10 में। माइटा 10 वाउचर आपको हम देना चाहते हैं एक लकी विजेता को। एंड ये प्यारा इनाम आपको हम देना चाहते हैं विद द कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स nzpmi.co.nz आप विजिट करें और इनके द्वारा आपको हम देना चाहते हैं $1,000 किसी एक लकी विजेता को टू स्पेंड इन माइटा 10। अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद nzpmi। इनको हम धन्यवाद दे रहे हैं फॉर प्रोवाइडिंग अस द अपॉर्चुनिटी कि आपको हम मौका दे टू विन दिस $1,000 वर्थ ऑफ माइटा 10 वाउचर्स। फटाफट अभी आपको क्या करना है, nzpmi लिखे स्पेस आपका नाम एंड सेंड इट टू 5599। बहुत इजी है, जल्द से आप भेजें। दो गानों तक का समय आपको हम दे रहे हैं, गाने सुनते रहे, मैसेज करते रहे, एंड जस्ट लाइक दैट यू विल गेट इनटू दिस ऑसम ड्रॉ फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून में nzpmi की ओर से $1,000 वर्थ ऑफ माइटा 10 वाउचर्स फॉर वन लकी विनर ओनली। nzpmi स्पेस योर नेम, सेंड इट टू 5599।

संडे नाइट मेलोडीज का मजा आप ले रहे हैं। नाउ लुकिंग इनटू द फ्यूचर, हाँ भाई फ्यूचर मैं देख सकता हूँ और अभी मैं देख रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है रग्बी लीग वर्ल्ड कप का जो पहला मैच ये होगा ऑन द 15th ऑफ अक्टूबर, देर इज इन द मेंस डिवीजन और ऑस्ट्रेलिया में ये खेल होने को है 10:05 PM न्यूजीलैंड समय अनुसार। न्यूजीलैंड कीवीज वर्सेस द कैंगरूज, ऑस्ट्रेलियन कैंगरूज, पहला मैच रहेगा अलायंस स्टेडियम सिडनी में। दिस इज इन द मेंस डिवीजन एंड वीमेंस डिवीजन में भी खेल होगा ड्यूरिंग द RLWC 26। वीमेंस डिवीजन में देखे तो फर्स्ट मैच होगा इन ऑस्ट्रेलिया एज वेल ऑन द 16th of October फ्राइडे को आने वाले कॉम बैंक स्टेडियम सिडनी में ये खेल होगा 10:05 PM न्यूजीलैंड समय अनुसार। ऑस्ट्रेलियन जिल रूस और सामुआ रग्बी लीग वीमेंस टीम आमना सामना करने वाली है इन द फर्स्ट मैच ऑफ द वीमेंस रग्बी वर्ल्ड कप 2026। और भी जानकारियां हम आपको देते रहेंगे। आई लीग भी आने वाले वीकेंड शुरू होने वाला है, क्या आप जानते हैं कि कौन सी टीम पहला मैच खेलेगी? नहीं तो बस जुड़े रहे हमारे साथ में आई लीग मेंस डिवीजन के बारे में खेल 2026-27 सीजन का, ये कब शुरू हो रहा है, कहां पर शुरू हो रहा है और कौन सी दो टीम आर गोइंग टू बी प्लेइंग द फर्स्ट मैच, जानने के लिए बस जुड़े रहे।

0: Unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram-friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
0: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
2: विदेश से लोगों को यहाँ काम करने के लिए अब एम्प्लॉयर अक्रेडिटेशन कंपलसरी हो गया है. इमिग्रेशन के नए रूल्स और परेशानियों से बचने में आपको मदद करेंगे ऑकलैंड साउथ इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के अतीश नारायण. अपॉइंटमेंट्स के लिए फोन करें 0800-168-472 पर. अतीश नारायण और उनकी टीम आफ्टर आवर्स और वीकेंड्स पर भी अवेलेबल रहते हैं. फॉर मोर डिटेल्स विजिट देयर वेबसाइट isic.co.nz.
3: बिग बाजार में बिगेस्ट रेंज ऑफ पूजा घर मिल रहे हैं. प्योर मार्बल मूर्तिज, कॉपर मूर्तिज, गन मेटल मूर्तिज, देवी देवताओं के वस्त्र, सभी तरह के हार एंड एक्सटेंसिव रेंज ऑफ पूजा आइटम्स, बिग रेंज ऑफ कंसोल टेबल्स, मिरर्स, कर्टन्स, सोफा कवर्स, बीना एंड लाहौर ब्रांड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी अवेलेबल है. बिग बाजार 302 ग्रेट साउथ रोड, पापटोईटोई, योर वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन दिस नवरात्रि.
4: मैं हरीश लोढ़िया आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ. मैं आप लोगों को इस समय नहीं बतलाऊंगा कि क्या क्या नया इस धनतेरस और दिवाली के लिए आया है. मैं आपको और आपके परिवार को आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और अब तक का सबसे बड़ा और बढ़िया ज्वेलरी कलेक्शन एक बार जरूर देखें. तो मिलते हैं सोना संसार, 190 स्ट्रडा रोड, माउंट रॉस्किल, या 138 ग्रेट साउथ रोड, पापटोईटोई में.
5: एक देश के नागरिक होने के नाते आपको वोटिंग इलेक्शंस में भाग लेना बहुत ही जरूरी है. इफ यू रिसेंटली बिकम ए परमानेंट रेसिडेंस होल्डर या फिर आप अभी हाल ही में न्यूजीलैंड आए हैं बाय गेनिंग योर सिटीजनशिप, तो यू हैव द राइट टू वोट. और वोट करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही ज़रूरी है, एनरोलमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है. आपके घर पर आपके लेटर बॉक्स में शायद आपको लेटर मिल चुका होगा फॉर योर वोटिंग, फॉर योर इलेक्शंस रजिस्ट्रेशंस. अगर नहीं मिला है तो हेड ऑन टू elections.nz और वहाँ से आपको लिंक मिलेगा टू सी इफ़ यू आर एलिजिबल टू वोट, एंड इफ़ सो यू विल हैव टू एनरोल. 25th October is the last day to enroll to vote in the election. और इस साल अगर आप 25th October तक वोट के लिए वोटिंग के लिए एनरोल नहीं करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू वोट एट ऑल. ऐसा नहीं है कि ऑन द डे ऑफ वोटिंग आप एनरोल कर पाएंगे, नहीं. 25th October को इट इज़ द लास्ट डे टू एनरोल टू वोट इन दिस ईयर्स इलेक्शन. तो भाई जल्द से एनरोल कर लिए अपने आप को, गेट इन्फॉर्म्ड अबाउट पॉलिसीज एंड कैंपेन्स एंड वोट वाइजली. दूसरी बात यह है, वेंडलिज्म इज़ ऑन अ हाई. जो कैंडिडेट्स कैंपेन कर रहे हैं, अपने बिल बोर्ड्स डाल रहे हैं, उसको तोड़ा फोड़ा जा रहा है. इफ़ यू कम अक्रॉस पीपल डूइंग दिस, यू हैव टू रिपोर्ट दिस टू 105. कॉल 105 एंड रिपोर्ट दिस, क्योंकि दैट इज़ विलफुल डैमेज, दैट इज़ वेंडलिज्म विच हैज़ नो प्लेस इन अ कम्युनिटी जहाँ पर हम अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कहते हैं.

0: चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
1: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
0: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
1: इंटरेस्टिंग। और कुछ?
0: बस इतना ही।
1: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
2: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु कंडोला, a household name in finance and insurance industry, and Fortune. Bring home the fortune.
3: India aa raha hai Auckland, and the Blue Tigers need your voice behind them. देखिए इंडिया को ऑल व्हाइट्स के अगेंस्ट गो मीडिया स्टेडियम थर्सडे 12 नवंबर को, एक रेयर चांस अपनी नेशनल टीम को न्यूजीलैंड की जमीन पर लाइव देखने का। ब्रिंग द फैमिली, वेयर योर कलर्स एंड फिल द स्टेडियम विद प्राइड। अडल्ट टिकट सिर्फ $20 से शुरू, किड्स $10 से, प्लस बुकिंग फीस। बुक नाउ एट टिकटेक एंड बी देयर फॉर अ हिस्टोरिक नाइट।
4: व्हाट कुड आई बी? अ टीचर, अ साइंटिस्ट, अ बिल्डर? But first I need a chance to feel safe, to learn, to believe in myself. That's why Barnardos is asking you to invest in children. Because when you invest in a child today, you can help them build a future full of possibilities. Invest in children at investinchildren.nz. Because the returns last a lifetime.
5: Welcome to Kebab's Kitchen. I am Chef Alex and this is my guest, Sarah.
6: बनाते हैं कबाब को स्पेशल, शेफ एलेक्स?
5: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स। हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन।
6: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग। स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो जूसी।
5: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट। अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स।
7: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव।
8: फ्री गोल्ड कॉइन्स ऑन डायमंड ज्वेलरी? सीरियसली माही?
9: यस बेबो।
8: कैच क्या है?
9: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ। डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री गोल्ड कॉइन्स, साथ ही सिलेक्टेड ज्वेलरी पर डायमंड वैल्यू और मेकिंग चार्जेस में अप टू 40% ऑफ का फायदा उठाओ।
8: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच।
9: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो। दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, बॉटनी टाउन सेंटर, ईस्ट ऑकलैंड।
10: PNC Supply.

Alright, पिछले घंटे पर हमने कहा था आपको बताएंगे अबाउट द ए लीग स्केड्यूल और ए लीग मेंस डिवीजन एंड वीमेंस डिवीजन आर बोथ किकिंग ऑफ कमिंग वीकेंड ऑन फ्राइडे द 16th ऑफ अक्टूबर सिडनी फुटबॉल क्लब आर प्लेइंग अगेंस्ट वेस्टर्न सिडनी वंडरर्स इन ऑस्ट्रेलिया एट 10 PM न्यूजीलैंड समय अनुसार ऑकलैंड फुटबॉल क्लब सैटरडे को खेल रही है अगेंस्ट द मेलबर्न सिटी फुटबॉल क्लब सैटरडे को 5 बजे ये मैच होने वाला है एट द गो मीडिया स्टेडियम ऑकलैंड ऑकलैंड फुटबॉल क्लब बीइंग द विनर्स ऑफ लास्ट ईयर्स लीग होस्ट कर रही है मेलबर्न सिटी को एट गो मीडिया स्टेडियम ऑन सैटरडे 5 PM न्यूजीलैंड समय अनुसार वहीं पर विमेंस डिवीजन का भी मैच शुरू हो जाएगा सैटरडे को मेलबर्न विक्ट्री आर प्लेइंग अगेंस्ट वेस्टर्न सिडनी सैटरडे 5 PM को एंड द सेकंड मैच सैटरडे 5 PM न्यूकासल जेट्स और पर्थ ग्लोरी आमना सामना करने वाले हैं ना आप सोच रहे होंगे कि हम वेलिंगटन फिनिक्स के बारे में बातें क्यों नहीं कर रहे हैं वेलिंगटन फिनिक्स आर प्लेइंग ऑन संडे 3 PM अगेंस्ट मेलबर्न विक्ट्री

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो.
2: ये गलत बोल दिया यार.
1: और पहनता भी नहीं है उसको.
2: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया
2: अभी. अभी ब्रांड हो गया ना.
1: रुस्बे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J Crew.
4: डिब्बा खुल गया
5: भरत भाई, टिफिन खुल गए छे. संजना का डिब्बा खुल गया.
6: जब कशिश स्पाइसेस से खाना बनेगा तो सारे ऑफिस की नजर में रहेगा. फिर यही तो होगा, डिब्बा खुल गया. हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, कशिश मसाले, अच्छे वाले. बाय एनी कशिश प्रोडक्ट एंड बी इन द ड्रॉ टू विन अप टू $10,000 वर्थ ऑफ कैश प्राइजेस, गोल्ड कॉइंस एंड गिफ्ट वाउचर्स. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
0: विदेश से लोगों को यहाँ काम करने के लिए अब एम्प्लॉयर अक्रेडिटेशन कंपलसरी हो गया है. इमिग्रेशन के नए रूल्स और परेशानियों से बचने में आपको मदद करेंगे ओकलैंड साउथ इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के अतीश नारायण. अपॉइंटमेंट्स के लिए फोन करें 0800-168-472 पर. अतीश नारायण और उनकी टीम आफ्टर आवर्स और वीकेंड्स पर भी अवेलेबल रहते हैं. फॉर मोर डिटेल्स विजिट देयर वेबसाइट ISIC.co.nz.

संडे नाइट मेलोडीज में आप नॉस्टैल्जिक नाइट्स ये एंजॉय कर रहे हैं एंड आपको हम याद दिला दें अबाउट इलेक्शंस. नवंबर 7th इज डी डे और इसके लिए काफ़ी लोग तैयारियां कर रहे हैं. पार्टीज एंड कैंडिडेट्स आर कैंपेनिंग, मेहनत कर रहे हैं, अपने बिलबोर्ड्स डाल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं. वहीं पर द बैड एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी ये बिलबोर्ड्स को तोड़ फोड़ रहे हैं. वेल, अगर आप किसी चीज़ से नाराज़ हैं तो भाई वोट करें एंड मेक श्योर कि पीपल जिनको आप पसंद करते हैं उनको आप गवर्नमेंट में लाएं. ये तोड़फोड़ करने से बस यू आर मेकिंग एन आईएसओ इन द कम्युनिटी एंड यू जस्ट टेलिंग पीपल कि आप किस तरह के पर्सन हैं. एंड नाउ दिस इज़ नॉट फॉर आवर लिसनर्स. हम सभी जानते हैं ये कौन लोग कर रहे हैं. एंड इफ़ यू कम अक्रॉस, इफ़ यू सी एनी वन वेंडलाइजिंग एनी कैंडिडेट बिलबोर्ड्स, आपको उनसे कुछ नहीं कहना है. यू डोंट हैव टू कॉन्फ्रंट देम. पिक अप योर फोन, डायल 105, हो सके तो दूर से सेफली उनकी फ़ोटो ले ले. अगर पुलिस चाहे तो उनको आप ये प्रदान कर सकते हैं. पर मेक श्योर कि यू आर सेफ, दैट्स व्हाट मैटर्स. तो सेफली अगर आप रिपोर्ट कर सके डू सो, क्योंकि वी डोंट वांट टू सी वेंडलिज्म इन आवर कम्युनिटी एट ऑल, कहीं पर भी नहीं, किसी भी तरह का नहीं. तो बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स. ऐसा नहीं है कि हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप होता हुए ऐसे कुछ होते हुए देख रहे हैं और उस पर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, उसको रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वेल यू आर इक्वली एज गिल्टी एज द पर्सन डूइंग इट. वेल नॉट इक्वली बट कुछ हद तक. तो मेक श्योर कि अगर आप वेंडलाइज करते हुए देखें कुछ भी एक्टिविटीज़, इसको आप रिपोर्ट ज़रूर करें. वैसे हमारी टीम ड्राइव शो ने बातें की है लेबर कैंडिडेट खड़ग सिंह से, जो कि ताकिनिनी में कैंपेन कर रहे हैं, और इनका क्या कहना है अबाउट स्मॉल बिजनेसेस, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, सुपरमार्केट कंपटीशन, रिटेल क्राइम, कम्युनिटी सेफ्टी को लेकर इन्होंने बातें की है. क्या बातें की है इन्होंने, जो बातें की है क्या ये आपके फ़ायदे की है, या फिर ऐसा ही कुछ कह रहे हैं जो शायद आपकी तकलीफ़ों को और बढ़ा दे. वेल, टू नो दैट, टू लिसन टू दैट, आपको सुनना है द फुल कन्वर्सेशन जो अवेलेबल है ऑनलाइन इन आवर अनफिल्टर्ड ड्राइव. ड्राइव लिखकर भेजे 5599 पर एंड यू विल बी एबल टू हियर द फुल इंटरव्यू विद खड़ग सिंह, हु इज़ द लेबर कैंडिडेट फॉर ताकिनिनी ऑन हम.

लेट्स गो बैक टू द ईयर 1997। वो साल जब फिल्म आई परदेश, वो साल जब एक बहुत ही प्यारा सा चेहरा, बहुत ही खूबसूरत सा चेहरा हमें देखने को मिला ऑन आवर स्क्रीन्स, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट महिमा चौधरी। शी मार्क्ड हर एक्टिंग डेब्यू विथ द फिल्म परदेश। क्या बढ़िया फिल्म थी, इसके गाने बहुत ही लाजवाब है, आप जाकर चेकआउट करें। एंड इस फिल्म को लेकर कुछ खास बातें हैं, जैसे कि शाहरुख खान इसमें ऑब्वियसली लीड रोल में है एज द कैरेक्टर अर्जुन। महिमा चौधरी कुसुम गंगा के नाम से आई थी, एंड अपूर्व अग्निहोत्री एस राजीव, अमरीश पुरी भी थे एस किशोरी लाल। कास्टिंग के बारे में बताया गया है कि द रोल ऑफ अर्जुन जो शाहरुख खान ने किया है, इसको ओरिजिनली दिया गया था आमिर खान को एंड उसके बाद में सलमान खान को, दोनों ने डिक्लाइन कर दिया। एंड देन शाहरुख खान डिड अ मार्वलस जॉब, एंड आई थिंक थैंक गॉड आमिर खान एंड सलमान खान ने इसको डिनाई किया, क्योंकि आई डोंट थिंक दे वुड हैव कैप्चर्ड द एसेंस ऑफ द कैरेक्टर एज मच एज शाहरुख खान, जिस तरह से शाहरुख खान ने उस रोल को अदा किया है। द रोल ऑफ गंगा जो महिमा चौधरी ने किया था, वो रोल पहले माधुरी दीक्षित के लिए लिखा गया था, जिन्होंने डिक्लाइन किया। एंड देन उसके बाद जूही चावला को भी ये रोल दिया गया, लेकिन उन्होंने भी डिक्लाइन किया। एंड देन केम महिमा चौधरी हु डिड अ ब्रिलियंट जॉब इन दैट रोल एज वेल। तो क्या आपने देखी है परदेश? नहीं देखी है, वेल डू चेक इट आउट, क्योंकि एक तो ये गाना बहुत ही बढ़िया है इस फिल्म का, अलका याग्निक और हेमा सरदेसाई का, और फिर सोनू निगम का दिल, ये दिल दीवाना, ये भी इसी फिल्म में आपको देखने को मिलेगा।

0: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज़।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Rewind, sirf Rova par.
1: Discover the magic at Go Bananas Childcare, jahan aapke bacche seekhenge in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ye hamesha aapke paas hain. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. To jaldi join karo aur enjoy karo special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
2: When Elite Bathroomware promises that they offer a reflection of you, they're not just talking mirrors.
3: Although they have plenty of those.
2: No, it's just that with such an impressive range of options across shower units, toilet suites,
3: baths, basins, vanities, heated towel rails and more,
2: you can have exactly what you want at Elite.
3: Enjoy Elite service.
2: Elite products.
3: At affordable prices.
2: Elite Bathroomware, Allens Road, East Tāmaki. Yes, we'll say it again. A reflection of you.
4: दिवाली आ रही है और फॉर्च्यून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका. लोटस मैनिकाओ, माउंट रॉस्किल या बोटनी इन नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी टू फॉर्च्यून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश. साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट. बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो. फॉर्च्यून दिवाली, बी इन टू विन, एंड्स 15th नवंबर. टीज एंड सीज अप्लाई.
5: Huh? Free gold coins on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
6: Yes, Bebo.
5: Catch kya hai?
6: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free gold coins. Saath hi, selected jewelry par diamond value aur making charges mein up to 40% off ka fayda uthao.
5: I still can't believe it. No catch.
6: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar Gold and Diamonds. Botany Town Center, East Auckland.
7: PNC Supply.
8: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits. Dil Se.
9: जुड़े रहें हमारे साथ में क्योंकि थोड़ी देर में आपके लिए हम लेकर आएंगे दी वेदर फोरकास्ट फॉर दी कमिंग वीक. 12 तारीख अक्टूबर से लेकर नेक्स्ट वीक फ्राइडे तक क्या वेदर होने वाला है, इसके बारे में आपने सोचा है? अगर सोचा है तो ज़रूर बहुत अच्छा है. अगर नहीं सोचा है तो आपको आपके वीक प्लान करने में हम मदद करने वाले हैं. तो कीप हमिंग. फिलहाल आप इंजॉय कर रहे हैं नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स विद मी जिकाश ऑन सनडे नाइट मेलोडीज. नेक्स्ट अप अरिजीत सिंह.

संडे है और संडे नाइट मेलोडीज का कार्यक्रम जारी है। मैं हूं जिकाश, हमारे साथ में आप जुड़े हुए हैं थ्रू 104.2 एफएम या फिर रोवा के जरिए आप हमें सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच। रोवा सुनते हैं तो रोवा पर आप ऐप यूज़ करते हुए कई सारे कॉम्पिटिशन्स, प्रमोशंस, ड्रोज में शामिल हो सकते हैं। आप रोवा ओपन करें, अगर आप रोवा पर सुन रहे हैं तो रोवा पर एक टैब है जहाँ पर पॉडकास्ट सेक्शन में आप हमारे पॉडकास्ट सुन सकते हैं। आर्टिकल्स में हमने कुछ कंटेंट्स डाले हुए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। या फिर विन टैब के नीचे आप जाएंगे तो ढेर सारे कॉम्पिटिशन्स जहाँ पर आप डायरेक्टली कॉम्पिटिशन्स में एंटर हो सकते हैं थ्रू रोवा, तो उस पर आप जाए क्योंकि समा आने वाला है। समा आ जाता है तो कई सारे फेस्टिवल्स, कॉन्सर्ट्स होते रहते हैं और इसके लिए कुछ फ्री पासेस भी आपको हम देते रहते हैं। तो गेट ऑन टू रोवा, गो इन टू दी विन टैब एंड गेट इन टू योर पसंदीदा प्रमोशंस जहाँ पर आप अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए फ्री पासेस भी जीत सकते हैं। 8 बजने को आए हैं एंड 8 से 9 बजे के बीच आपके लिए हम लाते हैं बॉलीवुड अनप्लग्ड। यहाँ पर उन कलाकारों को हम आपके लिए पेश करते हैं जिन्होंने बॉलीवुड कवर्स को अपने अंदाज में गाया हुआ है, चाहे सिर्फ स्ट्रिंग्स पर या फिर कीबोर्ड पर। अगर आप भी एक आर्टिस्ट हैं, हम जानते हैं कई सारे लोग हैं जो कवर्स क्रिएट करते हैं ऑफ बॉलीवुड सॉन्ग्स, आप इस प्रोग्राम को बेहद पसंद करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं विद द ऑसम वॉइस ऑफ राहुल जैन। मैं हूं जिकाश, सन एंड मेलोडीज में मैं आपका साथ दे रहा हूं।

आज के इस दिन को खत्म होने में बस जस्ट अ लिटिल बिट ओवर 3 आवर्स बाकी रह चुके हैं। तो संडे के बाकी के वेदर के लिए आज रात को कुछ बारिश हो सकती है। आज दिन भर तो धूप बदली और बारिश का सिलसिला चलता रहा है। लुकिंग एट द वेदर फॉर द कमिंग वीक मंडे टू फ्राइडे, मंडे को बादल छाएंगे, काले काले बादल घिरते रहेंगे एंड शावर्स क्लियरिंग इन द मॉर्निंग बट रिमेनिंग क्लाउडी थ्रू आउट द डे फॉर मंडे। ट्यूजडे को भी बदली सी छाई रहेगी थ्रू आउट द डे, मोस्टली क्लाउडी विद अ चांस ऑफ शावर इन द मॉर्निंग। वेंसडे को बदली और धूप का सिलसिला रहेगा। बृहस्पतिवार को काले काले बादल छाए रहेंगे, रेन विद हैवी फॉल्स ईजिंग ऑन थर्सडे। फ्राइडे को शावर्स एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। तो इन जनरल भीगा भीगा सा मौसम रहने वाला है थ्रू आउट द वीक एक्सेप्ट ट्यूजडे एंड वेंसडे। तो अपनी छतरी रेनकोट्स अपने पास ही रखें। मेक श्योर यू आर नाइस एंड ड्राई व्हेन यू आर आउट एंड अबाउट फॉर द कमिंग वीक।

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
2: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
1: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
3: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
4: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
5: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
4: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
5: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
4: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
6: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
7: Mental health is part of our overall health. जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही मन का भी ख्याल रखना जरूरी है। अगर आप overwhelmed हैं या emotions manage करने में struggle कर रहे हैं, तो अकेले सामना करने की जरूरत नहीं है। Asian Family Services आपके कल्चर को समझते हैं और professional, confidential और free emotional support देते हैं। Call Asian Helpline Free on 0800-862-342. अगर आप या कोई जानने वाला डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें।
8: दिल से, दिल से, दिल तक।
9: हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
10: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
9: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
10: इंटरेस्टिंग, और कुछ?
9: बस इतना ही।
10: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
11: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry. And Fortune, bring home the fortune.
12: 8 तारीख नवंबर को दिवाली सेलिब्रेट हम करने वाले हैं इन न्यूजीलैंड एंड इसके लिए तैयारियां हो रही हैं। आपको तैयार करने के लिए हम आपको कुछ लाजवाब इनाम देना चाहते हैं। फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून, जैसे कि आपने अभी प्रोमो में सुना, इसके जरिए एग्जैक्टली $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस हम अपने कुछ लकी विजेताओं को देना चाहते हैं। एंड नाउ समय हुआ है कि आपको हम प्रदान करें एक अपॉर्चुनिटी जहाँ पर लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु कैंडोला के साथ में होकर आप जीत सकते हैं $1,000 वर्थ ऑफ न्यूजीलैंड न्यू वर्ल्ड वाउचर्स। न्यू वर्ल्ड में आप शॉपिंग करते हैं, आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी चीज़ें वहां पर मिलती है। एंड अगर हम आपको दे दें $1,000 टू गो एंड स्पेंड इन न्यूजीलैंड फॉर वन लकी विनर, क्या कुछ नहीं आप खरीद सकते हैं। $1,000 गोज अ लॉन्ग वे फॉर ग्रोसरी शॉपिंग या फिर घर की ज़रूरतमंद चीज़ों को लेने के लिए आपके पास। हम देने वाले हैं आपको $1,000 थैंक्स टू लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु कैंडोला। गुरु कैंडोला, अ हाउस होल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। गुरु कैंडोला को आप कॉल कर सकते हैं ऑन 0800 LOGIC G। तो गुरु कैंडोला की ओर से और हम की ओर से $1,000 आपको हम देना चाहते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, बहुत मेहनत नहीं करनी है, फ़ोन तो इस्तेमाल करना आपको आता ही है, बस लिखिए लॉजिक LOGIC space आपका नाम और सेंड करें 5599 पर। आपको हम मौका दे रहे हैं फॉर अबाउट 6 मिनट्स। 6 मिनटों के अंदर आप लॉजिक लिखकर अपना नाम लिखकर भेजे 5599 पर, एंड जस्ट लाइक दैट यू विल गो इनटू द ड्रॉ इन आवर फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून, जहां पर लॉजिक फाइनेंस की ओर से आप जीत सकते हैं $1,000 वर्थ ऑफ न्यू वर्ल्ड शॉपिंग वाउचर।

0: Hollywood's biggest hits.
1: Put your head to Gandhi.
2: Satyaprakash Dharmar, often known as Satyaprakash, ये एक highly acclaimed Indian playback singer और composer है. अगला गाना फिल्म का नाम है Wake Up Sid. इसमें इस गाना को गाया था, कंपोज किया था अमित त्रिवेदी ने, एंड इट वाज संग बाय कविता सेठ. सत्यप्रकाश ने इसको फिर से रिमास्टर किया है या फिर से अपने ही अंदाज में गाया है, एंड ही हैज़ रिलीज्ड ए हाईली रेटेड अनप्लग्ड अकूस्टिक कवर ऑफ दिस सॉन्ग एक तारा, जो आपको हम अब सुनाने जा रहे हैं अंडर द अलायस स्टोन बॉय. सत्यप्रकाश के बारे में बातें करें तो सत्यप्रकाश ही रोज टू फेम. ही फर्स्ट गेन वाइड स्प्रेड नेशनल अटेंशन एज द सेकंड रनर अप ऑन द पॉपुलर म्यूजिकल रियलिटी टीवी शो एयरटेल सुपर सिंगर 3 ऑन स्टार विजय. ही इज ए क्लासिकली ट्रेन्ड कर्नाटिक वोकलिस्ट एंड डिसाइपल ऑफ श्री चंद्रशेखर भगवथर. इन्होंने काम किया है, ही इज प्राइमरी वर्क्ड इन द साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, जहाँ पर तमिल, तेलुगु एंड मलयालम गीतों में इन्होंने अपना योगदान दिया है. एंड ही हैज़ रिकॉर्डेड ओवर 250 सॉन्ग्स. दैट्स एन अचीवमेंट. ही हैज़ कोलोबरेटेड विद लेजेंडरी कंपोजर्स लाइक अय्यर रहमान, इलैया राजू एंड जी वी प्रकाश कुमार. इनके कुछ सिग्नेचर हिट्स में शामिल है अलपूरन थामिजान फ्रॉम मरसल एंड ननलाई अलई फ्रॉम कात्रू वेलीदई. अगर आप साउथ से हैं, साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, देन यू मस्ट नो हम किस गाने के बारे में बातें कर रहे हैं. आइए सुनते हैं सत्यप्रकाश की आवाज़ में हिज रेंडिशन ऑफ एक तारा फ्रॉम द फिल्म वेक अप सिड.

0: ब्लडी सिल्वर कप का पहला मैच कल हुआ बिटवीन ऑल ब्लैक्स एंड वल्बीज एंड द नेक्स्ट मैच इज हैपनिंग आने वाले शनिवार को. बैक टू बैक दो वीकेंड्स पर दो मैच होंगे एंड द नेक्स्ट वन इज बीइंग होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया. नाउ हम जानते हैं कई लोग न्यूजीलैंड में रहते हैं लेकिन दे सपोर्ट द वल्बीज बिकॉज छोटे से करते आ रहे हैं. शायद आपके मॉम डैड ने आपको सिखाया है कि ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करें. जो भी हो एज लॉन्ग एज यू आर सपोर्टिंग रग्बी यू आर सपोर्टिंग द स्पोर्ट्स इन अ क्लीन वे दैट्स व्हाट इट मैटर्स एंड व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज कि आप एंजॉय कर रहे हैं हेल्थी कॉम्पिटिशन. तो शायद इस सप्ते का रिजल्ट आपके टीम के लिए अच्छा नहीं गया है तो फिंगर्स क्रॉस्ड नेक्स्ट वीक व्हेन ऑस्ट्रेलिया आर होस्टिंग शायद उधर कुछ धमाकेदार परफॉर्मेंस आपकी टीम के द्वारा दिखाई जाए. तो अपडेट्स इसके बारे में हम आपके साथ में शेयर करते रहेंगे. इसके अलावा एनपीसी नेशनल प्रोविंशियल चैंपियनशिप इस सप्ताहांत क्वार्टर फाइनल्स के खेल हुए. द लास्ट वन वाज प्लेड दिस आफ्टरनून. नाउ नेक्स्ट वीक सेमीफाइनल्स होने वाले हैं. कौन किससे खेल रहा है जानते हैं नहीं जानते हैं तो गो ऑन टू आवर फेसबुक पेज. वहां पर मैंने अभी अपडेट डाला है कि एनपीसी के सेमीफाइनल्स में कौन कौन सी टीम्स नजर आने वाली है और कब ये सेमीफाइनल्स होंगे.
1: रात भर शोर मचाए रखता है तुम्हारा ख्वाब है शायद जो जगाए रखता है. लिखना तो चाहता हूं तुम्हें कि कितना उदास हूं तुम्हारे बिना पर दिल है कि तुम्हारी यादों में उलझाए रखा.

संडे नाइट मेलोडीज का मजा आप ले रहे हैं एंड आपको याद होगा ऑल दोज पीपल हु लव फिजी कीर्तन, आप आए थे टू गेट योर रिकॉर्डिंग्स डन विद आवर हम टीम, जहां पर आपके कीर्तनों को हम अब तैयार कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग तो हो चुका है लेकिन उसके बाद वाला काम अभी जारी है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर मिक्सिंग दोज कीर्तन्स एंड प्रोड्यूसिंग देम सो दैट इसको पब्लिश किया जा सके ऑन आवर हम फिजी कीर्तन्स के प्लेटफॉर्म पर। तो सुनते रहे हमें ऑन रोवा एंड बहुत ही जल्द जितने भी आर्टिस्ट्स आए थे फॉर दी हम कीर्तन रिकॉर्डिंग, हम कीर्तन रिकॉर्डिंग्स जो हमने की है विद विजय वर्मा एंड अवनीत भी थे हमारे साथ में होकर, आपने अपना योगदान दिया है। तो मेहनत अभी रंग लाने वाली है क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लगता है टू प्रॉपरली मिक्स दोज ट्रैक्स, ताकि एक बढ़िया क्वालिटी का फिजी कीर्तन हम आपके लिए लोड कर सके ऑन आवर कीर्तन प्लेटफॉर्म ऑन रोवा। तो इफ़ यू वेर देयर एंड यू गॉट योर ट्रैक रिकॉर्डेड,

0: girl right there.
1: Streaming on Rover.
2: Non-stop Bollywood.
3: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
2: हम playing Bollywood.

बोला क्यों रायन वेलकम बैक टू संडे नाइट मेलोडीज 9 बजने को आए हैं मैं हूं जिकाश आपका साथ देता चल रहा हूं इन दिस ऑसम प्रोग्राम 9 से 10 बजे के बीच कहकशन लेकिन कहकशन का कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम याद दिलाना चाहते हैं टू द पीपल हु आर क्लॉकिंग ऑफ वेरी सून आपने आफ्टरनून शिफ्ट अपना ख़त्म किया है या फिर वो लोग जो लोग आफ्टरनून शिफ्ट के बाद नाइट शिफ्ट अब शुरू करने जा रहे हैं सेफ्टी इज़ पैरामाउंट अगर आप काम ख़त्म कर रहे हैं मेक श्योर आप क्लीन अप कर ले अपने एरिया को ताकि देर आरंट एनी स्लिप एंड ट्रिप हैजर्ड्स फॉर द नेक्स्ट शिफ्ट क्रू और अगर आप काम शुरू करने जा रहे हैं मेक श्योर कि आप अपने प्रोटेक्टिव गियर को अच्छी तरह से पहना है दे आर ऑल अप टू डेट ऐसा नहीं हो कि आपने कुछ एक्सपायर्ड चीज़ें पहनी है जो आउट ऑफ डेट हो चुका है क्योंकि विद टाइम थिंग्स डिटेरियोरेट एंड उतना ज़्यादा सेफ्टी आपको नहीं प्रदान कर पाएगा अगर कुछ भी एक्सीडेंट्स हुए तो अगर आपके सेफ्टी गियर है मेक श्योर दे आर ऑल अप टू डेट बस यही कहना चाहता हूँ कि जो भी काम आप कर रहे हैं सेफली एग्जीक्यूट करें ताकि आपकी आपका काम भी ख़त्म हो बढ़िया से और दोबारा आप अपने घर को एकदम सेफली रिटर्न कर सके घर को जा रहे हैं हड़बड़ी मत करें आस्ते आस्ते होले होले हमें सुनते हुए कार्यक्रम को एंजॉय करते हुए और द लाइनअप ऑफ गजल्स जो हमने आपके लिए लाए हैं इसका मज़ा लेते हुए आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहिएगा फिलहाल आइए शुरुआत करते हैं विद द ऑसम वॉइस ऑफ हादिका कियानी विद दिस रेंडिशन ऑफ जाने इस दिल का कहकशन में आप सभी का दिल इस्तकबाल है

नाउ दिवाली दीपावली इसको मनाने के लिए कई सारे रीजंस है एंड आई वोंट गो इनटू ऑल ऑफ दैट, लेकिन दिवाली के लिए आपके मूड को सेट हम करने वाले हैं क्योंकि बहुत ही स्पेशल चीज हम अब करने वाले हैं ऑन हम दिस दिवाली. You will be experiencing the timeless story of Ramayan with Hum. Yes, ek anokhe andaaz mein, from Monday onwards, Hum brings you Ramayan ek gatha. Ye ek bahut hi specially produced 1 to 2 minute epic storytelling segment hai. Bahut hi creatively isko humne banaya hai, which will take you through memorable stories, characters and moments from Ramayan. Isko present kiya ja raha hai across different times throughout the day. Lekin ye short but powerful stories are designed to bring the spirit, values and timeless wisdom of Ramayan into your everyday listening. So, bas another reason to stay hooked with Hum. Diwali ke liye aap to celebrate karenge hi, lekin aapko aur bhi divinity ka ehsaas dilane ke liye ye awesome sa Ramayan ek gatha series aur bahut lambi lambi nahi छोटी छोटी स्टोरीज आपके साथ हम शेयर करेंगे. स्टोरीज दैट हैव लिव्ड फॉर जनरेशंस ओनली ऑन हम. आइए सुनते हैं जगजीत सिंह को.

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: वेलकम टू कबाब्स किचन। आई एम शेफ एलेक्स और ये है मेरी गेस्ट सेरा।
2: बनाते हैं कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स?
1: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स। हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन।
2: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग। स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो जूसी।
1: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट। अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स।
2: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव।

ऑलराइट, तो हमने कहा था सोमालियन पायरेट के बारे में आपको हम बताएंगे कैसे सोमाली से जो पायरेट्स थे इन्होंने पायरेटिंग बंद किया। 2009 में हेडलाइंस हुई दुनिया भर में जब 2009 में मर्स्क अल्बामा जो शिप है इसके कैप्टन को भी बंदी बनाया गया, शिप को हाईजैक किया गया एंड द हाईजैक एंडेड विथ नेवी सील स्नैपर्स एंड इट बिकेम द टॉम हैंक्स मूवी कैप्टन फिलिप्स। तो इसके बाद में कई सारे कंट्रीज जैसे कि यूएस, यूरोपियन यूनियन, नाटो, चाइना, इंडिया एंड जापान, ऑल ऑफ देम स्टार्टेड पेट्रोलिंग द गल्फ ऑफ एडन एंड नन ऑफ इट कुड स्टॉप द अटैक्स। क्योंकि सोमाली पायरेट्स दे यूज टू बी फिशरमैन, जिस इलाके में फिशिंग करते थे इंटरनेशनल ट्रोल फिशिंग के कारण वो फिशिंग नहीं कर पा रहे थे एंड दे एंडेड अप पायरेटिंग। तो उस इलाके में जो भी शिप्स आते उन पर ये धावा बोल देते एंड चोरी चकारी करते थे। एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो गया था बैक इन द डे। तो इसको रोकने के लिए एक शख्स का नाम काफ़ी लोग शायद नहीं जानते होंगे, कियोशी किमुरा। ही इज़ द ओनर ऑफ सुशी ज़ेनमेई चेन हु हैज़ एट वन टाइम स्पेंड $3.2 million फॉर वन ब्लूफिन टूना। इन्होंने अकॉर्डिंग टू हिज ओन अकाउंट एंड पीपल अराउंड हिम ही वेंट टू सोमालिया अराउंड 2012 एंड कंक्लूडेड द पायरेट्स, पता लगाया कि पायरेट्स वेर आउट ऑफ वर्क फिशरमैन हुज वाटर्स हैड बीन एम्प्टीड बाय फॉरेन ट्रोलर्स। इन्होंने इन पायरेट्स को बताया कि इंस्टेड ऑफ स्टीलिंग, इंस्टेड ऑफ पायरेटिंग, दे स्टार्ट कैचिंग येलोफिन टूना एंड ही बिल्ट फ्रीजर्स टू होल्ड दोज कैचेस एंड प्रोमिस्ड टू बाय एवरी फिश। दे डिडंट इवन लाइक पायरेटिंग, इनका ये कहना है। आई सजेस्टेड दैट दे कैच टूना इंस्टेड एंड मेक प्राउड लिविंग फॉर देयर फैमिलीज। सोमाली अटैक्स फेल फ्रॉम 237 इन 2011 टू ओनली 15 इन 2013 एंड बाय 2015 द हाईजैकिंग्स हैड स्टॉप्ड। तो नाम आप भी याद रखिए, कियोशी किमुरा, द ओनर ऑफ सुशी ज़ेनमेई चेन। लुकअप करें, ये स्टोरी आपको भी बहुत पसंद आएगी।

0: playing Bollywood's biggest hits.
1: Hey ChatGPT, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
2: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
1: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
2: इंटरेस्टिंग। और कुछ?
1: बस इतना ही।
2: सर, मैं ChatGPT हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
3: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु कंडोला, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री, एंड फॉर्चून, ब्रिंग होम द फॉर्चून।
4: जबरदस्त हिट्स
5: शुरू हो जाए तो रुकते नहीं,
4: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
6: हम
4: दिल से दिल तक
7: सन एंड मेलोडीज में आप ज़्यादातर हमारा साथ देते हैं। मैं जुकाश, आपके साथ मैं जुड़ जाता हूँ इन रेडियो पब एज वेल एवरी सैटरडे को दिन में 12 से 6 बजे के बीच। और कल एक गाना मैंने बजाया था राजीव राजा का, तुम तो ठहरे परदेसी का जो नया रेंडिशन है, और इसमें गाने की शुरुआत में कुमार विश्वास का की एक पोएट्री डाली गई है, खुद कुमार विश्वास की आवाज़ में, जिसका नाम है कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। पर्सनली आई लव दिस पोएट्री। काफ़ी लंबी है लेकिन उसमें से 4-8 लाइंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लुकअप करें कुमार विश्वास एंड कोई दीवाना कहता है, पूरी पोएट्री आपको मिलेगी, क्योंकि इसमें बहुत ही, एक तो कुमार विश्वास बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत ही बढ़िया लेखक है, और उतनी ही अच्छी तरह से अपनी कविता को ये पेश भी करते हैं। तो 8 लाइनें हैं। आई एक्चुअली परफॉर्म दिस पोएट्री इन अ फेस्टिवल अबाउट 15-16 साल पहले इन फिजी, और जब जैसे ही मैंने इसको सुना था, आई न्यू कि मुझे इसको दोबारा रिसाइट करना है। एंड आज गज़ल आप सुन रहे हैं, एंड गज़ल पर पोएट्री क्यों ना, तो आइए सुनाते हैं आपको। कुमार विश्वास लिखते हैं, मेरा लिखा नहीं है, और बहुत ही बढ़िया लिखा है इन्होंने, कि कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आँखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है।

0: 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।
6: दिल से।

सनडाइन मेलोडीज दिल से एंड 10 से 12 बजे के बीच 90s दिल से, वो कार्यक्रम जहां पर हम यस्टरडेज की कुछ यादें ताज़ा करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑसम म्यूजिक फ्रॉम द 1990s। कुछ मेरे फेवरेट्स, कुछ आपके फेवरेट्स, दोनों मिलाकर हम 2 घंटे तक बस एक सुकून की सांस लेते हैं और गानों में जो प्यार भरा है उसे महसूस करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सफर की विद द गोल्डन वॉइस ऑफ उदित नारायण विद अ सॉन्ग दैट इज क्लोज टू माय हार्ट। एंजॉय करें।

0: Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: हमारे समाज में ऐसे कई सारे लोग हैं ना, नॉट सेइंग कि हमारे लिसनर्स ऐसे लोग हैं, पर दे आर पीपल एंड यू नो पीपल, पीपल डू पीपल थिंग्स. डॉग्स के बारे में हम बातें करना चाहते हैं. जो लोग इलीगल ब्रीडिंग करते हैं, घर पर ब्रीडिंग करते हैं, जो लोग लाइसेंस्ड नहीं है एंड बस कुछ पैसों के लिए कुत्ते पालते हैं, उनको ब्रीड करवाते हैं और जब कोई जरिया नहीं होता है उनकी देखरेख करने के लिए उनको रास्ते के किनारे डिस्कार्ड कर देते हैं इन अ वेरी इनह्यूमन वे. ऐसे लोग जहन्नम में जाएंगे एंड आई होप जीते जी वो जहन्नम एक्सपीरियंस करें. ऑकलैंड काउंसिल क्या कर रहा है? मार्च में इट मार्क्ड 1500 हाई रिस्क डॉग्स डिसेक्स्ड थ्रू द डिसेक्सिंग प्रोग्राम जो जून 2025 में हुआ. तो इस साल मार्च तक 1500 हाई रिस्क कुत्तों को डिसेक्स किया गया, हेल्पिंग टू मैनेज डॉग पॉपुलेशन नंबर्स. इसके साथ में अ न्यू डॉग अडॉप्शन वेबसाइट भी लॉन्च किया गया अलोंग साइड ए वैलेंटाइंस डे पपी लव इवेंट विद हंड्रेड्स ऑफ अटेंडीज. नाउ अभी हाल ही में हमारे घर पर भी हमने एक छोटा सा कबूडल लाया है एंड माई गर्ल्स एब्सोल्युटली लव इट. आई एम ऑल्सो गेटिंग सॉर्ट ऑफ अटैच्ड टू इट. तो हैप्पीनेस क्रिएट करता है अगर आपके घर में एक पेट है. एंड वाई आई एम शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन कि अगर आप भी सोच रहे हैं of getting a dog, this adoption website, यहाँ पर ढेर सारे dogs हैं जिनको आप adopt कर सकते हैं. You can fall in love with your new best friend. ouroakland.auckland.gov.nz वहाँ पर जाए या फिर you look up Auckland Council Adoptable Dogs. You'll end up on the website जहाँ पर category में आप ticks मार कर देख सकते हैं कि आपको किस तरह का डॉग चाहिए, चाहे वो पपी हो अंडर सिक्स मंथ्स या फिर आपको एक यंग 7 to 12 मंथ्स का कुत्ता चाहिए, अडल्ट चाहिए, मीडियम लार्ज स्मॉल डॉग्स देट आर गुड विद चिल्ड्रन या फिर मेल या फीमेल, एनर्जी टाइप कैसी होनी चाहिए, ये सब कैटेगरीज है. जैसा आपको पसंद आए उसको आप उस तरह से फिल्टर करें एंड देन यूल हैव ए लिस्ट ऑफ डॉग्स जिनको आप अडोप्ट कर सकते हैं. तो लुकअप ऑकलैंड काउंसिल अडोप्टेबल डॉग्स और पूरी जानकारी है और अच्छे हेल्थ में ये सारे कुत्ते हैं, इनको अच्छी तरह से इनकी देखरेख की गई है इन द अडॉप्शन सेंटर एंड दे आर रेडी फॉर देयर न्यू होम्स एंड यू माइट जस्ट बी दैट सेंट जो इन कुत्तों को बचा सके, इन कुत्तों को वो प्यार दे सके जो ये डिजर्व करते हैं. लुकअप, दे आर वेरी अडोरेबल.

0: Ladies and gentlemen,
1: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
2: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
1: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
3: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहाँ आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer. 6 months completely free and the following 6 months, 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
4: A bit of recap about some stuff that's happening in the coming week and Rugby League World Cup shuru hone wala hai from the 15th of this month. Australia mein pehla match hoga between the Kangaroos and our New Zealand Kiwis. Aur us, Australia and Papua New Guinea milkar is saal ke liye Rugby World Cup host kar rahe hain, Rugby League World Cup host kar rahe hain. Friday ko ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया जिलरूस और सामोन वीमेंस टीम भी पहला मैच खेलेंगी इन दी रग्बी लीग्स वीमेंस वर्ल्ड कप. तो दोनों साइमल्टेनियसली रन होने वाले हैं फ्रॉम दिस कमिंग वीकेंड. कमिंग वीकेंड आई लीग भी शुरू हो जाएगा एंड सैटरडे को शाम 5 पर हमारी ऑकलैंड एफसी ये होस्ट कर रही है देयर फर्स्ट मैच एंड वी आर प्लेइंग अगेंस्ट Melbourne City Football Club. Wellington Phoenix are playing on Sunday 3 p.m. in Wellington. Women's mein dekhe to Western Sydney aur Melbourne Victory are playing their first match on 5 p.m. at 5 p.m. on the Saturday 17th of October.

दृश्यम 3 द कंक्लूजन ये बहुत ही बढ़िया बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 312 करोड़ इन्होंने अभी तक किया है। डे 8 में अप्रोक्सीमेटली 9.46 करोड़ टू 14.5 करोड़, ब्रिंगिंग टोटल इंडिया नेट अराउंड 260 करोड़। ग्रॉस है 312 करोड़। वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन अभी तक इट हैज क्रॉस्ड ओवर 407 करोड़ रुपीज, एंड यू नो व्हाट दैट मींस, दैट मींस 48 मिलियन डॉलर्स ग्लोबली। दैट्स अ माइलस्टोन। द फिल्म हैज ऑफिशियली सरपास्ड प्रीवियस फ्रेंचाइज रिकॉर्ड्स एंड रैंक्स अमंग द टॉप ग्रॉसिंग बॉलीवुड रिलीजेस ऑफ 2026। हैट्स ऑफ टू अजय देवगन।

0: हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
1: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
0: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
1: इंटरेस्टिंग। और कुछ?
0: बस इतना ही।
1: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
2: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु गंडोला, a household name in finance and insurance industry, and Fortune. Bring home the fortune.

वेलकम बैक टू हम सन एंड मेलोडीज में हम 90s दिल से कार्यक्रम जारी किए हुए हैं, जहां पर 90s के कुछ लोकप्रिय गीत हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके साथ में एंजॉय भी कर रहे हैं। पूजा मेरी जान, हुमा कुरैशी, मृणाल ठाकुर, विक्रम सिंह चौहान की मूवी विद विजय राज। दिस मूवी 2 अक्टूबर को रिलीज हुई। आई येट हैव टू वॉच द ट्रेलर, आई एम जस्ट गोना चेक इट राइट आफ्टर दिस। दिस मूवी हैज रिलीज्ड ऑन द 2 अक्टूबर। इसको अभी तक 3 out of 5 स्टार्स मिले हैं। व्हाट अ लाइनअप ऑफ, आई मीन कास्ट लाइनअप कितना बढ़िया है इसका। हुमा कुरैशी, मृणाल ठाकुर, विक्रम सिंह एंड विजय राज। आई थिंक इट शुड बी अ गुड मूवी। रिपोर्टिंग लाइव 9 अक्टूबर को रिलीज हुई ऑन नेटफ्लिक्स एंड परिणीति चोपड़ा इज सॉर्ट ऑफ मेकिंग अ कम बैक। For personally, I've always loved her films, and I'm glad that she's been seen on the screen a bit more. Parineeti Chopra, Devan Bhojani, Amol Palekar aur Shekhar Suman ke saath mein inki film Reporting Live aayi hui hai Netflix par, and do roz hue hain, lekin critics ne inko acha rate kiya hai, a thriller crime movie ye rehne wali hai. Iske alawa दृश्यम के बारे में हमने तो बताया, इट्स डूइंग मार्वलस एट द बॉक्स ऑफिस, 3.5 स्टार्स अभी तक इसको प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा कुछ अपकमिंग मूवीज़ है जिसके बारे में हम जानकारी आपको देंगे बस थोड़ी देर में।

0: जाने जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हूँ।
1: ये गलत बोल दिया यार।
0: और पहनता भी नहीं है उसको।
1: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी, बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुजबे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ।
0: इंटरेस्ट
2: ब्रांड हो गया अभी वो।
1: अभी ब्रांड हो गया ना।
0: रुजबे के बाल लगे उस।
3: The Drive Show with Sandy and Ruzbe, brought to you by Beds R Us, Manuku and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manuku and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. Non-stop Bollywood.
4: जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं।
3: हम playing Bollywoods.

Hey, kia ora. Welcome back to Sunday Night Melodies, जहां पर मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूं. दिल से 90s दिल से कार्यक्रम जारी है. बिटवीन 10 एंड 12 आपके लिए ये कार्यक्रम लेकर आते हैं. एंड सिंस दिस इज द फाइनल आवर, आप तो जानते ही हैं कि यहां पर व्हाट्स इट प्ले आपके लिए हमने लाइनअप कर दिए हैं कुछ रियली मेलोडियस सॉन्ग जिसको आप एंजॉय करें एंड फिनिश योर डे पीसफुली. जहाँ पर आप शायद अनवाइंड कर रहे हैं, शायद रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ऑन योर अचीवमेंट्स या फिर हार्डशिप्स जो आपने फेस की है ड्यूरिंग द वीक, एंड मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर अ न्यू डे टुमारो. जो भी हो, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर मैं जिकाश आपका साथ देता रहूँगा राइट टिल मिडनाइट. जैसे कि मैंने कहा कि मेलोडियस ट्रैक्स आपके लिए हमने लाइनअप कर दिए हैं, तो बात हम बहुत कम करेंगे. बस आपके साथ में मिलकर आप जो बेवरेज एंजॉय कर रहे हैं विचुअली हम यहाँ से आपके साथ में एंजॉय करेंगे. तो आइए स्वागत करते हैं इन द फाइनल आवर ऑफ द 11th ऑफ अक्टूबर 2026. क्योरा

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

सनी रेड मेलोडीज का मजा आप ले रहे हैं, आपके साथ मैं भी उतना ही मजा ले रहा हूँ। आई केम अक्रॉस दिस आर्टिकल, हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो अस्पताल जाना पसंद नहीं करते हैं। आई मीन नो वन लाइक्स गोइंग टू द हॉस्पिटल, बिकॉज हॉस्पिटल जाना मतलब आप बीमार हो, या फिर आप किसी को देखने जा रहे हो मतलब कि आपकी कोई चाहने वाला बीमार है। तो हॉस्पिटल्स आर अ नो नो, और जितना हो सके कभी ज़्यादातर हम सोचते हैं कि हम अपने आप ख्याल रख सकते हैं। थोड़ा सा जुकाम हुआ तो ये कर ले, थोड़ी सी सर्दी हुई, थोड़ा सा फीवर हुआ तो सूप खा ले तो ठीक हो जाएगा। कुछ हद तक ये चलता है, लेकिन ऐसे कई सारे सिम्टम्स हैं जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल देयर आर सम सीवियर रेड फ्लैग्स जिसको आप खुद ट्रीट नहीं कर सकते, जैसे कि सीवियर अनएक्सप्लेन्ड पेन, अचानक से ही बहुत ज़्यादा दर्द आपको हो एंड कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि आपने कुछ वजनदार उठाया था उसके कारण से मसल पुल हो गया है, नहीं, बस यूं ही अचानक से अगर पेन हो जाता है तो आपको डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। या फिर पर्सिस्टेंट फीवर, अ फीवर इज़ अ क्लियर साइन दैट एन इन्फेक्शन मे बी प्रेजेंट एंड समथिंग नीड्स टू बी डन अबाउट इट। इफ़ यू हैव अ वुंड एंड सडनली डेवलप अ फीवर, देयर इज़ अ साइन, दैट इज़ अ साइन टू गो स्ट्रेट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट रादर देन वेटिंग फॉर थिंग्स टू एस्केलेट। Other critical signs that warrant medical attention include unexplained weight loss, अचानक से ही आप दुबले हो गए ना चाहते हुए भी, ongoing vomiting, उल्टी हो रही है बार बार लगातार, इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, हाँ शराब ज़्यादा पी ली है तो उल्टी होगी ही, लेकिन शराब से alcohol poisoning भी हो सकती है, तो of course you need to consult your doctors। Difficulty swallowing or breathing and blood in your vomit or stools, इसे आप घर पर नहीं ट्रीट कर सकते, नहीं ट्रीट करना चाहिए, यू नीड टू सीक मेडिकल हेल्प। फॉर क्रिटिकल इमरजेंसीज लाइक चेस्ट पेन, सीवियर हेडेक, सडन वीकनेस और फेशियल ड्रूपिंग और सीवियर डिफिकल्टी ब्रीदिंग, यू शुड नेवर वेट टू सी इफ इट गोज अवे, गेट अर्जेंट मेडिकल अटेंशन, या फिर आप 111 को कॉल करें इमीडिएटली। 111 जानते हैं ना, हमारा इमरजेंसी नंबर।

0: Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Playing

0: ऑलराइट, अब तो हमारे यहाँ से निकलने का वक्त हो चुका है। याद रहे कल सोमवार है एंड रामायण एक गाथा, ये हमारी स्पेशली प्रोड्यूस सीरीज है, एक से दो मिनट लंबी सीरीज ऑफ एपिक स्टोरी टेलिंग सेगमेंट्स हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं फ्रॉम रामायण। और ये है स्पेशली ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। दिवाली के लिए आपको हम प्रिपेयर कर रहे हैं, मूड सेट कर रहे हैं एंड आपको उस डिविनिटी का एहसास दिलाने के लिए हम इधर से अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं। ओनली ऑन हम रामायण एक गाथा। इस दिवाली में आप सेलिब्रेट करें फेस्टिवल ऑफ लाइट्स विद स्टोरीज दैट हैव लिव्ड फॉर जनरेशंस। इसके साथ में इलेक्शंस की भी तैयारियां हो रही है एंड हमने बातें की है, नॉट हमने, हमारे ड्राइव शो होस्ट सैंडी एंड रुजमे ने बातें की है खड़क सिंह से, जो कि लेबा कैंडिडेट फॉर तकनीनी है। क्या इन्होंने कहा है, किस तरह से ये कैंपेन कर रहे हैं, लेबा आपके लिए क्या करना चाहता है इन साउथ ऑकलैंड, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो ड्राइव लिखकर भेजिए 5599 पर। इसके अलावा फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून 2026, इसके तहत $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस हम देना चाहते हैं, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं एंड एवरी प्राइज इज़ वर्थ $1,000। छोटा मोटा प्राइज नहीं देते हम, बड़ा प्राइज देते हैं। तो सुनते रहे हम और हमारे अन्य साथियों को भी अपना साथ अपना प्यार देते रहे। आई विल बी बैक ऑन हम सून, और जब तक नहीं आता तब तक के लिए आप अपना भरपूर ख्याल रखें। मिलते हैं कुछ दिनों बाद। आप सभी को जिकाश का नमस्कार, शुभरात्रि।
1: You're listening to Jikash.

हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।

0: Flight on Hum.
1: हेलो हेलो हेलो साहिबान कदरदान
2: मियां माइक में घुसे जाओगे क्या?
3: अबे नौटंकी बंद करो, पिंकी आ रही है।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels everyone, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
0: Weekdays, 6 to 10 a.m.
5: कॉमनवेल्थ वॉल्ट आपके प्रेशियस बिलोंगिंग्स को रखता है सेफ और सिक्योर। गोल्ड, बुलियन और प्रेशियस मेटल्स की वैल्यू जब ऑल टाइम हाई पे है, तब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके एसेट्स थेफ्ट और नेचुरल डिजास्टर से प्रोटेक्टेड रहें। जब आप अपने वैल्यूएबल्स कॉमनवेल्थ वॉल्ट को इंट्रस्ट करते हैं, तो आपको मिलता है पीस ऑफ माइंड, ये जानते हुए कि वो सेफ, सिक्योर और प्रोटेक्टेड रहेंगे। कॉमनवेल्थ वॉल्ट, सिक्योरिंग योर वैल्यूएबल्स फॉर अ लाइफटाइम एंड बियॉन्ड। डिटेल्स एट commonwealthvault.go.nz. That's commonwealthvault.go.nz.
6: Media Works Complaints. How can I help?
7: Yeah. Hello?
6: Hi.
7: Hi. Yeah. Can you guys take a radio jingle out of my brain?
6: Oh, you mean like a jingle extraction? It's our job to put advertising in there.
7: Well, okay. Well, what about something like a brain surgeon?
6: They'll probably just explain how repeat hearing puts things deep in your emotional memory, and I really don't think it's necessary. But yes, if you must, I do have the name of one.
7: Great. Sing it to me.
8: Advertise with
9: Media Works.
8: New Zealand listens to us.
10: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
11: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swad bhi, sehat bhi.
12: Flying.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
2: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 ईयर्स।
4: दिवाली आई, खुशियाँ लाई, PFSL स्पेशल ऑफर लेकर आया है। अपने ड्रीम होम का सपना सजाएं, PFSL के साथ होम लोन करवाएं, $400,000 या उससे ज्यादा का एलिजिबल लोन सेटल करें और $250 का गिफ्ट कार्ड घर ले जाएं। 50 इंच टीवी के लकी ड्रॉ में भी एंट्री पाएं। तो इस दिवाली खुशियाँ बढ़ाएं, PFSL के साथ अपना ड्रीम होम सजाएं। सर्च PFSL और कॉल 09846-9934। टर्म्स एंड कंडीशंस एंड लेंडिंग क्राइटेरिया अप्लाई।

0: हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
1: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
0: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
1: इंटरेस्टिंग। और कुछ?
0: बस इतना ही।
1: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
2: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटिफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry. And Fortune, bring home the fortune.
3: Huh? Free gold coins on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
4: Yes, Bebo.
3: Catch kya hai?
4: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free gold coins. Saath hi selected jewelry par diamond value aur making charges mein up to 40% off ka fayda uthao.
3: I still can't believe it. No catch.
4: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar Gold and Diamonds, Botany Town Center, East Auckland.
5: PNC Supply.
6: Playing Bollywood's biggest hits.
7: Budget gaane.

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम। How does one person finance on a new Jeku sound? Right now at West City Omura Jeku, get one person per annum fixed finance for 36 months with a 20% deposit on the Jeku J7 SHS. And it's just dropped $2,000 in price, now starting from $47,990 plus on-road costs. Talk to Jimmy Taylor and team at West City Omura Jeku. For full terms and conditions, head to westcityautogroup.nz.
6: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
7: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
8: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994399 और विजिट लीगल एसोसिएट्स.co.nz।

0: हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
1: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
0: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
1: इंटरेस्टिंग। और कुछ?
0: बस इतना ही।
1: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
2: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु कंडोला, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री, एंड फॉर्चून, ब्रिंग होम द फॉर्चून।
3: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। ईट बेटर, लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz। अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
4: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
5: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
6: And award goes to Indelible Homes.
5: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
7: Kahani of Indelible Homes.
8: Night Fly.

दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

0: The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ।
2: ये गलत बोल दिया यार।
1: और पहनता भी नहीं है उसको।
2: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया अभी वो।
2: अभी ब्रांड हो गया ना।
1: रुस्बे के बाल लगे उस
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWN Havel and Omura J2.
4: Settle.

0: $29.90 plus on-road costs. Talk to Jimmy Taylor and team at West City Omura Jeku. For full terms and conditions, head to westcityautogroup.nz.
1: Welcome to Kebab's Kitchen. I am Chef Alex and this is my guest, Sarah.
2: What do you make in kebab ko special, Chef Alex?
1: Perfect blend of spices, tender meat and fresh vegetables. Har kebab banta hai with love and passion.
2: Wow, these kebabs are amazing. Spices ekdam right and meat is so juicy.
1: Ye hai Amma's Kebab's promise, delivering happiness bite by bite. Amma's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
2: 100% authentic and pure as mother's love.
3: न्यूजीलैंड के रीसेंट फ्लड्स ने काफी डैमेज किया है. फोकस किचन सारे न्यूजीलैंडर्स की तरह इन विक्टिम्स के साथ खड़े हैं एंड आर हेल्पिंग देम गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ बाय हेल्पिंग देम आउट विद देयर किचन कैबिनेट्स. फोकस किचन प्रोवाइड कर रहे हैं अ वेरी स्पेशल प्राइस फॉर पीपल विद फ्लड डैमेज किचन्स. कॉन्टैक्ट फोकस किचन ऑन 09281-3050, यूनिट के 33 वॉम्सली रोड, ओटाहू. फॉर इन्फो एंड डिजाइन आइडियाज विजिट focuskitchens.co.nz.
4: Hollywood.
5: World's best. Hamari good brands nahi hai. Wow. Night Flight.

पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वो दिन जब मोहब्बत खत्म होती थी।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर। कॉमनवेल्थ वॉल्ट आपके प्रेशियस बिलोंगिंग्स को रखता है सेफ और सिक्योर। गोल्ड, बुलियन और प्रेशियस मेटल्स की वैल्यू जब ऑल टाइम हाई पे है, तब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके एसेट्स थेफ्ट और नेचुरल डिजास्टर से प्रोटेक्टेड रहें। जब आप अपने वैल्यूएबल्स कॉमनवेल्थ वॉल्ट को इंट्रस्ट करते हैं तो आपको मिलता है पीस ऑफ माइंड, ये जानते हुए कि वो सेफ, सिक्योर और प्रोटेक्टेड रहेंगे। कॉमनवेल्थ वॉल्ट, सिक्योरिंग योर वैल्यूएबल्स फॉर अ लाइफटाइम एंड बियॉन्ड। डिटेल्स एट commonwealthvault.co.nz। दैट्स commonwealthvault.co.nz।
1: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927 88 600.

0: in recent months. Principal economist Brad Olson says the dollar fell to a 17-year trade-weighted low in September.
1: The lower the dollar is, the more expensive it is to buy imported items into New Zealand.
0: Police are seeking help as they investigate a serious weekend assault in Auckland's Mangere. Officers responded to an altercation outside a home on Harwell Place around 12:30 Saturday afternoon. A firearm is thought to be involved and two people were injured. President Trump claims Ukraine and Russia have agreed to an energy ceasefire. However, his Ukrainian counterpart Volodymyr Zelensky says it's news to him, but that he would agree to it if Moscow does. Russia is yet to comment. In sport, motorsport with Mag and Turbo's 80,000K tyre warranty, a dramatic finish to the Bathurst 1000 on Sky Sport.
2: And Anton Di Pasquale has run out of fuel. It's a mountain boil over. Extraordinary scenes.
0: Anton Di Pasquale's gas tank dried up on the final lap as Brody Kostecki and Todd Hazelwood won in their Ford Mustang. And more Formula One points for Liam Lawson, finishing seventh in Singapore as Max Verstappen won again for Red Bull.
3: News.
4: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
5: सुपर सिटी ऑकलैंड में आज का मौसम अगर देखा जाए तो बताया गया है कि ज़्यादातर बारिश जो है ये आज होगी, और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि शाम के समय बारिश जो है ये थमती हुई नज़र आएगी, बट बिफोर दैट मोस्टली क्लाउडी एंड रेनी वेदर जो है ये आज रहेगा। और फिलहाल आपको याद दिला दें, आज का सनराइज 6:40 AM पर यानी इसी घंटे होगा और सनसेट होगा 7:35 PM पर। टेम्परेचर हैज़ गोन अप टू 16.3 degrees राइट नाउ, और ओवरनाइट आज का टेम्परेचर 14 degrees रहेगा, जबकि High of 20 degrees expected है आज बाद में चलकर।
4: Breakfast catch up, the breakfast show with Vijay and Pooja.
6: पूरी की पूरी गैंग के लोगों, कान के साथ सब कुछ खोल के सुन लो।
5: Hello, Kiora. Good morning. Namaste and welcome to Hum, playing Bollywood's biggest hits. This is the breakfast show with Vijay and Pooja. Filhal 4 minute ho rahe hain, main hamare studios mein waise 6 bajkar. Aapko bhi a very good morning and welcome to the show.
7: Good morning aapko, aur jahan kahin se bhi aap hamara saath de rahe hain, is subah ki dheru sari shubhkamnaen aapko.
5: Aapko bhi, aur of course aaj hai Monday 12th of October. Aaj ki ye subah aapke naam kar rahe hain. Aaj ke safar ke saath, is program ke saath, the breakfast show with Vijay and Pooja ke saath, only on Hum, playing Bollywood's biggest hits. So 104.2 FM या रोवा के जरिए आप अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप न्यूजीलैंड के किसी भी कोने से या फिर दुनिया के किसी भी कोने से फिलहाल हमें सुन रहे हैं, आप सभी का खास वेलकम हम कर रहे हैं आज के हमारे सफर में।
7: और ऑल द बेस्ट हम कहना चाहेंगे सभी स्टूडेंट्स को गेटिंग बैक टू स्कूल। नॉट द आइडियल वेदर जो हम चाहेंगे स्कूल के शुरुआती दिन के लिए, लेकिन ये तो हमारे कंट्रोल से बाहर है। लेकिन आज के इस दिन की और इस नए टेम की, दिस द फाइनल टेम ना,
5: यस
7: फाइनल टेम की बहुत सारी शुभकामनाएं। देयर विल बी अ लॉट ऑफ एक्सटर्नल एग्जाम्स हैपनिंग ड्यूरिंग दिस टेम, तो इस के लिए शुभकामनाएं हैं हमारी ओर से आपके लिए।
5: और ऑफ कोर्स आप सभी को वेरी हैप्पी नवरात्रि एज वेल। नवरात्रि का पर्व जो है इसकी शुरुआत संडे से हुई है, सो आज इनटू मंडे, हैप्पी हैप्पी नवरात्रि एक बार फिर।

0: Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manuka. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manuka.
2: Hey, ChatGPT. दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
3: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
2: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
3: इंटरेस्टिंग। और कुछ?
2: बस इतना ही।
3: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
0: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक Finance and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry. And Fortune, bring home the fortune.
4: Coffee? The usual?
5: How about the unusual?
6: Can't wait for coffee? Then don't! Turn into Wild Bean Cafe at BP and try our new barista-made hojicha latte. Something a bit different at BP.
7: The enrolment deadline's coming soon, pup. We better remind people before voting starts.
8: Enrolled yet?
7: How about you? Are you enrolled?
9: Last chance to enroll is midnight 25 October. Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
10: Fly direct from Auckland to Adelaide with Qantas from October 30. Soak up summer in the Barossa, explore the boutique city of Adelaide, shuck oysters on Kangaroo Island, and discover why South Australia is the ultimate food and wine getaway. Just next door. Fly with Qantas and enjoy meals, drinks, in-flight entertainment, Wi-Fi, and 30 kilos of checked baggage included. Book now at Qantas.com or with your preferred travel agent. Schedule subject to change. T's and C's apply.
11: Huh? Free gold coins on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
12: Yes, Bebo.
11: Catch kya hai?
12: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free gold coins. Saath hi, selected jewelry par diamond value aur making charges mein up to 40% off ka fayda uthao.
11: I still can't believe it. No catch.
12: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar Gold and Diamonds. Botany Town Center, East Auckland.
13: BNC Supply.
14: The rain falls softly across the estate. He waits for you beneath the old oak tree. He's hoping that this time you'll take his hand. Despite the scandal and that unfortunate incident with the peacock, you approach. He smiles, takes a breath and says...
15: The next station is Karangahape.
16: Read, scroll, draw, knit, relax. Hop on for some me time on AT, buses, trains and ferries.
0: The beat of Bollywood.
17: World's best, hamari koi branch nahi hai.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manuka. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manuka.
18: Global headlines.
19: आज सुबह के मुख्य समाचारों में यमन के हौती मिलिटेंट्स द्वारा रियाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किए गए मिसाइल अटैक में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है और 300 से ज्यादा घायल हुए हैं। एक हफ्ते में हुए तीसरे हमले के बाद किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कल तक के लिए बंद किया गया, जिससे 600 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुए हैं। इस डेडली अटैक के बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यमन में हौतीस के खिलाफ सऊदी अरेबिया के मिलिट्री स्ट्राइक्स में शामिल होने पर विचार करने की बात कही है। सीईसी ज्ञानेश कुमार के रेजिग्नेशन की मांग को लेकर दिल्ली पुलिस द्वारा रिलीज किए जाने के बाद कांग्रेस जनता पार्टी के नेताओं ने इलेक्टोरल फ्रॉड के खिलाफ अपना प्रोटेस्ट देश भर में बढ़ाने का ऐलान किया है। रंगा रनका दास और दीपके को मुंबई से दिल्ली पहुंचते ही फ्लाइट के अंदर से प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए अरेस्ट कर लिया गया था। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने शांति बनाए रखने के लिए या शांति बनाए रखने की शर्त पर उन्हें रिहा किया। रिहा होने के बाद सीजेपी लीडर्स ने साफ किया कि उन्होंने किसी प्रोटेस्ट ना करने वाले बॉन्ड पर साइन नहीं किया है और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक ये आंदोलन जारी रहेगा। फिजी में रकिराकी, लंबासा, नांदी और तावुआ में दो दिनों के अंदर 5 अलग अलग आग की घटनाओं में 8 रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर्स तबाह हो गए हैं, जिससे कम से कम 5 परिवार वाले बेघर हुए हैं। नेशनल फायर अथॉरिटी के मुताबिक मकान पूरी तरह जलकर खाक हो गए, जबकि 5 में से 3 प्रॉपर्टीज हादसे के वक्त खाली थे। एनएफआई के सीईओ पुमाउ सोवाने ने इंसिडेंट पर चिंता जताते हुए लोगों से इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स, अनअटेंडेड कुकिंग और फायर हजार्ड्स से बचने की मांग की है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 मैच जो है ये आज सुबह खेला गया। इंडिया ने अपने इनिंग्स में 223 रन्स बनाए, जवाब में वेस्टइंडीज 7 खिलाड़ी खोकर 209 रन्स बनाने में ही कामयाब हुआ, जिसकी बदौलत इंडिया की जीत इस मैच में 14 रन से हुई। इंडिया अब इस सीरीज को 2-1 से लीड करने लगा है। फिजी में FMF IDC कुम्बासो का टीम ने कल अपने नाम किया। फाइनल में मबा की जीत नावो के खिलाफ 2-0 से हुई। इस जीत के बाद इस साल के सभी सोकर टाइटल्स मबा ने अपने नाम कर लिए हैं। प्रीमियर डिवीजन फाइनल में किरिम्बास नेशनल टीम की जीत हुई, जबकि सीनियर डिवीजन टाइटल को ड्रिकेटी ने अपने नाम किया है। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
8: मैं लाऊं अपना A game.
13: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: तो आज आपके लिए लेकर आ रहे थे हमारा पहला चार्ट बस्टर, वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग ट्रैक आई वुड से. और फिल्म का नाम जो है आपके लिए बेबी जॉन याद दिला दे. 2024 में ये फिल्म आई थी डी, और साथ में दिलजीत दोसांझ की आवाज़ों में इस गाने को आज हमने आपके लिए शामिल किया. 28 मिनट्स पास 6 फोर नाउ, और बॉलीवुड के बारे में भी कुछ चर्चा कर लेते हैं. आज तो 12th ऑफ अक्टूबर है, लेकिन कल यानी कि 11th ऑफ अक्टूबर को अमिताभ बच्चन ने इन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, और इनके जन्मदिन के खास मौके पर बहुत से लोगों ने ऑफकोर्स इनको बहुत से विशेज जो है ये भी दिए. और इन्होंने इनफैक्ट लाइक एवरी संडेज को जब ये अवेलेबल होते हैं जलसा के बाहर, अपने घर के बाहर अपने फैंस के साथ एक मोमेंट जो है ये भी शेयर किया. बट विद ऑल दीज हैपनिंग, अभिषेक बच्चन का एक इंटरव्यू जो है ये बहुत सालों पहले लिया गया था, वो दरअसल सामने आया है, जहाँ पर ही हैज़ एक्चुअली स्पोकन अबाउट द फैक्ट कि बीइंग इन द स्पॉटलाइट कभी कभी कितना डिफिकल्ट हो जाता है. एंड ही हैज़ आल्सो मेंशन कि ऑफ़ कोर्स फॉर हिज फादर आल्सो अमिताभ बच्चन, वो है अमिताभ बच्चन, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, ही इज़ द मेगा स्टार ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री. लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि लोगों को ये बात भी याद रहे कि वो बहुत से फिल्मों के हीरो तो रहेंगे ही, लेकिन एट द एंड ही इज़ आल्सो अ ह्यूमन बीइंग जिनकी एक फैमिली है, और उनके फैमिली के और उनके खुद के कुछ इमोशंस हैं. ही इज़ अ फादर, ही इज़ अ हस्बैंड, ही इज़ अ ग्रैंडफादर. तो कभी कभी लोग जो है वो चीज़ शायद भूल जाते हैं ना स्टार्स को लेकर.
1: हाँ, हमेशा अभी यू कह सकते हैं स्टार्स जो हैं हमेशा से हैव बीन अंडर द माइक्रोस्कोप, स्क्रूटनी जो है उनका कुछ ज़्यादा ही होता रहता है. बट अभी के समय पर देखें तो इट्स जस्ट नॉट लिमिटेड टू स्टार्स, लोग किसी को भी नहीं छोड़ते.
0: यप, यू इफ यू आर इन द पब्लिक आए तो कहीं ना कहीं आप एक डिस्कशन का हिस्सा वैसे ही बन जाते हैं ना. दूसरी ओर रामायण के मेकर्स जो है इन्होंने अनाउंस किया है कि वर्ल्ड वाइड वो पार्ट वन रिलीज करने वाले ऑन द 5th ऑफ नवंबर, और इसके लिए एक नया पोस्टर जो है ये इन्होंने रिलीज किया है, इन विच वेरी क्लियरली यू कैन सी यश प्लेइंग रावण, और ऑफकोर्स इज साई पल्लवी प्लेइंग माता सीता, रवि दुबे जो है लक्ष्मण के किरदार में दिखेंगे, और ऑफकोर्स रणबीर कपूर श्री राम के रूप में जो है ये दिखने वाले इस पोस्टर में. तो 5th ऑफ नवंबर जो रामायण का पार्ट वन है ये रिलीज होने वाला है, वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट्स फ्रॉम बॉलीवुड दिस ईयर वी कैन से.
1: बॉलीवुड की और भी खबरें जो हैं ये हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे और हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. 6:30 बज रहे हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो. आज कुछ और खास होने जा रहा है, क्या होगा जानने के लिए हमारे साथ रहें.
2: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
3: डोंट माइंड, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
4: Accurate traffic.
5: Your new home awaits in Strathmill, Ottawa.
6: Mostly cloudy today, got some showers as well, a high of 20 degrees. Coming into the city at the moment, Northern Motorway, 18 minutes Constellation Drive to town, just starting to build at Silverdale and Albany. Northwestern, 20 minutes in from Massey, a bit of traffic at Tiaratu around Point Chef Grey Lynn. Southern 25, Mataco to town, we're building south of Mataco, slow Papakura through to Manurewa. Fine on the southwestern.
5: Strathmill, discover your new home in beautiful Ottawa. Visit strathmill.co.nz.
7: Roosevelt, 2026. महीना बहुत काम कर लिया है, अब तो ब्रेक बनता है.
8: बिल्कुल, तो लेते हैं एक लग्जरियस हॉलीडे ब्रेक, बाली और बैंकॉक.
7: और आप भी चलिए सन टूर्स के साथ ईस्टर 2027 में.
8: बाली 6 दिन और बैंकॉक 5 दिन, कंप्लीट लग्जरियस हॉलीडे पैकेज. बुक कीजिए टिल दिवाली और पाइए फ्री 2 nights 3 days सिडनी टू सिडनी क्रूज पैकेज.
7: 2027 ईस्टर को बनाइए एक्स्ट्रा स्पेशल, बाली बैंकॉक और फ्री क्रूज.
8: बुक नाउ विद सन टूर्स.
7: कॉल करें 0800 478686.
9: Now when you're in the loop with ANZ and take public transport, money loops back. Get 50% cash back on Wednesdays and weekends in October when you tag on and off AT public transport with a personal ANZ Visa card. Eligibility terms and conditions, fees and exclusions apply.
10: Coffee? The usual?
11: How about the unusual?
12: Can't wait for coffee? Then don't! Turn into Wild Bean Cafe at BP and try our new barista-made hojicha latte. Something a bit different at BP.
13: Big Bazaar mein biggest range of puja ghar mil rahe hain. Pure marble murtis, copper murtis, gunmetal murtis, devi devtaon ke vastra. Sabhi tarah ke haar and extensive range of puja items. Big range of console tables, mirrors, curtains, sofa covers. Bina and Lahore brand of musical instruments bhi available hain. Big Bazaar 302 Great South Road, Papatoetoe. Your one-stop shopping destination this Navratri.
14: Brothers and sisters, today we free ourselves from waiting. No more lines!
4: sorry, is this a cult?
14: What? No, it's the Coffee Grab app.
4: Then why were you all wearing these robes?
14: Branding got away from us.
15: Skip the queue, order ahead from your favourite cafe on the Coffee Grab app and be in to win $500 every Friday. Every coffee gives you another chance to win. T's and C's apply. Download Coffee Grab.

0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manuka. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manuka.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja aapke liye lekar aa rahe hain. Monday, 12th of October ki ye subah khas aapke naam hum kar rahe hain on the show. Good morning ke bhi messages aapne bheje hain, to uske liye bahut bahut shukriya. Aaj subah subah lagta hai log thoda busy hain aur आप शायद अपना मॉर्निंग मैसेज आज नहीं भेज पाए. नॉर्मली बहुत से लोग अपने सुबह सुबह मॉर्निंग मैसेज भेजते हैं ना, और आज तो स्कूली छुट्टियों के बाद पहला दिन है, वापसी कर रहे बच्चे, सो वी टोटली अंडरस्टैंड. काफ़ी बिजी होंगे आप सुबह सुबह. आज हमारे पास बॉबी मान जी का मैसेज आया है और इन्होंने कहा है, पूजा और विजय आपको सुप्रभात. नवरात्रि के दूसरे दिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं. जय माता दी, हर हर महादेव.
3: बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए, आपके साथ के लिए. और उसके अलावा आज सुबह सुबह हमें याद किया है इस प्रोग्राम में
2: मिस्टर माटा माटा ने.
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए. 4 बजे ही इनका मैसेज जो है किया आ गया था. आपको भी ये दिन, ये सुबह बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो.
2: मुझे लगता है कि जैसे ये दोनों, इनफेक्ट बॉबी मान जी का भी, जैसे ये आई थिंक अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं तो वैसे ही सबसे पहले ये मैसेज भेजते हैं हमें, और फिर प्रोग्राम जो है ये ज्वाइन करते हुए, यू नो दे गेट टू देयर डेली लाइफ फेस्टिन की जो भी काम वगैरह वो करते हैं. एंड ऑन दी अदर हैंड, बीच बीच में जब भी मौका मिले तो बीच बीच में मैसेज भी कर लेते हैं ना. बट राइट नाउ वी रियली एंड ट्रूली अप्रिशिएट आप सभी की साथ को, आप सभी की कंपनी को. इधर चलिए, आज से हम द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, जैसे कि हमने कहा, कुछ बहुत ही कमाल का, कुछ नई चीज़ें भी आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं, आपके फ़ायदे की चीज़ें आपके लिए हम लेकर आने वाले. तो इसके लिए आपको हमारे साथ ही बने रहना होगा. बट इफ़ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट वट इज़ इट, तो आपको सुनते रहना है, क्योंकि थोड़ी देर बाद हम रिवील ज़रूर करेंगे. लेकिन फिलहाल अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज आपके नाम हम कर रहे हैं.
3: इनाम ही इनाम इस दिवाली के मौके पर टोटल ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस जो है ये हम आपके लिए लेकर आए हैं, और इनमें से आपका हिस्सा है $1,000 का. 5 ऐसे लोग होंगे जिन्हें हज़ार डॉलर लागत के इनाम जो है ये मिलने वाले हैं, और आप उन 5 में से एक हो सकते हैं. प्रोवाइडेड जब भी अपॉर्चुनिटी मिले आप कंपटीशन में हिस्सा लें. फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून, फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून जो है इसमें बहुत सारे इनाम हैं, और आज सबसे पहले हम आपको जीतने का मौका दे रहे हैं $1,000 वर्थ ऑफ निवल ग्रोसरी वाउचर्स, निवल शॉपिंग वाउचर्स, ऑल थैंक्स टू लॉजिक फाइनेंस और गुरु कंट्रोलर, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल कर सकते हैं आप 0800 लॉजिक जी पर. तो उनकी ओर से आज सबसे पहले आपको हम निवल के शॉपिंग वाउचर्स जीतने के मौके दे रहे हैं. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो तड़के सुबह 6 बजे के बाद ही निकल जाते हैं, फिर बाद में शायद उतना टाइम ना मिले, तो हमने सोचा चलो आज आपको अर्ली मॉर्निंग मौका देते हैं. तो इसके लिए आपको करना क्या होगा हम आपको बताएंगे. लेकिन याद रखिए, टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई. हम .rover.nz आप विजिट करें, और जब भी 5599 पर आप टेक्स्ट करेंगे तो स्टैंडर्ड कैरियर एच डू अप्लाई.
2: तो इधर चलिए, आपको सबसे पहला मौका जो आज हम सुबह सुबह देना चाहते हैं, एक बहुत ही कमाल का मौका है, और वो है लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु कंडोला, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. जिनसे जानकारियों के लिए या इनकी सेवाओं से फायदा उठाने के लिए आप 0800 लॉजिक जी पर कॉल कर सकते हैं. तो इनकी ओर से, लॉजिक फाइनेंस की ओर से आपके पास मौका है $1,000 वर्थ ऑफ न्यू वर्ल्ड के वाउचर्स जो ये जीतने के लिए. अब न्यू वर्ल्ड के वाउचर्स आपके हाथ लगेंगे तो शॉपिंग आपको करनी है, ग्रोसरी शॉपिंग करनी है दिवाली के लिए, किसी को गिफ्ट वगैरह देना है, या फिर इनफैक्ट आपको मिठाइयों के लिए शॉपिंग करनी है, तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती है जो आप जाकर ज़रूर ले सकते हैं. लेकिन $1,000 का शॉपिंग वाउचर इज़ अ बिग डील. इमेजिन आप कितने हफ्तों के लिए शॉपिंग कर सकते हैं, और अगर $1,000 की शॉपिंग की, आपका फैमिली ऑफ 4 है, तो यू नो बेसिकली फॉर अ मंथ और 2 मंथ्स तक तो आराम से आप निकाल सकते हैं विदाउट डूइंग एनी मोर शॉपिंग. सो $1,000 का न्यू वर्ल्ड शॉपिंग वाउचर ऑल थैंक्स टू लॉजिक फाइनेंस आपका हो सकता है, जिसके लिए आप अपनी एंट्रीज इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स हमारे पास सेंड कीजिए. और एंट्री सेंड करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है.
3: सबसे पहले आपको लिखना है लॉजिक, लॉजिक लिखे, उसके बाद अपना नाम, और न्यूजीलैंड में कहां से आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं,
2: तो लोकेशन बेसिकली बताना ना.
3: यस, बस 3 चीजें ही आपको लिखनी है.
2: LOGIC, दैट्स लॉजिक. लॉजिक लिखे, स्पेस दीजिए, फिर अपना नाम लिखिए, फिर स्पेस दीजिए, और अपना जो लोकेशन है ये आप हमारे पास लिख भेजिए अपने नाम के साथ. 5599 पर इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स टू गो इनटू द ड्रॉ टू विन $1,000 worth of New World vouchers, all thanks to Logic Finance. Remember, हमारा दिवाली फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून जो प्रमोशन है, इस पर टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए आप विजिट कर सकते हैं hum.over.nz. और ये बात भी याद रखें कि जब भी आप मैसेज करते हैं 5599 पर, तो स्टैंडर्ड कैरियर रेट्स डू अप्लाई.
3: न्यूजीलैंड में कहीं पर भी आप रहते हैं, कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने का मौका है आपके पास. लॉजिक लिखें, उसके बाद अपना नाम और कहाँ से आप सुन रहे हैं ये लिखकर आपको भेजना है. अब्दुल, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच. सुबह सुबह आपने भी अपना गुड मॉर्निंग मैसेज जो है ये हमारे पास भेजा है. इसके अलावा गुड मॉर्निंग किसी ने भेजा है, 2909.
2: जी, नाम नहीं है इनका, बट इनका जो मैसेज है ये ज़रूर आया है. सो थैंक यू सो मच आपके भी गुड मॉर्निंग मैसेज के लिए. पर फिलहाल याद रहे, अपनी एंट्री ज़रूर सेंड कीजिए फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून में. लॉजिक फाइनेंस की ओर से $1,000 वर्थ ऑफ शॉपिंग वाउचर्स जीतने के लिए, न्यू वर्ल्ड के शॉपिंग वाउचर्स $1,000 जो ये जीतने के लिए, जिसके लिए लॉजिक लिखकर, अपना नाम लिखकर, अपना लोकेशन लिखकर 5599 पर आप भेजिए. और आपके पास अब फाइनल 3.5 मिनट्स बाकी है.
0: Lock your property's true sale value with NZPMI. Your

0: विशाल मिश्रा की आवाज में बहुत ही खूबसूरत ये गाना सुबह सुबह आपके नाम हम शामिल कर रहे थे। योद्धा फिल्म आई थी 2024 में, उसी का ये ट्रैक रहा। और इधर चलिए, अब वी आर रैपिंग अप आवर वेरी फर्स्ट कंपटीशन दिवाली के तहत, या दिवाली के खास मौके पर फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून के तहत, जहां पर हमने कहा था ना लॉजिक फाइनेंस की ओर से आपके पास मौका है टू विन $1,000 वर्थ ऑफ शॉपिंग वाउचर।
1: या एग्जैक्टली, एंड सबसे पहले तो वेरी गुड मॉर्निंग विशाल शर्मा क्राइस्टचर्च से आपका मैसेज आया। आई थिंक ऑकलैंड से बाहर से अभी तक तो मुझे एक ही मैसेज नजर आ रहा है, एंड दैट्स विशाल इन क्राइस्टचर्च। थैंक यू सो मच विशाल आपके मैसेज के लिए। और इसके अलावा गुड मॉर्निंग का एक और मैसेज जो है ये किसी ने हमारे पास भेजा था, वो भी गुम गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मोना की ओर से ये मैसेज जो है ये भी आया था। तो आपने लॉजिक लिखा, अपना नाम लिखा और न्यूजीलैंड में कहां से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच।
0: याद रहे कि वी आर वेरी स्ट्रिक्ट विद आवर टाइम लिमिट जब हम आपको ये प्रमोशन में भाग लेने का मौका देते हैं। सो अगर आप हमें फिलहाल सुन रहे हैं, इफ यू आर प्लानिंग टू सेंड इन योर मैसेजेस, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी हमारे साथ आज फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून में ऑन द ब्रेकफास्ट शो $1,000 कैश जीतने की। और $1,000 कैश अगर आपको जीतना है, ये मौका भी हम आपको जरूर देंगे बाद में चलकर प्रोग्राम में, लेकिन कब और कैसे आप इसमें पार्ट ले सकते हैं जानने के लिए आपको सुनते रहना होगा। गिवन टाइम के अंदर अंदर अपनी एंट्री आपको सेंड करनी होगी। फिलहाल 15 मिनट बाकी है समय हमारे स्टूडियोज में सुबह 7 बजने में, और ठीक 7 पर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट तो आपके लिए रहेगा ही, बट थोड़ी देर बाद लेकर आएंगे कुछ डिटेल्स आज 12th of October के बारे में, और साथ ही साथ आपको कुछ और भी बेहतरीन मौके हम देते रहेंगे।
2: Breakfast show with VJ and Pooja.
3: Chup ho jao, papi ho. Chup ho jao.
4: March 2027. Ek kahani jo badlegi aapki zindagi.
5: Rusbe, tickets book ho gaye.
6: To phir der kis baat ki? Bali bula raha hai.
5: Sunset, beach club aur thoda sa sukoon bhi.
6: Lekin kahani yahi khatam nahi hoti.
7: Sawadee ka.
6: बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
5: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
8: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
9: हेलो एवरीबॉडी।
4: दो शहर एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
10: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
4: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्वे, ओनली ऑन हम। Accurate traffic.
11: Bus time is me time.
12: Cloudy with showers at times, a high of 20 today. Into the city, Northern Motorway, 20 minutes. Constellation Drive to town, 40 from Silverdale. Slow at Silverdale, Greville to Milford and at Esmond. Northwestern, 26 minutes in from Massey. Heavy at Te Aratu, slow point chef to Grey Lynn, but heavy at St. Luke's. Southern, 30 minutes in from Manukau. Hour from Drury, heavy at Papakura. Slow patches on and off through to Ellerslie.
11: Knit, read, scroll, relax. Travel time is me time on AT buses, trains and ferries.
13: Dibba khul gaya.
14: भरत भाई, टिफिन खुल गयो छे।
15: संजना का डिब्बा खुल गया।
16: जब कशिश स्पाइसेस से खाना बनेगा तो सारे ऑफिस की नजर में रहेगा, फिर यही तो होगा,
15: डिब्बा खुल गया।
16: हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, कशिश मसाले, अच्छे वाले। बाय एनी कशिश प्रोडक्ट एंड बी इन द ड्रॉ टू विन अप टू $10,000 वर्थ ऑफ कैश प्राइजेस, गोल्ड कॉइंस एंड गिफ्ट वाउचर्स। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: When India comes to town, Aotearoa feels different. Tickets are on sale now at nzc.nz. Be there, because this isn't cricket. This is Black Caps versus India.
17: Octopus factory farms in New Zealand? Sounds unthinkable, but your tax dollars have been funding the research. Sign the petition and keep octopuses wild. Go to banoctopusfarming.co.nz.
18: Indulge in the sumptuous flavors of South Asia at Sudhima Auckland Airport's popular food festival. Their specialist chefs are preparing an exquisite buffet from India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and more. Gather your family and friends for a memorable evening of food and fun this Labor Weekend, 24th and 25th October. Limited tickets available at just $89 per person with a welcome drink included. Kids 6 to 12, half price. Under 5s, free. Book now at sudhimahotels.com/foodfestival.
19: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
20: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels everyone, big or small. Bring home the fortune at Harrington Living Manukau. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manukau.
21: Throwback.
7: 0800 Rachna. इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: अभी 12 मिनट रह गए हैं 7 बजने में ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. आज 12th ऑफ अक्टूबर, टुडे इज वर्ल्ड एथराइटिस डे. ये एक ऐसी चीज़ जो बहुत सारे लोगों पर असर करता है और कई लोग इससे परेशान रहते हैं, तो आज इसको लेकर अवेयरनेस क्रिएट करने का दिन है, इसके बारे में जानने समझने का दिन है. इंटरनेशनल मोमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन स्क्रीम डे, ये भी आज मार्क किया जा रहे हैं. बहुत सारे लोग आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिनमें शामिल हैं अक्षरा हसन, साथ में कुणाल रॉय कपूर, हुसैन खोजरवाला. ये आजकल नहीं आते ना,
0: बहुत कम दिखते हैं आई थिंक.
1: ओके, और साथ में इसके अलावा और भी कई लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं या आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था, जिनमें शामिल हैं निदा फाजली. निदा फाजली जानती हैं आप?
0: नहीं.
1: आपने वो गजल सुनी है, पिया नहीं जब गांव में?
0: हाँ, ये तो बहुत फेमस है. इन्होंने गाया है?
1: नहीं नहीं, तो गाया तो चंदन दास जी ने, बट इन्होंने लिखा है.
0: अच्छा, हाँ. ओके.
1: बहुत ही कमाल के पोएट, कवि, जो कुछ भी आप कहना चाहें, लिरिसिस्ट ये हैं. तो ये इनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था. आपका भी कोई खास है जो आज अपना बर्थडे या शादी की सालगिरह मना रहे हैं, मेक श्योर आप समय से पहले अपने मैसेजेस जो हैं ये हमें ज़रूर भेज दें.
0: बिल्कुल, 5599 हमारा टेक्स्ट प्लेटफॉर्म नंबर है जिस पर आप अपने मैसेजेस हमें टेक्स्ट कर सकते हैं. अभी थोड़ी देर पहले हमने हमारा जो फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून का कॉम्पिटिशन ये शुरू किया, जहाँ पर आपको मौका भी दिया पार्ट लेने का. तो विद इन टाइम लिमिट, याद रहे, आपको अपने मैसेजेस हमें सेंड करने हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपको हम भरपूर देंगे. और फिर ये भी हमने बताया कि कुछ बहुत ही स्पेशल आपके लिए आज से हम शुरू करने जा रहे हैं, एंड इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, जिसका आप भरपूर मज़ा जो है कि हमारे साथ डेफिनेटली उठा सकते हैं. तो इफ़ यू वांट टू स्टे विद अस फॉर दिस, जिसके लिए बस आपको एक छोटी सी चीज़ करनी है, सुनते ही रहना है. ये मौके आपको हम देते रहेंगे ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. राइट नाउ आज का हमारा पहला थ्रोबैक आपके नाम करते हैं, जहाँ कहीं भी आप हैं साथ हमारा दे रहे हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो. और ओनली ऑन हम, एज वी ऑलवेज से, प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स. इस बार आपके लिए बड़ा ही खूबसूरत कमाल का गाना जो है ये हम लेकर आ रहे हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स ऑफ द ईयर 2006 जब ये गाना रिलीज हुआ. शफकत अमानत अली की आवाज़ जो है ये लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की, शंकर महादेवन के कॉम्पोजिशन पर. इन्जॉय कीजिएगा कभी अलविदा कहना, उसी फिल्म का ये गाना.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: So आज के मौसम के लिए कहा गया है ज्यादातर बारिश होगी और बादल जो है ये छाए रहेंगे. शाम के समय उम्मीद है कि बारिश जो है ये थम जाएगी. आज का सनसेट होगा 7:35 PM पर. टेम्परेचर फिलहाल अगर देखा जाए तो ओवरनाइट 14 डिग्रीज रहेगा. हाई ऑफ 20 एक्सपेक्टेड है. सुपर सिटी ऑकलैंड में करंटली 16.3 डिग्रीज.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा,
1: पूरी की पूरी गैंग के लोगों कान के साथ सब कुछ खोल के सुन लो।
2: दो मिनट हो रहे हैं 7:00 मेगा फाइनेंस की ओर से मॉर्निंग मैडनेस में आपका स्वागत हम कर रहे हैं। इस घंटे भी तमाम चीज़ों के बारे में बातें होंगी, थोड़ी ही देर में बताएंगे आपको आज का दिन कैसा आपका गुजरने वाला है, न्यूज़ हेडलाइंस वगैरह भी आपकी खातिर होंगे। आज जबकि स्कूली बच्चे जो है वापस स्कूल जा रहे हैं और मौसम उतना अच्छा नहीं है, तो रास्ते पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आज आप एक्सपीरियंस करेंगे?
3: एब्सोल्युटली करेंगे बिल्कुल करेंगे, क्योंकि बारिश होगी तो ऑफकोर्स आपको अपना नॉर्मल स्पीड लिमिट जो है उससे कम ही ड्राइव करना पड़ेगा, विजिबिलिटी कम होगी, स्लिपरी होगा रास्ता, सो आपको सारे के सारे प्रिकॉशंस जो है ये लेने पड़ेंगे। और ऑन दी अदर हैंड देयर बी लाइक अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, क्योंकि नॉर्मली इतने टाइम पर ज़्यादातर लोग जो है ये स्कूली छुट्टियों के दौरान स्कूल्स नहीं जाते हैं, तो ट्रैफिक नहीं होता ना
2: स्कूली छुट्टियों के दौरान, स्कूल्स नहीं जाते
3: हैं तो इसीलिए ट्रैफिक नहीं होता, दैट्स व्हाई।
2: तो ख्याल रखें अपने जो टाइम को अच्छी तरह से आप प्लान करें। वैसे किसी ने पावर बॉल नहीं जीता है,
3: क्या हुआ फिर उसका?
2: अब बढ़कर $8 million हो गया है। फर्स्ट डिवीजन जो है ये भी किसी ने नहीं जीता।
3: ओके,
2: कैंटरबरी के एक प्लेयर हैं, दे स्ट्रक इट लकी और उन्होंने जो स्ट्राइक फोर है इसमें $400,000 जीते हैं। 26 प्लेयर्स $9,793 इन्होंने जीते हैं लोटो सेकंड डिवीजन में। इनमें से दो प्लेयर्स जो हैं दे आल्सो मैच्ड पावरबॉल सेकंड डिवीजन, जिनसे उनका जो विन है बढ़कर $18,209 हो गया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स। अब $8 million के लिए आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।
3: There you go, आपकी किस्मत आपके हाथ में है, पर याद रहे $8 million ना सही, $5,000 वो तो प्राइजेस तो हम दे ही रहे हैं दिवाली के दौरान, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। और अलग अलग टाइम पर अलग अलग अपॉर्चुनिटी जो है ये भी आपको हम देंगे। हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि इस बार हमारे साथ आपके पास मौका है $1,000 कैश जीतने का फॉर्च्यून की ओर से, और इसके लिए कब और कैसे आपको पार्ट लेना है बस सुनते रहिएगा, आपको हम ज़रूर बताएंगे। फिलहाल 5 मिनट हो रहे हैं 7:00, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, अगर आप हमारे साथ अभी भी शामिल हुए तो।
4: क्वीन विक्टोरिया की तरह कैसे दिख सकती हैं आप? आप तो वैसे ही लगेंगी, मलिका तिल फरेब।

0: 4234.
1: Rashi Vibes.
2: सबसे पहले मेष यानी एरीज आज सेल्फ कॉन्फिडेंस से अपना सारा काम आप पूरा करेंगे। बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटीज को ट्राई आउट करने का दिन है। फाइनेंशियली दिन काफी मजबूत होगा और हेल्थ भी आपका बढ़िया रहेगा।
3: और इसके बाद अगर देखा जाए तो आज वृष ने टोरस आपके लिए बताया गया है कि आज का आपका दिन जो है ये नौकरी वाइज अगर देखा जाए तो आपका पेशेंस काफ़ी टेस्ट होगा। यू बीन आस्क्ड टू मेंटेन योर पेशेंस, काम पर ध्यान दें और ऐसे में अच्छे रिजल्ट आप हासिल कर सकते हैं। परिवार में किसी तरह का विवाद होगा जिसकी वजह से आज कुछ दूरियाँ बनी रहेंगी आपस में लोगों के, लेकिन समय के साथ इट विल बी ओके। यू जस्ट नीड टू अगेन बी पेशेंट।
2: मिथुन यानी जेमिनी, आज पार्टनरशिप में जो काम करेंगे उनसे फायदा आपको हो सकता है। एनर्जेटिक फील करेंगे और काफी एनर्जी के साथ आज अपना काम आप करने वाले हैं। पति पत्नी के बीच प्यार और बढ़ेगा।
3: कर्कने कैंसर आपके लिए कहा गया है कि बिजनेस के मामले में समझदारी से काम लेना बहुत जरूरी है। टेस्टिंग टाइम्स चल रहे हैं आपके बिजनेस के फिलहाल एंड आपका जो अंडरस्टैंडिंग है इज द वन दैट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स। परिवार में माहौल जो है बहुत हैप्पी रहेगा। रुका हुआ पैसा भी आपको वापस मिल सकता है जिससे फाइनेंशियल सिचुएशन आपका जो है ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी रहेगा।
2: धन यानी सेजिटेरियस, आज पैसों का पूरा फायदा होने के चांसेस आपको हैं और इसके अलावा कुछ नए प्लान्स जो हैं बिजनेस में अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो इससे फायदा हो सकता है। तरक्की भी आज अपने जीवन में आप करेंगे।
3: और उसके बाद आज अगर देखा जाए तो कन्या यानी वर्गो आपके लिए कहा गया है कि सावधानी से कदम रखना आपके लिए आज बहुत जरूरी है। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपका प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, सावधान रहे ऐसा आपके लिए कहा जा रहा है। बिजनेस के मामले में कुछ डिसीजंस आप ले रहे हैं तो अच्छा होगा अगर कोई जानकार व्यक्ति हो या कोई एक्सपीरियंस्ड जो कि इस पर्टिकुलर बिजनेस में है उनसे थोड़ा सलाह मशवरा आप कर ही कोई फैसला जो है कि ले।
2: तुले यानी लिब्रा, आज ऑफिस में आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, पारिवारिक जीवन खुशहाल होगा और हेल्थ बढ़िया रहेगा।
3: और उसके बाद अगर देखा जाए तो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो आपके लिए कहा गया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आज बढ़ सकती हैं जिसकी वजह से थकावट बहुत ज़्यादा रहेगी। और पैसों के मामले में कहा गया है कि कोई प्रॉब्लम थी शायद आपको फाइनेंशियली, तो इसका हल आज आपको मिलेगा एंड यू'ड बी हैप्पी विद द रिजल्ट यू गेट टुडे।
2: धन यानी सेजिटेरियस, क्रिएटिव कामों में मन लगेगा, फायदे के मौके आपको मिलेंगे, बच्चों की ओर से कोई अच्छी खबर भी आज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
3: और उसके बाद मकर यानी कैप्रिकॉर्न आपके लिए कहा गया है काम का दबाव महसूस कर सकते हैं। बिजनेस के लेन देन के मामले में थोड़ा केयरफुल हो जाएं आप। अगर कोई भी तरह का डील कर रहे हैं सोच समझ कर अपना पूरा रिसर्च कर ही अपने इन्वॉल्वमेंट पर ध्यान दीजिए। फालतू खर्च जो है ये अचानक से होंगे इसीलिए फाइनेंशियल सिचुएशन आपका थोड़ा बिगड़ सकता है। ट्राई एंड नॉट डू योर फालतू खर्च टुडे।
2: कुंभ यानी एक्वेरियस, आज ऑफिस में जो डिसीजंस आप लेंगे उनको काफ़ी प्रेस किया जाएगा। बिजनेस में मुनाफा बढ़ सकता है, दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे और इनकम के नए सोर्सेस आज आपके लिए रेडी हो सकते हैं।
3: और उसके बाद फाइनली पाइसिस आपके लिए बताया जा रहा है कि आज का जो ये दिन है आपके लिए ये काफ़ी स्पेशियस साबित होगा क्योंकि ऐसे कुछ बहुत ही ऑस्पिशियस चीज़ें थी, कोई बहुत ही रिलीजियस एक्टिविटी है जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट आज होगा एंड यू विल फील योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। बेसिकली आप इसे एक्सपीरियंस करेंगे जिसकी वजह से आपको बहुत शांति जो है कि महसूस होगी। फालतू खर्च पर कंट्रोल बनाकर रखें, थकावट भी आज महसूस हो सकती है इसीलिए तबीयत का पूरा ख्याल रखें, ये सलाह भी आज आपको दी जा रही है। सो दीज वर योर राशि वाइब्स फॉर टुडे। उम्मीद करते हैं दिन आपका सभी का बहुत ही अच्छा और कमाल का गुजरे।
1: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा,
0: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस। फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून एट हैरिंगटन लिविंग मोनाको। बिग ऑन स्टाइल, ग्रेट ऑन प्राइस, परफेक्ट फॉर योर होम, हैरिंगटन लिविंग मोनाको।
4: ड्राइविंग योर होम,
0: Drive Show with Sandy and Rusby.
5: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो।
6: ये गलत बोल दिया यार।
5: और पहनता भी नहीं उसको।
6: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं, अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ।
5: इंटरेस्ट
7: ब्रांड हो गया,
6: अभी ब्रांड हो गया ना
5: रुस्बे के बाल लगे उस।
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J2.
8: You know a restaurant's good when you can't get a table for 3 weeks. Just like it's a great sign if a specialist is booked till next month. And if a builder can't fit you in till the summer, you know it's probably worth the wait. So when we tell you that Diocesan School for Girls is generally booked 2 years ahead, that should tell you everything you need to know. So if you're thinking about what's next for your daughter, join us at our open day on Thursday, the 22nd of October from 9 till 11 a.m. Register at diocesan.school.nz.
9: Exclusive UK and Europe flights are on sale now at Flight Centre. Experience world class with Singapore Airlines, flying return to London from 2,625 per person. Book online or in store today. T's and C's apply. Flight Centre, your centre for travel.
10: Barbecue just got baconated at Wendy's. Meet the new Barbecue Baconator range. Go all in with the Barbecue Baconator or get cheesy with the Barbecue Cheesinator. Then top it off with a new Coffee Frosty Shade. Available in-store or on the app. Only at Wendy's.
11: Huh? Free gold coins on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
12: Yes, Bebo.
11: Catch kya hai?
12: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free gold coins. Saath hi selected jewelry par diamond value aur making charges mein up to 40% off ka fayda uthao.
11: I still can't believe it. No catch.
12: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar Gold and Diamonds. Botany Town Center, East Auckland.
13: PNC Supply.
14: Indulge in the sumptuous flavors of South Asia at Sudema Auckland Airport's popular food festival. Their specialist chefs are preparing an exquisite buffet from India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and more. Gather your family and friends for a memorable evening of food and fun this Labor Weekend, 24th and 25th October. Limited tickets available at just $89 per person with a welcome drink included. Kids 6 to 12, half price. Under 5s, free. Book now at sudemahotels.com/food festival.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
0: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Manuko. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manuko.
1: Celebrity Alarm.
3: Hit it. चलिए बारी है आज के सेलिब्रिटी अलार्म की. 20 मिनट हो रहे हैं, 7:00 आवाज़ सुनाएंगे आपको और आपको बस पहचानना है कि किसकी आवाज़ है. अगर आपने वन शॉट में पहचान लिया तो अपना जवाब आप हमारे पास भेज सकते हैं 5599 पर अपने नाम के साथ, सबसे पहले BF लिखकर. और अगर नहीं पहचाना तो फिर हम हेल्प करेंगे, आपको कुछ क्लूज देंगे. पर फिलहाल चलिए, बहुत सिंपल सी आवाज़ है तो ये आपको सुनाते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि आप में से कितने लोग जो है इस आवाज़ को पहचान पाते हैं. तो आज का हमारा जो आज के हमारे जो सेलिब्रिटी हैं ये इनकी आवाज जो आपको पहचाननी है, दिस वन. थोड़ा बीच में से कहीं ना कहीं से आपको ऑडियो सुना रहे हैं हम, सो अपोलॉजीज अबाउट दैट. या
15: और डैड से ऋतिक घर आया फोन लेने और तब वो मतलब ऋतिक नहीं था बट फिर भी लंबा चौड़ा गुड लुकिंग आदमी. तो मैं और रोहित खाना खा रहे थे, ऋतिक हेलो मॉन्सी एंड
3: तो बस आपको बताना है कि ये आवाज जो है किसकी थी. हमने आपको आवाज सुनाई, अब आप हमें बताइए क्या लगता है आपको किसकी आवाज थी ये.
2: वेरी सिंपल है.
3: हाँ, बहुत सिंपल है, जैसे हाँ,
2: आसान है आज तो. तो अब अगर आपने पहचान लिया है इन्हें तो अपना जवाब हमारे पास भेजें. BF अपना आंसर और अपना नाम, ये 5599 पर आपको हमारे पास टेक्स्ट करना है. लेट्स सी आप में से कितने लोग हैं जो इन्हें पहचान सकते हैं या पहचान लिया है जिन्होंने.
3: आई थिंक पहचान लिया होगा जितने लोगों ने सुना होगा उन्होंने पहचान तो लिया होगा, बट कितने लोग हमारे पास मैसेज करते हैं वो बात खैर अलग है. आपको BF लिखना है, फिर अपना आंसर अपना नाम और भेज देना है 5599 पर. आज के हमारे सेलिब्रिटी कौन है इन सेलिब्रिटी अलार्म फाइनल टाइम आपको ये आवाज सुना रहे हैं.
15: तो उन्होंने ऋतिक रोशन का फोन वो लेके आ गए घर तो ऋतिक फिर आई थिंक राकेश रोशन कॉल डैड फिर ऋतिक घर आया फोन लेने और तब वो मतलब ऋतिक नहीं था बट फिर भी लंबा चौड़ा गुड लुकिंग आदमी. तो मैं और रोहित खाना खा रहे थे, ऋतिक हेलो मॉन्सी.
3: तो बस ये आवाज पहचाने और अपना जवाब हमारे पास आप सेंड करें. आज के हमारे सेलिब्रिटी कौन है इन सेलिब्रिटी अलार्म.
1: Hollywood's most wanted.
16: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ.
17: मैं लाऊं अपना A game.
1: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: finance experience. Call 0800-634-234.
1: News headlines.
2: सुबह के मुख्य समाचारों में साउथ ऑकलैंड के ओटाहुहु में हाई स्ट्रीट स्थित एक घर में कल दोपहर आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। फायर एंड एमरजेंसी न्यूजीलैंड के 3 फायर ट्रक्स ने आग पर काबू पाया, लेकिन पुलिस के मुताबिक मौके पर बचाए गए व्यक्ति को मेडिकल हेल्प मिलने के बावजूद बचाया नहीं जा सका। न्यूजीलैंड फेस्ट ने दोबारा चुने जाने पर अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा को खत्म करके उसकी जगह शॉर्टेज लेड स्किल्ड वर्क वीजा लाने का वादा किया। नई पॉलिसी के तहत विदेशी वर्कर्स को एम्प्लॉयर अक्रेडिटेशन के बजाय स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन, रीजन और जेन्युइन स्किल शॉर्टेज के आधार पर एंट्री मिलेगी। पार्टी ने कहा कि देश में 171,000 लोग अनएम्प्लॉयड हैं, इसीलिए पहले लोकल न्यूजीलैंडर्स को काम और ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। न्यूजीलैंड फेस्ट के मुताबिक रूटीन रोल्स के लिए माइग्रेंट वर्कर्स बुलाने से पहले एम्प्लॉयर्स को न्यूजीलैंडर्स को हायर करने की सीरियस कोशिश साबित करनी होगी। ऑल ब्लैक्स ने एक बार फिर ब्रेडिस्लो कप को अपने नाम कर लिया। सप्ताहांत वलबीज के खिलाफ ऑल ब्लैक्स की जीत 50-19 से हुई। फिलहाल एनपीसी के क्वार्टर फाइनल्स सप्ताहांत खेले गए। नॉर्थलैंड की जीत टेस्मिन के खिलाफ 26-21 से हुई। तारानाकी ने नोथाबा को 50-31 से हराया। ओटागो की जीत होक्स बे के खिलाफ 50-14 से हुई, जबकि कैंटबरी ने वाइकाटो को 62-26 से हराया। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco. Hum. Accurate traffic.
5: Freedom Spring Sale.
6: A high of 20, cloudy today with some showers as well. Into the city, Southern Motorway, 45 minutes Monaco to town, an hour 10 from Drury. Slow joining at Drury, and we're slow from Papakura all the way in. Frequent heavy patches. Northern 35 in from Constellation, hour from Silverdale, heavy at Silverdale and heavy patches from Greville. Northwestern 38 minutes Massey to town, heavy on and off from Upper Harbour all the way in.
5: Save up to 50% off selected sofas and furniture, plus extra 10% off sofas ends today, only at Freedom.
7: Gold Coast is on sale now at Flight Centre. Book a 5-night fly and stay family holiday from $1,249 per person. Book in store today. Fees, T's and C's apply. Flight Centre, your centre for travel.
8: TradeDepot.co.nz.
9: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Huge side-by-side black stainless steel fridge freezers, just $699. Midea inverter heat pumps with Wi-Fi from just $699. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
8: TradeDepot.co.nz.
10: Looking to turn business payments into points? With the American Express Gold Rewards business card, you could earn 100,000 bonus points worth up to $750 in Amex travel. Offer ends 14th December 26, 1.5k min spend in first 3 months. New card members only. Membership rewards, T's and C's apply.
11: Glad I got my enrollment sorted the other day. See, mate, I told you it was easy.
12: Enrollment for voting? I still haven't done mine. The election isn't until November. I've got time, right?
11: No, not this year. You need to be enrolled by the 25th of October. You can't enroll and vote on the same day.
12: Really? What if I miss it?
11: Well, your vote won't count for this year's election.
12: Achcha, you've convinced me. I'll enroll tonight.
13: Last chance to enroll is midnight 25 October. Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
14: Congratulations!
15: It worked!
14: Charles, meet Charles too.
15: Hello, Charles.
14: Brilliant. You stand in the coffee queue. You spent 9 years perfecting human cloning so someone could queue for your coffee?
15: Correct. I'm downloading Coffee Grab.
14: Traitor.
16: Skip the queue. Order ahead from your favourite cafe on the Coffee Grab app and be in to win $500 every Friday. Every coffee gives you another chance to win. T's and C's apply. Download Coffee Grab.
17: The beat of Bollywood.
18: World's best. Hamari koi branch nahi hai.
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
3: Birthday
17: greetings.
0: Iska birthday bhai?
19: Mera bhi birthday hai, chalo line mein aa jao.
0: Happy birthday to you.
20: A very very happy birthday, many many happy returns of the day आपको wish कर रहे हैं. आज अपना birthday आप अगर celebrate कर रहे हैं तो आपके सभी परिवार वालों की ओर से, दोस्तों की ओर से, रिश्तेदारों की ओर से जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं. आज सुमन जी अपना birthday मना रही है और जन्मदिन के खास मौके पर सुमन जी आपके husband हैं रॉन, इनकी ओर से ढेर सारा प्यार एंड लव एंड बेस्ट विशेज. एंड नॉट फॉरगेटिंग आपके जितने भी परिवार वाले हैं, प्यारी सी बेटी आपकी मोनिका, इन्होंने भी आपको याद करते हुए जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं. हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे आपको विश किया है.

0: finance experience, call 0800-634-234.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं और फिलहाल समय की ओर देखें तो 26 minutes away from 8 for now. ठीक आठ पर तो न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे. बट बिफोर दैट आज काफी कुछ आपके साथ शेयर करना है, काफी सारी चीजें जो है ये आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं. तो हमने कहा था ना बहुत से मौके आपको देते रहेंगे. इनफैक्ट अगले घंटे आपको बताने वाले हैं कुछ बहुत कमाल की और खूबसूरत चीज़ें इस साल दिवाली के मौके पर हम करने वाले हैं और आप भी इसका हिस्सा बनते हुए फ़ायदा उठा सकते हैं. कैसे इसका हिस्सा बनना है, क्या करना है और कब और कैसे ये होगा जानने के लिए तो आपको सुनते रहना है. बट अगले घंटे डिटेल्स जो है आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे.
2: और उसके अलावा कुछ और भी हैं, नॉट ओनली दिवाली, दिवाली के अलावा भी कुछ और हैं जो होने जा रहे हैं और ये भी आपके काम की चीज़ होगी. क्या आपको करना होगा डिटेल्स जो है ये हम आपको बारी बारी से हम पर देते रहेंगे. तो हमारे साथ आप शामिल रहें. इन द मीन टाइम अभी देख लेते हैं क्या बोलते हैं उसको आज के हमारे सेलिब्रिटी अलार्म.
1: जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं आज के लिए और सबसे पहले शख्स जिन्होंने आज हमारे सेलिब्रिटी की आवाज़ को पहचाना वाज जसमीत. इन्होंने अपना मैसेज भेजा. बाय द वे मैंडी की ओर से गुड मॉर्निंग मैसेज भी आया है और इसके अलावा सुनीता है, गुंजन है, नव ने भी अपना जवाब भेजा, हर्ष का जवाब आया है, साथ में सनी है, नील है, लतीफ ने अपना मैसेज भेजा है, अनिश्मा है, साथ में सतविंदर सिंह जी हैं, एमएस शर्मा, इनका भी गुड मॉर्निंग मैसेज आया है, प्लस आई मीन माफ कीजिएगा इनका जवाब जो ये आया है, अमरजीत है, ज्योति है, आशिका है, कौशल ने भी अपना मैसेज भेजा है, सतीश है, फ्रांसीना बड़े दिनों बाद इन्होंने भी अपना गुड मॉर्निंग मैसेज भेजते हुए जवाब भेजा है, एंड इसके साथ साथ आइरीन है, रनीता है, इन्होंने भी आंसर्स भेजे हैं. आज कमाल की बात ये हुई कि जितने भी मैसेजेस आए सब ने एक जवाब दिया अपार्ट फ्रॉम वन पर्सन जिन्होंने एक थोड़ा डिफरेंट आंसर दिया बट गलत हो गया उनका आंसर. बट बाकी सबका सही रहा. रनीता ने इनफेक्ट कार्तिक आर्यन कहा था विच इज़ रॉन्ग. बट दी अदर्स जिन्होंने हमारे पास मैसेज भेजा था विच वॉज वरुण धवन या वी डी लिखकर कुछ लोगों ने भेजा था तो दैट इज द करेक्ट आंसर, वरुण धवन.
2: अच्छा, वी डी,
1: हाँ उनको बोलते हैं वी डी. बट यस, वरुण धवन आज की हमारी सेलिब्रिटी रहे इन सेलिब्रिटी अलार्म. जितने भी लोगों ने हमारे पास अपने अपने मैसेजेस भेजे, थैंक यू सो मच आप सभी के मैसेजेस के लिए. याद रहिए हमारे साथ बनी रहेगा अगले मौके के लिए. फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून में पार्ट लेकर $1,000 कैश आप जीत सकते हैं.
2: थोड़ी देर बाद आपकी मुलाकात जो है, नॉट मुलाकात बट उनके बारे में हम आपको बताएंगे. द फर्स्ट एंड ओनली क्वीन इन द वर्ल्ड जिन्होंने जो फाइटर जेट जो है सोलो फ्लाई किया.
1: ओह ओके,
2: या
1: ओके, सो वी विल फाइंड आउट कि ये कौन है. लेट्स गो
3: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZ PMI योर

0: I think Arijit Singh would be one of those singers जिनको आप any time of the day सुन सकते हैं, और इनका कोई भी गाना हो, चाहे जहाँ पर you know कलंक जैसा गाना जो कि romantic तो है ही but with a bit of sadness, या फिर you know वो गाना जिन्होंने गाया था, आपको याद है वो फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी?
1: हाँ हाँ हाँ हाँ, फिल्म याद है.
0: और उसका कोई गाना याद है?
1: ना.
0: अच्छा, नहीं याद है. In fact इनके बहुत से गाने जो है ये काफी popular हुए, but talking about the same रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का जो गाना है वे कम लिया, ये इन्होंने गाया था. इनफैक्ट गाना तुम क्या मिले, वट झुमका, ये ज़्यादा पॉपुलर हुआ, नो डाउट, बट वे कम लिया इज वन सच सॉन्ग दैट पीपल हैड यू नो एंजॉयड लिसनिंग टू.
1: वेरी नाइस सॉन्ग,
0: बहुत खूबसूरत गाना है.
1: बट गाया
0: अरिजीत सिंह ने.
1: अच्छा.
0: बट इनिशियली जब रॉकी रानी की प्रेम कहानी का जो एल्बम रिलीज हुआ था तब उस गाने को उतना रिकग्निशन नहीं मिला था. एंड ऑन द अदर हैंड आई थिंक माय पर्सनल फेवरेट्स ऑफ अरिजीत सिंह वुड बी अमर सिंह चमकीला का जो गाना है विदा. आई डोंट नो आपने सुना या नहीं सुना है.
1: नहीं सुना.
0: इट्स अ वेरी सैड सॉन्ग, तो वो हम नॉर्मली ब्रेकफास्ट शो में नहीं प्ले करते बिकॉज उसका जो एनर्जी है उस गाने का, इट डजंट मैच विद द एनर्जी ऑफ द शो अनफॉर्चुनेटली. बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड इट टॉक्स अबाउट एक शख्स जो खुद के बारे में कह रहे कि आई एम नो मोर इन दिस वर्ल्ड, अब मुझे जाने दो. एंड टॉक्स अबाउट द फैक्ट कि चलो मैं ही खराब हूँ, मैं ही बुरा हूँ, लेकिन जस्ट लेट मी बी, यू नो, लेट मी गो. तो उसका गाने का टाइटल है विदा करो. इनफैक्ट बहुत ब्यूटीफुल गाना है.
1: सुना है, सुना है,
0: हाँ.
1: सुना है.
0: तो मुझे पर्सनली वो गाना बहुत पसंद है.
1: या
0: बट ये गाने तो इन्होंने गाए हैं, बट देयर सम अमेजिंग फास्ट नंबर्स आल्सो जो इन्होंने गाया है. आपको याद है सोनू के टीटू की स्वीटी? टंग ट्विस्टर. सोनू के टीटू की स्वीटी याद है?
1: नहीं, स्वीटी नहीं, स्वीटी नहीं याद है मुझे.
0: सोनू और टीटू याद है?
1: नहीं, फिल्म याद है.
0: अच्छा, उसका एक गाना है सुबह सुबह.
1: हाँ हाँ
0: हाँ, तो वो गाना भी अरिजीत सिंह ने गाया, वेरी पॉपुलर, बट उसका एनर्जी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दीज सॉन्ग्स. सो वेरी राइटली सेड कि अरिजीत सिंह को आप कभी भी सुन सकते हैं,
1: किसी भी तरह का,
0: किसी भी मूड का गाना हो.
1: बट यू नो ये जो रोमांटिक सॉन्ग्स है या फिर ये जो ट्रेजिक सॉन्ग्स है,
0: सूदसिम,
1: एक वो है, दूसरे सैड सॉन्ग की जब बात आती है और एक अलग अंदाज में उसे पेश करने के बाद बी प्राक टेक्स द केक.
0: बी प्राक तो आया, उनका हाई नोट होता है बट इमोशंस काफी यू नो होते हैं गाने में.
1: नोट्स भी आए होते हैं, इमोशंस
0: भी आए होते हैं. एनीवेज आपने कहा था बताएंगे द ओनली रॉयल क्वीन जिन्होंने जेट फ्लाई किया था और समथिंग लाइक दैट.
1: ये है क्वीन सुथीदा.
0: ओके.
1: क्वीन सुथीदा जो है इन्होंने पिछले हफ्ते हेडलाइंस जो है ये क्रिएट किए आफ्टर कंप्लीटिंग हर फर्स्ट सोलो फ्लाइट एक फाइटर जेट में.
0: ओह, हां, लास्ट वीक ओनली.
1: लास्ट वीक
0: कहां की क्वीन है ये?
1: थाईलैंड.
0: ओह, ओके.
1: शी इज द फर्स्ट एंड ओनली क्वीन इन द वर्ल्ड टू पायलट अ फाइटर जेट. इमेज जो है ये देखने को, फोटोज जो है ये काफी वायरल हो रहे हैं. रिपोर्ट्स की माने तो जो महाराज हैं, नाम तो उनका बहुत लंबा चौड़ा है, वो मेरे से नहीं लिया जाएगा, उन्होंने यू नो फूलों से महारानी का स्वागत किया. एविएशन इनका कोई नया इंटरेस्ट नहीं है, वो फर्स्ट 2010 में पायलट बनी थी जब ओवर 1180 आवर्स जो है फ्लाइंग टाइम इन्होंने रिकॉर्ड किया. एंड शी हैज अंडरगोन मिलिट्री ट्रेनिंग एंड सर्व्स एज अ को पायलट ऑन रॉयल एयरक्राफ्ट अलोंग साइड द किंग.
0: That's interesting, yaar.
1: Just imagine, the only woman in the world, yeah, only queen in the world, jinhone fighter plane jo hai
0: ye fly kiya.
1: 1978 mein inka janm jo hai ye hua tha, and she graduated from Assumption University in Bangkok with a degree in communication arts. Aur phir उन्होंने एज अ फ्लाइट अटेंडेंट अपनी जो करियर की शुरुआत की थी फॉर जापान एयरलाइंस 2000 से 2003, जिसके बाद थाई एयरवेज इन्होंने ज्वाइन किया एंड जर्नी कंटिन्यूड.
0: ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. सो यू मस्ट से कि ये जो यू नो मोमेंट्स होते हैं जहाँ पर ऐसे हिस्टोरिक चीजें होती है, इट रियली रिफ्लेक्ट्स ऑन द पीपल ऑफ द कंट्री ऑल्सो ना, वो भी थोड़ा.
1: और फिर क्वीन जो होती है ना, एक अलग सा इमेज होता है उनका, कि वो चलेंगे, यू नो,
0: सर्टेन प्रोटोकॉल्स होते हैं, आई थिंक,
1: या रियल बहुत होता है, बट शी इज डिफाइंग द ओड्स डेफिनेटली.
0: इंटरेस्टिंग. तो चलिए, और भी कुछ जरूरी जानकारियां आपके नाम हम करने वाले हैं, और आज का हमारा सेकंड अपॉर्चुनिटी फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून में $1,000 कैश जीतना है आपको. इसके लिए क्या करना है सुनते रहिएगा, थोड़ी देर बाद ये मौका हम आपको देंगे.
2: Mornings made better.
3: Two frienda, char toast, butter jam, or a special chai.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: वो दिन जब मोहब्बत खत्म होती थी.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: Rewind. Sirf Rova Par.
1: Accurate traffic.
2: Your new home awaits in Strathmore, Oriwa.
3: Cloudy today, some showers and a high of 20 degrees. Into the city, some heavy motorways, southern 50 minutes, Manukau to town. We're slow joining at Drury and then heavy on and off Papakura right through to Green Lane. Southwestern, heavy northbound at Whitty, slow southbound at Mount Roskill. Northwestern, 41 minutes in from Massey, heavy on and off from Upper Harbour. Northern, 38 in from Constellation, heavy Silverdale to Snow Planet and all the way from Greville.
2: Strathmore, discover your new home in beautiful Oriwa. Visit strathmore.co.nz.
4: Get ready for massive savings at Carpet Court and Curtain Studio. Save on carpet, hard floor, rugs, curtains and blinds. Don't miss these unbeatable deals. Only at Carpet Court and Curtain Studio. 3 days only, starts Thursday.
5: It's Woolworths Health and Body Sale. Refresh your routine for less with up to 40% off on Oral-B products and up to 25% off on Schwarzkopf. Stock up and save on your everyday favourites. T's and exclusions apply. Only at Woolworths.
6: Huh? Free gold coins on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
7: Yes, Bebo.
6: Catch kya hai?
7: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free gold coins. Saath hi, selected jewelry par diamond value aur making charges mein up to 40% off ka fayda uthao.
6: I still can't believe it. No catch.
7: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar Gold and Diamonds. Botany Town Center, East Auckland.
8: PNC Supply.
9: Kya baat hai us khane mein jo pure ghar ko dining table par le aaye. Wo khushbu aur wo asli masalo ka swaad. Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. Bombay biryani ho ya butter chicken, korma ya chana masala. Recipes chahe vegetarian ho ya non-vegetarian. Shan recipe mixes har dish ko बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं। तो इंतजार किस बात का? आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
10: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
11: Don't mind, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है।
10: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
12: बस 12 मिनट ही बाकी है समय हमारे स्टूडियोज में सुबह के 8 बजने में. ठीक 8 पर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए रहेगा और फिर बहुत से बच्चे हैं जो वापसी कर रहे हैं स्कूल. दिस इज द टाइम जहां पर नॉर्मली स्कूल निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं, स्कूल पहुंचने वाले होते हैं ना. सो आपको ऑल द वे बेस्ट आज एक बार फिर हमारी ओर से. टर्म 4 का ये पहला दिन, नॉट जस्ट टू द स्कूल किड्स लेकिन टू द टीचर्स एंड पेरेंट्स एज वेल, हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं टर्म 4 के लिए. बाय द वे गुड मॉर्निंग के मैसेजेस आए हैं खुश और सुख की ओर से फ्रॉम मैंगरी. उन्होंने मैसेज किया है, गुड मॉर्निंग भी कहा है. सो थैंक यू सो मच आप दोनों के मैसेजेस के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया.
13: एंड उसके साथ आज हमने कहा था कि आपको फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून में हिस्सा लेने का एक और मौका जो है ये हम देने वाले हैं. टोटल ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस हम जीतने का मौका आपको दे रहे हैं. आप देख लो ना, इधर जो ओशियानिया रीजन है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पैसिफिक आइलैंड्स, मुझे नहीं लगता किसी भी हिंदी रेडियो स्टेशन पर $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस आपको मिल रहे होंगे.
12: हाँ बिल्कुल, और फिर इतने बेहतरीन इनाम ना.
13: या
12: मतलब $1,000 का फ्यूल वाउचर, $1,000 कैश, $1,000 के न्यू वर्ल्ड के शॉपिंग वाउचर्स, और फिर उसके अलावा $1,000 के माइटर 10 के वाउचर्स, $1,000 के हैरिंगटन लिविंग के वाउचर्स जहां से आप अपना होम डेको या फिर फर्नीचर वगैरह जो है ये भी ले सकते हैं. इतने सारे कमाल के इनाम हैं जो हम आपको दे रहे हैं और ये अपॉर्चुनिटीज आपको दे रहे हैं जीतने के. इस बार जैसे कि हमने कहा कि आप जीत सकते हैं हमारे साथ $1,000 कैश फॉर्च्यून की ओर से.
13: फॉर्च्यून जो आपके लिए लेकर आते हैं होल ग्रेन्स, एसेंशियल विटामिन्स, फॉर्च्यून फ्यूल्स, एवरीविन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून, जिनके साथ इनाम आप जीत सकते हैं. तो आज आपको $1,000 जीतने का मौका हम देने जा रहे हैं. ख्याल रखें, टर्म्स एंड कंडीशंस hum.rover.nz पर हैं और जब भी आप 5599 पर टेक्स्ट करते हैं स्टैंडर्ड कैरियर रेट अप्लाई. बट एट द सेम टाइम जितने ज्यादा एंट्रीज आपकी होती हैं जीतने के उतने ज्यादा चांसेस आपके पास होते हैं. बेसिकली अगर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि इसका मतलब क्या होता है
12: जी.
13: कि एक बाल्टी में अगर मान लिया जाए 50 पेपर्स या 50 नाम ड्रो में डाले गए हैं, क्योंकि देवे 50 अपॉर्चुनिटीज
12: राइट
13: जो आपको मिली थी
12: जीतने के
13: कुछ लोगों ने इधर इधर कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया, आपने 20 times पार्ट लिया, तो ऑब्वियसली the chances of your name being picked from their draw
12: would be more
13: than any other jinhone competition mein hissa liya. So that's what we mean, kyunki har show mein aapko inaam jeetne ka mauka hum de rahe hain, isiliye jab bhi aap participate karte hain आपका नाम ड्रो में शामिल होता है अगर सही तरीके से आप पार्टिसिपेट करते हैं. सो द मोर टाइम्स यू प्ले द मोर टाइम्स यू पार्टिसिपेट द मोर चांसेस टू विन.
12: एब्सोल्युटली, तो आपके पास भी चांस है जीतने का और इसके लिए बस अब आपको अपनी एंट्री हमारे पास सेंड करनी है. इनाम क्या है ये हमने बता दिया है, किनकी ओर से जीतना है ये हमने बता दिया है, पर ये भी याद रखें कि टर्म्स एंड कंडीशन समझने हो अराउंड दिस प्रमोशन हम .rover.nz आप विजिट कर सकते हैं. और दूसरी ओर आपको ये भी याद दिला दे कि जब भी आप मैसेज करते हैं तो स्टैंडर्ड के लिए रेट सप्लाई, बट डोंट फॉरगेट दिस दिवाली दिवाली फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून जो है इसके तहत यू कैन ऑल्सो विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस दिस टाइम अराउंड. $1,000 कैश जीतने के लिए फॉर्च्यून की ओर से आपको क्या करना है,
13: आपको बस सिंपल सा टेक्स्ट हमारे पास भेजना होगा. रिमेंबर आपको लिखना है फॉर्च्यून, उसके बाद अपना नाम और न्यूजीलैंड में कहाँ आप रहते हैं, किस शहर में रहते हैं, ऑकलैंड, हैमिल्टन, नेपिया, क्राइस्टचर्च, वेलिंगटन, फांगरे, जहाँ कहीं भी आप रहते हैं न्यू प्लिमथ, बस उतना ही आपको लिखना है और 5599 पर हमारे पास भेजना है. जहाँ कहीं भी आप रहते हैं यू कैन इन न्यूजीलैंड यू कैन टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन. अगर आपका नाम निकलता है पैसे आपके खाते में जमा कर दिए जाएंगे.
12: एब्सोल्युटली, नॉर्मली हमारा कोई प्रमोशन होता है तो वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड होता है टू ऑकलैंडर्स ओनली,
13: फिजिकल चीज है जब बड़ी बड़ी होती है ना,
12: कि प्राइजेस पहुंचाने के लिए लोगों के आकर यहाँ पर पिक करने की कंडीशंस होते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, विच इज वाई इट्स लिमिटेड टू ऑकलैंडर्स. लेकिन ये जो प्रमोशन है फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून, इट्स नॉट लिमिटेड टू ऑकलैंडर्स ओनली, विच मीन्स कि आप ऑकलैंड के बाहर भी रहते हैं आप जरूर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो याद रहे फॉर्च्यून लिखना है, फिर अपना नाम और किस शहर से आप है ये लिखकर 5599% कर दे इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स फॉर योर चांस टू विन

0: क्योंकि फंगल पर्वों के साउथ में खासतौर पर कभी कभार गंभीर हो सकती है। ईजिंग आउट दिस आफ्टरनून और आज का सनसेट 7:35 PM पर ओवरनाइट कम से कम 14 डिग्रीज रहेगा।
1: The Rush Hour, brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
2: आज का जो ट्रेंड पेट्रोल है, मैं इसके बारे में थोड़ी देर पहले जो ये पढ़ रही थी और ये आई डोंट थिंक सो इट्स अ वेरी गुड ट्रेंड टू फॉलो, लेकिन इसके बारे में खबर जो है ये आ रही है। नवरात्र के मौके पर जो ये पूरा सेलिब्रेशन होता है ये बहुत ग्रैंड होता है एंड बहुत से ऐसे स्लीपलेस नाइट्स भी होते हैं बहुत से लोगों के, और ये ऐसा एक टाइम होता है जहाँ पर लोग जो है यू नो जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, फिर उनका काफ़ी टाइम जो है ये इसमें निकलता है। तो एक नया जो ट्रेंड है ये सामने आ रहा है विच हैज़ बीन फॉलोड बाय अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स ड्यूरिंग नवरात्रि, जिसके बारे में बातें हो रही हैं। एंड ऑफ कोर्स इट्स बीन एडवाइस कि ये सही भी नहीं है, जैसे कि मैंने भी कहा, इवन आई थिंक इट्स नॉट अ वेरी नाइस ट्रेंड टू फॉलो, बट इसके बारे में बातें इसलिए कर रहे ताकि अवेयरनेस जरूर हो। सो अहमदाबाद में इन इंडिया यहाँ पर नवरात्रि सेलिब्रेशंस बहुत ग्रैंड होते हैं और गरबा डांडिया रास जो है ये बहुत यू नो भारी पैमाने पर होता है, बहुत से लोग यहाँ पर जाते हैं। तो ड्यूरिंग दिस नवरात्र के टाइम पर कहा गया है कि आजकल का जो यंगर जनरेशन है दे हैव ऑप्टेड फॉर अ सोल्यूशन विच कॉस्ट देम अराउंड 4,000 रुपीज़ से लेकर 10,000 रुपीज़ सिंगल ट्रीटमेंट के लिए, जहाँ पर वो IV ड्रिप सेशंस जो है ये लेते हैं। सो दीज IV ड्रिप्स जो है लेने से उनका क्या होता है, दे फील मोर एनर्जेटिक और थोड़ा ग्लो आता है चेहरे पर, और एक यू नो कॉम्प्लेक्शन वाइज अगर देखा जाए तो उनका चेहरा जो थोड़ा निखरा रहता है, दैट्स व्हाट दे फील। और इसके चलते बहुत से क्लिनिक्स ने देखा हुआ है कि एक नया किस्म का ट्रेंड जो कि शुरू हो रहा है या फिर इस दौरान ज़्यादातर नोटिस किया गया है, जिसके बारे में बातें की गई हैं। नाउ इस प्रोसीजर को स्ट्रिक्टली व्यू किया जाता है एज वन ऑफ फेस्टिवल नेसेसिटी रादर देन ऑन गोइंग कॉस्मेटिक कमिटमेंट, जिसमें बहुत से लोगों ने अपने अपने डिटेल्स भी शेयर किए कि इन्होंने ये करवाया है, बट क्लिनिक्स जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं इट्स नॉट इलीगल, दैट्स वाई इट्स बीइंग डन। और ऑन द अदर हैंड ये भी कहा जा रहा है लोकल मेडिकल एक्सपर्ट्स द्वारा कि आप जो भी चीज़ करते हैं थोड़ा संभल कर कॉशन के साथ कीजिए, ऐसा नहीं कि कोई कर रहा है तो आप भी जाकर करना शुरू कर दें, और क्लिनिकल सुपरविजन और एक्सपर्ट्स के यू नो नज़रिए में रहकर ये चीज़ें जो है ये करें, ये बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर किंजल मेहता है जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, ये अहमदाबाद में ही प्रैक्टिस करती हैं, इन्होंने एम्फोसाइज किया है कि IV ड्रिप्स जो है ये फॉर्मल मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए होते हैं और प्रॉपर स्क्रीनिंग के बाद ये लोगों को दी जाती है, लेकिन अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से तो शायद ये आपके हेल्थ के लिए लॉन्ग रन में सही नहीं है, बिकॉज विदाउट एनी रिक्वायरमेंट यू जस्ट पुटिंग इट इन योर बॉडी ताकि आपका ग्लो बना रहे, आपके शरीर में एनर्जी रहे ना, तो इसलिए
0: या जरूरत ही क्या है भाई ऐसे चीजों की, बट Yeah,
2: you don't know what to say, so it's okay.
0: It's okay.
2: If
0: it's
2: you don't
0: okay.
2: know what to say, I think better option rahega. Let's just ignore it. But as we said, ki yahan to ye nahi hota hai. Thank God for that. Ki New Zealand mein aise practices nahi hote hain. बट ऑन दी अदर हैंड ये एक ट्रेंड है जिसके बारे में काफी बात हो रही है फिलहाल।
0: नवरात्रि की बात जब आप कर रही हैं, ट्रेंड पेट्रोल की एक बात आप जब बातें हम कर रहे हैं, यू नो कल जो है आई क्रिएटेड समथिंग
2: ओके
0: एंड बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन उस चीज ने इतना ट्रेंड किया
2: ओके
0: तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप सुना दे,
2: मुझे आप बता दीजिए कहाँ पर है, मैं सुना दूंगी।
0: आप जाएंगी जब संस्कृति आर्ट्स के फेसबुक पेज पर
2: ओके
0: तो पिंड क्या बोलते हैं फीचर फोल्डर, फीचर फोल्डर में
2: मैं बाकी ढूंढ लूंगी, डोंट वरी।
0: सेकंड पोस्ट जो है क्योंकि कई चीजें आपको वहां पर फीचर मिलेंगी
2: ओके
0: तो वो जरा सा आप सुना दे, क्योंकि ये जब नवरात्र का जो टाइम होता है पर्सनली मेरे लिए बहुत ही स्पेशल होता है फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, एंड जब मैंने इसे लिखा था तो आई डिड नॉट नो कि ये ऐसा जाने वाला है या ऐसा कुछ होगा, बट टू माय सरप्राइज इसे मैंने क्रिएट करके राइट एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट जो है
2: ये पोस्ट किया आपने,
0: हाँ लॉन्च किया था जो सेकंड वाला था वो आप थोड़ा सा

ठीक है, मैं ऑफ कोर्स मैं अभी इसको पहले अरेंज कर लेती हूँ, फिर सबको आप सुनाएंगे जो आपने क्रिएट किया. थोड़ा सा सुनाना है तो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि विदाउट एनी इश्यूज आप ये सुन पाए. दिस इज द वन यू टॉकिंग अबाउट, राइट? ओके, हियर वी गो.

0: So this is the first one that I created, and Navratri ke pehle din par, and above and beyond isko pasand kiya gaya. And the second one, I did not write it. Ye jo log Fiji se hain, jo Navratri celebrate karte hain, unko iske baare mein achhi tarah se pata hoga. It's an age old pachra. Navratri ke mauke par, Devi ki puja ke mauke par, mujhe malum nahi ki India mein kahan kahan par, but Fiji mein pachra ka bahut purana chalan hai. To kai decades से ये चलता आया है, और एक पचरा बहुत ही पुराना, उसे कल नहीं आज जाकर रिक्रिएट किया मैंने.
1: Okay.
0: इनफैक्ट कल शाम इस पर काम किया और आज सुबह इसको लोन किया. वो भी आप जरा सा सुना दें.
1: ठीक है.

0: आप अगर ये बताएं कि पचरा एक्चुअली में होता क्या है, जो लोग इसके इससे वाकिफ है उनको तो पता है ही, हाँ। पर जो लोग नहीं जानते उनको कैसे पता चले कि क्या है
1: ये? देवी माँ को मनाने का क्या बोलते हैं उसको, अरे उनको खुश करने का, उनका आवाहन करने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए, उनकी शक्ति को जगाने के लिए, जो भी आप कहना चाहें।
0: okay.
1: तो पचरा जो है बहुत पावरफुल होता है, बहुत एनर्जेटिक होता है,
0: डिवाइन होता है ना?
1: तो वो तो दीज टू हैव गॉन, एक तो आज सुबह ही शुरू हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, पोस्ट किया मैंने, और एक कल, एंड दे बोथ हैव गॉन बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन ट्रेंड।
0: That's nice. That's good to hear. और नंसो, on the fact कि नवरात्र का मौका है तो definitely आपके पास भी हो कुछ शेयर करने के लिए। In fact, अगर आप you know नवरात्रि के इस मौके पर शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ कि आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं, आपके लिए क्या एस्पेक्ट्स हैं इसके, वो भी आप ज़रूर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ना।
1: और
0: 5599 पर आप हमारे पास टेक्स्ट कर सकते हैं। और ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको ये देवी पचरा जो है ये सुनना है तो संस्कृति आर्ट्स की पेज पर जाकर आप इसे फॉलो करते हुए जरूर चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल चलिए रश आवर की शुरुआत हो रही है, 11 मिनट हो रहे हैं 8 बजकर, मंडे 12th ऑफ अक्टूबर की ये सुबह खास आपके नाम हम कर रहे हैं। और रश आवर में थोड़ी देर बाद आज का व्हाट्स योर टेक टॉपिक ये भी आपके लिए हम लेकर आएंगे।

0: Show.
1: Save big at Rebel and get the family sorted for the summer season. Take 15% off all kids' Nike clothing. They're selected big brand kids and adults tees, two for $50. Plus, get 20% off selected bags and bottles. Summer Valley was on now, only at Rebel Sport. See you on T's and C's.
2: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Huge side-by-side black stainless steel fridge freezers, just $699. Midea inverter heat pumps with Wi-Fi from just $699. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
3: Okay, who drank all of the milk?
4: New World Express Delivery. Get your groceries in as little as 60 minutes. T's and C's and exclusions apply. See online for details.
5: Oh, the kids absolutely love Fiji. They were in the water basically the whole time, snorkeling, kayaking, jumping off the pontoon. They loved the kids club and so did we. Then there was the hermit crab racing.
6: In August, the Miles family needed to make an urgent claim for stolen property while they were in Fiji, thanks to AA Travel Insurance. That wasn't the story they came home with. AA Travel Insurance. On with the trip. Travel insurance issued by Zurich Australian Insurance Limited. Illustrative example only. Limits, sublimits, conditions and exclusions apply. Consider your own needs and read the policy wording.
7: Make a splash with Instant Kiwi for your chance to win up to $50,000. Dive into your local Lotto NZ store and ask for a $3 Sequest ticket or play online at mylotto.co.nz. It's one quest with two ways to play. You never know. R18.
8: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
9: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
8: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
10: 8 मिनट हो रहे हैं 8:00 इस समय हमारे स्टूडियोज में. दरअसल आपके लिए लेकर आ रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. रीना का मैसेज आया, इन्होंने कहा वेरी गुड क्रिएशन विजय भाई, रोंगटे खड़े हो गए सुबह सुबह, ये इन्होंने लिखा है. सो थैंक यू सो मच रीना आपके मैसेज के लिए,
11: बहुत बहुत शुक्रिया.
10: और इसके अलावा हमने आपसे कहा था ना सुबह से, इनफेक्ट आपको बताते आ रहे हैं कि आज आपके लिए कुछ खास हम लेकर आ रहे हैं, आज आपके लिए कुछ स्पेशल जो आपके लिए है, जिसमें आपका फ़ायदा है. तो एक्चुअली में वो खास, वो स्पेशल चीज़ जो है ये है क्या, तो पहले सुनाते हैं.
11: सुनाइए सुनाइए,
10: फिर उसके बाद आपको और डिटेल्स हम देंगे. तो ये है आज जो स्पेशल चीज़ आपके लिए हम लेकर आ रहे थे और हम, क्योंकि आज से इसकी शुरुआत होने वाली है.
12: इस दिवाली सिर्फ घर नहीं, रिश्ते भी रोशन करें. एक दिया एक कहानी के साथ जुड़िए दिवाली पूजा, पूजा विधि, दिवाली पूजा सामग्री और दिवाली रामायण गाथा के साथ. हर दिया एक कहानी कहेगा और हर दिल अपनों के और करीब आएगा. हम की ओर से आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं. ब्रॉट टू यू बाय फाइनेंस वर्ल्ड, रामायणा मूवी बाय फोरम फिल्म्स, इंडेलिबल होम्स, लोटस फॉरेन एक्सचेंज, एबीसी बिजनेस कंसल्टेंट्स, सोना संसार, पैशन लैंडस्केप, अम्मास फूड, पीएफएसएल, अर्जुन सुपरमार्केट, बिग बाजार एंड फॉर्चून फूड्स.
11: अलेक्सा वो क्या बोलते हैं,
10: फील
11: आता है इसके साथ. चलो दिवाली बस जस्ट अराउंड द कोना एंड उसकी तैयारियां. और हम भी यू नो बिहाइंड द सीन्स हैव बीन वर्किंग वेरी वेरी हार्ड, एक्सट्रीमली हार्ड. इस साल कुछ नया कुछ अलग जो है दिवाली के मौके पर आपके लिए करने के लिए. और इसकी शुरुआत जो है फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून के साथ हमने की, जहाँ पर $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस जो है ये तो हम जीतने का मौका आपको दे ही रहे हैं. लेकिन उसके अलावा यू नो दिवाली के मौके पर दिवाली के गाने जो हैं ये तो आप सुनते ही रहते हैं. उसके अलावा दिवाली लाइट्स कंपटीशन, ये चीज़ें वो चीज़ें जो आमतौर पर जनरली होती हैं वो तो हैं ही, लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं. तो इस बार कुछ अलग कुछ नई चीज़ें जो हैं ये भी हम आपके लिए लेकर आए हैं और इनके बारे में भी हम आपको बारी बारी से बताएंगे कि इस दिवाली के मौके पर हम पर क्या कुछ है आपके लिए।
10: बिल्कुल, और कैसे आप इसका हिस्सा जो है ये बन सकते हैं। तो दिवाली जबकि 8th of November को सेलिब्रेट किया जाएगा और हमारे साथ हम और आप एक साथ मिलकर इसे सेलिब्रेट करने वाले हैं। इस साल दिवाली के खास मौके पर आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं ऑफ कोर्स हर साल की तरह दिवाली पूजा, दिवाली पूजा सामग्री, दिवाली पूजा विधि, ये चीज़ें तो रहेंगी रहेंगी क्योंकि हमें पता है कि ये काफ़ी ज़रूरी और इन्फॉर्मेशनल चीज़ें हैं जो आप के काम आती हैं और इसका आप यू नो इंतज़ार करते हैं, तो ये आपके लिए रहेगा ही। बट ऑन दी अदर हैंड इस साल आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं एक और एक स्पेशल चीज़, और वो क्या है चलिए ये भी आपको हम सुनाते हैं।
12: Diwali Ramayan Gatha brought to you by Fortune Foods with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win. Big Bazaar, your one-stop Diwali superstore. Shop online at bigbazaar.co.nz. Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelibleHomes.co.nz. Finance World, your trusted finance advisory in South Auckland. Lotus Foreign Exchange, getting more value from your money. Arjun Supermarket and Food for Less, located in New Lynn and Botany. Sona संसार परंपरा की चमक त्योहार की पसंद शाइन आउट विद स्पेशल्स विजिट सोना संसार पापा टॉय एंड माउंट रॉस्किल एंड रामायणा मूवी रिलीजिंग दिस दिवाली थ्रू फोरम फिल्म्स।
11: तो इस दिवाली के मौके पर एक नई चीज जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो है दिवाली रामायण गाथा। हम सभी अपनी निजी ज़िंदगी में इतने बिजी होते हैं या फिर जीवन के उतार चढ़ाव में कभी कभार इन चीज़ों पर गौर करना भूल जाते हैं, तो हमने सोचा कि इस बार ऐसा करते हैं कि थ्रू आउट द डे अलग अलग टाइम पर अभी से लेकर दिवाली के बीच वेरी शॉर्ट क्लिप्स जो हमने प्रोड्यूस किए हैं ये हम आपको सुनाएंगे। ये जो ऑडियोज हैं या फिर ये जो प्रोडक्शन है ये बहुत बारीकी से गौर करने के बाद इसे हमने तैयार किया है और ये परफेक्ट टाइम होता है स्पेशली सुबह के वक्त अगर आप ट्रेवल कर रहे होते, बच्चे हैं आपके साथ तो उन्हें आप ये सुनाएं ताकि वो अपने कल्चर से जुड़ सके, दिवाली के बारे में समझ सके, रामायण का दिवाली से किस तरह से संबंध है वो इसके बारे में जान और समझ सके। तो ये हमारी ओर से एक कोशिश थी जिसके वजह से हमने सोचा कि इस साल दिवाली रामायण गाथा जो है ये अभी से लेकर दिवाली के बीच ऑन वीकडेज हम आपके लिए लेकर आएंगे और जो टाइम है आप बता दें कि किस किस टाइम पर ये होगा।
10: राइट, तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट शो में 9:15 के अराउंड ये होगा
11: या और आज तो अभी सुना देंगे ना।
10: हाँ, और उसके साथ साथ ये 1:30 PM जो है ये रहेगा लंच बॉक्स के दौरान, और जो लास्ट वाला है ये रहेगा 6:45 PM पर ड्यूरिंग द ड्राइव शो।
11: हाँ, तो ऐसा नॉर्मली एवरी डे जो है अलग अलग टाइम या फिर स्केड्यूल टाइम पर ये रहेगा। आज चूंकि पहला दिन है इसका,
10: चूंकि
11: हाँ चूंकि कहते हैं ना
10: किसको,
11: क्योंकि को, क्योंकि आज पहला दिन है
10: वो मुझे नहीं पता
11: उसका
10: था।
11: एक और टाइम है चूंकि,
10: मुझे नहीं पता था, मुझे लगा ऐसे पागल बना रहे हो मुझे।
11: नहीं नहीं, तो अगर आप अभी अपने बच्चों के साथ ट्रेवल कर रहे हैं खासकर छोटे छोटे बच्चे हैं तो अच्छी तरह से आप गौर से सुने और उसके बाद थोड़ा सा फीडबैक भी आप जरूर हमें दें क्योंकि ये हमारी ओर से पहली कोशिश है टू
10: पहली बार ऐसा कुछ कर रहे हैं।
11: हाँ, टू डू समथिंग,
10: मिनी सीरीज है ना रामायण का।
11: हाँ,
10: जो हम सिंपल भाषा में आप तक लेकर आ रहे हैं
11: ये आप सुनेंगे तो समझ में आएगा और एवरी डे ये कंटिन्यूएशन होगा जहाँ से आज हम शुरू कर रहे हैं
10: कल वहाँ से
11: आगे बढ़ेगा। आज जो अभी आप सुन रहे हैं वही दिन में सुनेंगे, वही शाम को सुनेंगे इन केस यू मिस आउट।
10: ओके, एंड देन कल वापस से जो दूसरा पार्ट है ये आप सुनेंगे। तो चलिए हम पर दिवाली रामायण गाथा पहली बार आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं।

0: हम पर सुनते रहिए श्री रामचरितमानस की पावन दीपावली गाथा।
1: तो ये अब रामायण में जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को लौटने में एक दिन बाकी रह जाता है
2: जी।
1: वहां से ये गाथा जो है ये हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं। इससे आगे अब क्या हुआ जी,
2: इससे आगे क्या होगा ये हम आपको कल सुनाएंगे।
1: वैसे जिन लोगों ने अभी नहीं सुना वो दिन में
2: 1:30 PM और शाम को 6:45 PM ये वापस से आपके लिए रहेगा। नाउ द ब्यूटी ऑफ दिस इज कि ये बहुत छोटे छोटे मिनी सीरीज है जो आपके लिए लेकर आ रहे हैं और इट्स विद द फील एंड द म्यूजिक, ताकि आपके साथ साथ आपके बच्चे जो है ये भी सुने समझे और इसे एक्सपीरियंस कर सके। नाउ हमने ये भी कहा था कि अगर आपके पास कोई फीडबैक हो तो वो भी आप हमारे पास ज़रूर दे सकते हैं हमारे दिवाली रामायण गाथा के लिए। एंड कॉल आ रहा है सपना का, तो चलिए इनसे पहले बात कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग सपना।
3: गुड मॉर्निंग पूजा जी। गुड मॉर्निंग विजय भाई, कैसे हैं आप लोग?
1: गुड गुड गुड। सपना आप कैसी हो?
3: मैं ठीक हूँ। वेरी गुड इनिशिएटिव, बट मेरे पास फीडबैक है।
2: हाँ बोलिए बोलिए।
3: एक्चुअली जो लैंग्वेज है वो शुद्ध हिंदी है, तो वो यहाँ पे बच्चे इतनी शुद्ध हिंदी, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड। तो अगर वो थोड़ा मिक्स ऑफ लैंग्वेज होता हिंदी एंड इंग्लिश, इट वुड बी इजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड।
1: Understand, we totally understand, लेकिन क्या है ना कि बहुत सारे लोग बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं when it comes to religious things. इसलिए हमने सोचा कि जब पेरेंट्स होंगे उनको समझ में आएगा, अगर बच्चों के समझ में नहीं आता तो वो समझा देंगे।
3: हिंदी भी सिंपल होती है कि अधीर हो गए और ऐसा, तो वो that is very, you know, कई पेरेंट्स को भी नहीं पता है।
1: अच्छा
3: तो ऐसा। और दूसरा टाइमिंग जो आपने मॉर्निंग का रखा है 9:15, तब तक तो बच्चे स्कूल पहुंच जाते हैं, 1:30 वो लोग होते नहीं है।
1: वो भी है,
2: वो बात तो है।
3: और 6:40 ये भी मतलब वो जबका रहता है कि 7:30 to 7:30 तो बच्चे सो जाते हैं, तो 6:45 कौन ही सुनता है,
2: टाइमिंग बदलना पड़ेगा।
1: अच्छा तो हम We'll try and change the time.
2: We'll put things into consideration, Sapna. And there's a reason हमें feedback मांगा ना, because we totally understand. As far as the language is concerned, शायद उसमें हम अभी फिलहाल के लिए कुछ changes ना कर पाए, क्योंकि production हो चुका है most importantly. और दूसरी चीज जैसे कि हमने कहा कि religion is a very sensitive thing. और religious चीजों को लेकर
3: नहीं, बट आप लोगों ने शुरू किया वो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी मैंने मेघा से पूछा कि क्या समझ में आया, तो बोली नॉट रियली, जबकि वो हिंदी पढ़ी हुई है, ग्रेड 2 तक उसने दुबई में हिंदी पढ़ी है।
2: अच्छा जी।
1: ओके।
3: बट उसको नहीं आया समझ में, क्योंकि आजकल की हिंदी इतनी साहित्यिक नहीं है।
2: हाँ, आजकल की हिंदी प्योर होती भी नहीं है, काफी मिक्स्ड होता है अलग अलग लैंग्वेजेस का। बट वी टोटली गेट इट। यस यस, वी टोटली गेट इट।
3: मैं समझा दूंगी
2: आपको, तो समझ में आया ना?
3: मुझे आ गया समझ में।
2: अच्छा, थैंक गॉड,
3: इजी था क्योंकि मैंने पढ़ी है हिंदी।
2: No, but so, thank you so much for the feedback. We will definitely take things into consideration.
3: Yeah.
2: Thank you.
3: Yeah.
2: Right. तो ये एक बहुत ही जरूरी feedback which we'll definitely, you know, keep in mind.
1: आप भी अपना feedback जो है ये हमें दे। कितने मिनट का था ये?
2: ये 1 minute का था।
1: 1 minute. एक बार फिर आप सुना सकती हैं। Have a listen very very careful. Listen to it very very carefully and try and understand if you can. And तब अपना feedback जो है ये आप हमें दे सकते हैं।
2: हाँ, कि आपका क्या कहना है इसके बारे में?
1: शायद इतनी अच्छी तरह से आप सुन नहीं पाए हो।
2: मैसेज कर सकते हैं इनफैक्ट हमारे पास, ठीक है? तो चलो, here we go. Why I'm saying message, क्योंकि भी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा टू टेक कॉल्स।
0: 14 वर्षों का कठिन वनवास समाप्त होने को था। अयोध्या नगरी की सांसें थमी हुई थीं और भरत जी का

0: हम पर सुनते रहिए।
1: तो आप ने सुना इसे, जो चौपाइयाँ हैं या जो दोहे होंगे उसके बाद उसका मतलब जो है, अर्थ जो है ये समझाया जाता है। तो जो भी फीडबैक हो आप शेयर कर सकते हैं। पहली बार दिवाली के मौके पर श्री रामायण गाथा जो है ये आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, वीकडेज जो आप हम पर सुन सकेंगे। जो भी फीडबैक हो 5599 पर आप हमें ज़रूर भेज सकते हैं। इसके अलावा भी कई चीज़ें जो हैं ये पहली मरतबा हो रही हैं।
2: बिल्कुल, और आपके लिए लेकर आने वाले एक और एक स्पेशल चीज, इसके लिए आपको रहना है तैयार। ये अभी नहीं, थोड़ी देर बाद आपको हम सुनाएंगे।
3: Hollywood's most wanted.
4: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ।
5: मैं लाऊं अपना A game.
3: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Vijay and Pooja.
1: Chup ho ja, papi ho. Chup ho ja.
2: Accurate traffic.
3: Kitchen Mania free installation.
4: Cloudy today, but wet this morning, high of 20. Coming into the city, heavy motorways, northwestern 42 minutes, Massey to town, heavy most of the way from Upper Harbour. Southern 46 Manukau to the city, slow from Drury, heavy Otahuhu to Green Lane. Northern 32 and from Constellation, heavy Silverdale to Snow Planet and Greville to the bridge. Southwestern, heavy northbound at Whitty, slow southbound at Mount Roskill.
3: Order your new Kitchen Mania kitchen and receive free installation. KitchenMania.co.nz. T's and C's apply.
5: High five! High five? Anybody? No? Ah, that's right. It's $5 weeks at Pack and Save. Low five! Ah, that's more like it. Although this would make a lot more sense if I had fingers. $5 weeks! On now at Pack and Save.
6: Hey you, your scrolling just got rewarding. Renew 3 times in a row with Skinny to collect everyday rewards points. Skinny and everyday rewards accounts must be linked. See skinny.co.nz for eligible plans and T's and C's. Get the skinny.
7: Happy, happy, happy, oh.
8: Bunnings has what you need to give your home a proper spring clean. Get your indoors sparkling with our range of vacuums and mops, or clean up outside with our pressure washers and window cleaners. Start cleaning up for less at Bunnings.
9: Bunnings Warehouse.
8: Lowest prices are just the beginning.
10: Home and contents belong together, and insuring them together makes life easier. Switch to Tower and save $200 on new home insurance and $100 on new contents insurance. Use promo code EASYSAVE. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
11: Mila Outlet Store is having a huge 3-day sale. From Wednesday to Friday, there'll be huge savings with up to 60% off a range of selected Mila appliances. Your kitchen, your sanctuary, your chance to grab quality Miele appliances at amazing prices, but for 3 days only. Don't miss out on Miele Outlet Store's huge 3-day sale. Starts Wednesday and only at 880 Great South Road, Penrose. For more info, go to steelfort.co.nz.
12: Huh? Free gold coins on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
13: Yes, Bebo.
12: Catch kya hai?
13: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free gold coins. Saath hi, selected jewelry par diamond value aur making charges mein up to 40% off ka fayda uthao.
12: I still can't believe it. No catch.
13: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar Gold and Diamonds. Botany Town Center, East Auckland.
14: PNC Supply.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
15: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manukau.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
16: Diwali ke khas mauke par aaj humne सुबह सुबह आपको दिवाली रामायण गाथा के बारे में जो ये बताया, वी हैव गॉट सम फीडबैक हियर, जहां पर हमारे पास परमा महाराज जी ने मैसेज किया, उन्होंने कहा वेरी नाइस, दिस इज द रिटर्न ऑफ लॉर्ड राम जी, नाइस जॉब, ब्लेसिंग्स टू ऑल. और इसके अलावा अवि ने मैसेज किया है कि हाय विजय एंड पूजा, 9:15 डजंट वर्क, किड्स आर इन स्कूल एंड वी आर एट वर्क, 8:30 और 8:45 वुड वर्क, ग्रेट एफर्ट दो, इन्होंने कहा है.
17: उसके बाद रामायण गाथा इज अ ब्यूटिफुल इनिशिएटिव, आई अग्री विद द सजेस्टेड टाइमिंग, 8:20 इज अ गुड टाइम, इट वुड ऑल्सो बी ग्रेट इफ द रेडियो अनाउंसर कुड प्रोवाइड अ ब्रीफ ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन फॉर दोज हु मे नॉट फुली अंडरस्टैंड संस्कृत और हिंदी, दिस वुड हेल्प अ वाइडर ऑडियंस अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड कनेक्ट मोर डीपली विद द रामायण गाथा. कैशुअल का ये मैसेज आया है, सो थैंक यू सो मच. तो डेफिनेटली I feel that we will need to change the time.
16: Yes, we will work on that and आपको updated time जो है कि हम जरूर बताएंगे. पर फिलहाल के लिए एक और एक चीज जो इस दिवाली खास हम आपके लिए करने जा रहे हैं, एक दिया एक कहानी, दिस दिवाली ऑन हम, जहाँ पर ये आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं, क्योंकि इस बार वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट समवन इन योर लाइफ, समवन स्पेशल इन योर लाइफ दिस दिवाली. एंड व्हेन वी से समवन, पर्टिकुलरली हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक ऐसा समवन हो जो आपसे ब्लड रिलेटेड नहीं है, मतलब आपके फैमिली मेम्बर नहीं है, आपके माता पिता, भाई बहन, यू नो योर रिलेटिव नहीं है. इट कुड बी समवन इन योर लाइफ जो आपसे किसी और तरीके से जुड़े, सम अदर रिलेशनशिप, प्रोबेबली अ कलीग, अ नेबर, जो आपकी लाइफ में एक लाइट जैसे हैं. But who has supported you basically?
17: आपके शायद सगे रिश्तेदार नहीं, लेकिन समझ लो
16: दूर के रिश्तेदार,
17: खून का रिश्ता नहीं, लेकिन रिश्ता है इतना प्यारा, इतना मजबूत.
16: Right. And you know, someone जिन्होंने आपको सपोर्ट किया हो, आपको इंस्पायर किया हो, आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर आए, आपकी लाइफ को और रोशन किया उन्होंने और ब्राइट किया है, इसीलिए एक दिया एक कहानी जहाँ पर यू कैन नाउ गिव अस अ कॉल ऑन 0800 004866. और इस नंबर पर कॉल कर आप उन्हें एक शाउट आउट दे सकते हैं, एज इन आप हमें उनके नाम बता सकते हैं और क्यों आप उनको अपनी जिंदगी में अप्रिशिएट करते हैं वो आप हमें बता सकते हैं.
17: तो एक दिया उनके नाम आप करें, सेलिब्रेट दैट स्पेशल पर्सन इन योर लाइफ और जिन्होंने शायद किसी तरह से आपको सपोर्ट किया, आपको इंस्पायर किया, मेड यू स्माइल और सिंपली आपकी जिंदगी को खुशहाल बनाया.
16: राइट. एंड वंस यू डू दैट तो आपका नाम हम ड्रो में शामिल करेंगे जहां पर ऐसा करते हुए $300 कैश दिस दिवाली आप जीत सकते हैं. सो 30 सेकंड्स का टाइम है, विद इन 30 सेकंड्स द फर्स्ट पर्सन हु कॉल्स एंड आज की हमारी एक दिया एक कहानी में पार्टिसिपेट करते हुए उस शख्स को शाउट आउट देते हैं जो उनकी लाइफ में एक स्पेशल जगह होल्ड करते हैं, नॉट समवन हु इज ब्लड रिलेटेड टू यू दो. तो आपका नाम ड्रो में जाएगा, $300 आप जीत सकते हैं दिस दिवाली, जिसका ड्रो 6th November को हम करेंगे और ये $300 कौन जीतेगा उस दिन जरूर पता चलेगा. सो याद रहे 0800 HUM 0800 004866. फाइनल 10 सेकंड्स टू गो, देखते हैं कि क्या किसी का कॉल आता भी है नहीं.
17: सर आपकी लाइफ में कोई तो ऐसा होगा हु मींस सो मच टू यू, बस इतना ही आपको करना है कि आप कॉल करें, बताएं कि वो कौन है और क्यों इतने स्पेशल हैं आपकी जिंदगी में.
16: यस yes, और हमने तो एग्जांपल्स भी दिए ना, कुछ भी समवन जो यू नो एक चीज, अ टीचर, इनको हम शुक्रिया करना कितनी बार भूल जाते हैं, सिर्फ टीचर्स डे आता है तो याद आते हैं वो
17: जी.
16: पर वो भी तो है ना जिन्होंने आपकी लाइफ में सबसे बड़ा और सबसे पहला इनिशिएटिव रखा है ना आपकी लाइफ आज जहाँ भी है जैसी भी है. गुड मॉर्निंग. हम
2: गुड मॉर्निंग जी.
16: गुड मॉर्निंग जी, किन से बात हो रही है?
2: कोमल से.
16: हाँ जी कोमल, तो सबसे पहले बताइए आज किसको याद करना चाहेंगी आप?
2: हम टीम को.
16: सॉरी किन को?
2: हम और उनकी टीम को.
16: अच्छा हम टीम को, हम लोगों को. अच्छा
2: हाँ.
16: ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. और हमको क्यों आप शाउटर दे रही है कोमल?
2: देखो हमने स्टार्ट किया रेडियो हम सुनने के 2022.
16: ओके.
2: एंड देन आई टुक पार्ट इन दिवाली कंपटीशन 2022 में. हमने दिवाली लाइटिंग कॉम्पिटिशन सेकंड प्राइज जीता, 23 में सेकंड प्राइज, 24 में सेकंड प्राइज.
16: ओके.
2: तीनों बार. और सब आप लोग से इंस्पायर होकर कि आप लोग मोटिवेट कर रहे थे कि दिवाली में पार्ट लो, दिवाली लाइट कॉम्पिटिशन में पार्ट लो, तो हमने लिया.
16: अच्छा तो आप इस बात से खुश है कि नाराज है?
2: खुश है, बहुत खुश.
16: अच्छा, है. मैं डर रही थी कहीं, मुझे डर लग रहा था कि कहीं आप गुस्सा ना हो जाओ इसलिए आप बोल रही है. बट थैंक यू सो मच कोमल.
2: एवरी साल कुछ नया हमने किया, मैं और मेरे हस्बैंड कुछ नया किया.
17: दैट्स रियली स्वीट.
2: अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर नहीं कर पाए, लेकिन या
16: इस साल भी दिवाली लाइट्स कंपटीशन रहेगा बाय द वे, आपको हम पहले से बता रहे हैं, बट अभी नहीं, थोड़े दिनों बाद रहेगा. थैंक यू कोमल, दैट वी रियली अप्रिशिएट योर कॉल, थैंक यू सो मच. तो बहुत बहुत शुक्रिया. देखो हमने जैसे शुरू किया तब कॉल्स नहीं आ रहे थे, अब कॉल आ रहे हैं, बट आज सिर्फ एक ही कॉलर को हम ले सकते हैं. अभी आपको इतना बता दें, और भी मौके जरूर मिलेंगे, सुनते रहिएगा अपनी अगली अपॉर्चुनिटी के लिए.
0: एक दिया एक कहानी ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून फूड्स विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस. फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीविन. बिग बाजार योर वन स्टॉप दिवाली सुपरस्टोर. शॉप ऑनलाइन एट bigbazaar.co.nz. इंडेलिबल होम्स योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सब डिविजन्स. विजिट indelibleholmes.co.nz. फाइनेंस वर्ल्ड योर ट्रस्टेड फाइनेंस एडवाइजरी इन साउथ ऑकलैंड. लोटस फॉरन एक्सचेंज गेटिंग मोर वैल्यू फ्रॉम योर मनी. अर्जुन सुपर मार्केट एंड फूड फॉर लेस लोकेटेड इन न्यू लिन एंड बॉटनी. सोना संसार परंपरा की चमक त्योहार की पसंद. शाइन आउट विद स्पेशल्स. विजिट सोना संसार पापा डोए एंड माउंट रॉस्किल. अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव. एंड PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 इयर्स. गूगल PFSL टुडे.

0: इस दुनिया में, बट साउथ अफ्रीका जो है एक ऐसी कंट्री है दैट हैज गॉट 3 कैपिटल्स.
1: ओह रियली,
0: क्या बकते हो?
1: मुझे नहीं पता था.
0: मुझे भी नहीं पता था
1: 3 कैपिटल्स कैसे?
0: 3 कैपिटल्स हैं. ऑफिशियल साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट वेबसाइट के मुताबिक प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लोमफंटेन सर्व एज द कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल कैपिटल्स रेस्पेक्टिवली. प्रिटोरिया जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है और ब्लोमफंटेन जो है जुडिशियल कैपिटल है ऑफ साउथ अफ्रीका. तो साउथ अफ्रीका इज वन कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके पास एक नहीं बल्कि 3 कैपिटल्स हैं.
1: इंटरेस्टिंग. शायद आपको भी आज से पहले ये नहीं पता था, तो आपने भी सुनते हुए क्या बकते हुए कहा हो. बट नेवरदलेस 4 मिनट हो रहे समय हमारे स्टूडियोज में, वैसे 9:00 व्हाट्स गोइंग ऑन आपके लिए हम लेकर आते हैं इस घंटे. थोड़ी देर बाद देखेंगे बहुत से जगहों पर, इनफैक्ट नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है तो इसके तहत कहाँ कहाँ पर ये सेलिब्रेट हो रहा है और कैसे आप इसका हिस्सा बन सकते हैं. डिटेल्स व्हाट्सएप पॉकलैंड में आपके साथ हम जरूर शेयर करेंगे, जिसके लिए आपको हमारे साथ ही बने रहना है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको हम ये भी याद दिला दें कि आज आपको एक और बहुत ही बेहतरीन मौका हम दे रहे हैं कुछ बहुत ही अमेजिंग विटनेस करने का, और साथ ही साथ आपके लिए रहेगा एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी टू विन दिस. क्या है ये जानने के लिए हमारे साथ ही बने रहिए.

0: 8 मिनट हो रहे 9 बजकर नवरात्र का मौका है और नवरात्र के दौरान जैसे कि हमने कहा कि गरबा और डांडिया का चलन होता है, लोग इंजॉय करते हैं इसे. तो ऑन द ब्रेकफास्ट शो आपके लिए अब अगले नवरात्र के दिनों तक ऑन द ब्रेकफास्ट शो हम इस दौरान ऐसे कुछ नवरात्र के गाने जो लेकर आएंगे. इवन वी से नवरात्र के गाने, वी डोंट मीन रिलीजियस फोक सॉन्ग्स, वी मीन लाइक समथिंग
1: गरबा डांडिया डांस वाले.
0: हाँ, यस. तो चलिए आज ही से शुरुआत करते हैं.

0: दिस वन डांडिया के बहाने आ जाना,
1: मुझे नहीं पता वो गाना, ओ इट्स लाइक अ 90s वाला ना, आई थिंक उसमें काजोल है,
0: सुनील शेट्टी थे,
1: नहीं मुझे लगता है काजोल है, सुनील शेट्टी का मुझे याद नहीं, बट ऐसे बहुत से गाने यार, I mean,
0: मुझे वो गाना भले ही 90s का है बट आई एब्सोल्युटली लव दैट, और वो और एक है रंगतारी,
1: हाँ रंगतारी,
0: लव
1: लव यात्री के, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स जो है ये फ्रॉम आई मीन फ्रॉम लव यात्री, ये थोड़ा ऐसे नवरात्रि का जो गरबा फील वाले गाने है ना,
0: और वो गाना भी ना जो भी हमने पिछले घंटे प्ले किया था टॉप ऑफ द आवर,
1: कौन सा,
0: अरे यार उस उन्होंने मराठी में पहले गाया था
1: संजू राठौर,
0: हाँ वो साड़ी वाला ना,
1: वो तो पहला घंटे का गाना था, अच्छा, पिछले घंटे का नहीं था, हाँ,
0: हाँ, वही
1: पिछले घंटे हमने रे बावरी प्ले किया था,
0: ओके हाँ
1: राइट, तो चलिए अब आपके लिए ये एंजॉय कीजिएगा।

0: What's going on?
1: What's up?
0: What's up, Auckland?
2: क्या हो रहा है नवरात्रि के मौके पर श्री राम कृष्ण मंदिर पर सेलिब्रेशंस जो है ये कल से शुरू हो चुका है और मंगलवार 20 अक्टूबर तक चलता रहेगा। शाम 6 बजे से गरबा और डांडिया रास हर दिन कथा के बाद होती है।
3: और इसके अलावा आपको याद दिला दे कि श्री हनुमान मंदिर 14 बेपाक प्लेस बर्गडेल नोचो यहाँ पर भी नवरात्रि का पर्व जो है हर रात 6:15 पीएम से मनाया जाता है। इसमें आप जरूर शामिल हो सकते हैं। 8:10 पीएम से लेकर 9:30 पीएम तक के यहाँ पर डीजे गरबा होता है, जिसके बाद 18 अक्टूबर को याद दिला दे आपको 6:30 पीएम से भजन जैमिंग और डीजे गरबा जो है ये रहेगा।
2: नवरात्रि का पर्व श्री आदिशक्ति दुर्गा माता मंदिर पर 38A वॉम्सली रोड ओटाहूहू में मनाया जा रहा है रात 7 से लेकर 9 बजे तक।
3: और इसके साथ साथ माँ दुर्गा टेम्पल 4x3 ओन्स्लो एव यहाँ पर भी नवरात्रि का महोत्सव जो है ये मनाया जा रहा है। ये 19 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। हर रात यहाँ पर आप माता की चौकी जो है इसका सेवन कर सकेंगे 7 PM से, और कन्या पूजन जो है ये 18 अक्टूबर को और 19 अक्टूबर को अष्टमी जो है ये रहेगी, जिसमें कि आप जरूर भाग ले सकते हैं।
2: दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है द केव 5x57 कैवेंडिश ड्राइव मेनुकाउ में। वेयर हाउस के ठीक सामने शाम 6:30 बजे से पूजा आरंभ होती है और हर दिन कथा के बाद गरबा डांडिया हुद्दतासा और कई अन्य चीजें होती हैं जिनमें आप हिस्सा ले सकते हैं।
3: तो आपके आसपास भी एक नवरात्रि का पर्व जो है ये मनाया जा रहा है, जानकारियां अन्य लोगों तक अगर आप पहुंचाना चाहते हैं हमारे पास अपने जो कम्युनिटी रिलेटेड इवेंट्स है इनकी डिटेल्स आप ईमेल कर सकते हैं buzz@hum.fm.com पर buzz@hummfm.com पर। नाउ दूसरी ओर आपको ये भी याद दिला दे BR अंबेडकर स्पोर्ट्स कल्चरल क्लब लेकर आ रही है 34th एनुअल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल टूर्नामेंट। ये 24th एंड 25th अक्टूबर को रहेगा। ये 2-day इवेंट है जहां पर डिफरेंट रेंज ऑफ स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन जो है ये होंगे, जिनमें कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल और टग ऑफ वॉर जैसे जो स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन ये शामिल है। दे विल ऑल्सो बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू टेक पार्ट इन प्लेंटी ऑफ फन एक्टिविटीज जो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए यहाँ पर है, जिसमें लेमन एंड स्पून रेस, म्यूजिकल चेयर्स और बच्चों के लिए डिफरेंट रेसेस जो है ये भी होंगे। नाउ टू विटनेस दिस एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री, लेकिन अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो भी एंट्री बिल्कुल मुफ्त है, हालांकि आपको रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है। फॉर यू टू टेक पार्ट इन एनी ऑफ द स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन्स आपको कोई फी नहीं पे करना होगा, बट रजिस्टर ज़रूर करना है। और रजिस्ट्रेशन के लिए आप प्रदीप से बातें करें 021-238-5948 पर। और साथ ही साथ वर्ल्ड मेनोपॉज डे जो है संडे 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ग्लोबल पावर सर्ज एक फ्री ऑनलाइन इवेंट है जो आपके लिए लेकर आ रहे हैं द फर्स्ट फ्लाइट इन ऑटियरोवा न्यूजीलैंड, और आप इसका हिस्सा बन सकते हैं अगर आप इसमें पार्ट लेना चाहते हैं। तो आपको याद दिला दे आप रजिस्टर कीजिए फॉर एब्सोल्युटली फ्री globalpowersurge.com विजिट करते हुए। रिमेंबर globalpowersurge.com जो है ये विजिट करते हुए, और आप यहाँ पर जब जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। और 200 प्लेसेस जो है फर्स्ट मेनोपॉज चैंपियन कोहोर्ट जो है इसमें आप ले सकते हैं। दिस इज योर चांस टू एनरोल इन दिस फ्री प्रोग्राम फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड।
0: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।
4: हे देखो मैं आ गए।
5: 80s के रेट्रो गाने।

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Get there in Apex world-class comfort with Fiji Airways, where the luxuries start from the moment you book. Get fast-track security, extra baggage, and priority check-in. Once you're there, enjoy even more time to relax with resort check-in. Complete your flight check-in from various Fiji resorts with your luggage transported securely to the airport. Travel in style with one of the world's top 10 airlines. Visit fijiairways.com.
2: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
3: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
4: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279-9439 और विजिट legalassociates.co.nz.
5: A message for all parents. Kids age 12 and under can now ride their bikes on footpaths, and parents or caregivers can ride with them. Remember to look out for children on bikes when driving in and out of driveways. Learn more at nzta.govt.nz.

0: Your favourite parking app has changed names. The AT Park app is now the AC Parking app. It has a new name and looks a little different, but the way you park stays as easy as always. Your account, vehicles and login details stay the same too. To make it even more of a smooth ride, your app should have updated automatically or prompted you to do it. Search Auckland Council AC Parking for more. Tāmaki Turiki. All together, Auckland.
1: Save big at Rebel and get the family sorted for the summer season. Take 15% off all kids' Nike clothing. Their selected big brand kids and adults tees, two for $50. Plus, get 20% off selected bags and bottles. Summer value is on now, only at Rebel Sport. See you on T's and C's.
2: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
3: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
2: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
4: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800 4 NZPMI. Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle kijiye apna home loan of 500,000 ya usse zyada Finance World ke saath. And you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2, 5 days, 4 nights. Two lucky winners. Har eligible home loan of 500,000 ya usse zyada automatically aapko draw mein enter karta hai. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
5: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने हम
6: तेरी बेस है फाड़ू मेरी हाइज के लिए हम
7: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
8: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन बिग और स्मॉल ब्रिंग होम द फॉर्च्यून एंड हैरिंगटन लिविंग मोनाको बिग ऑन स्टाइल ग्रेट ऑन प्राइस परफेक्ट फॉर योर होम हैरिंगटन लिविंग मोनाको
9: The Breakfast Show with Vijay and Pooja आपके लिए जारी है. फिलहाल अब 22 मिनट हो रहे हैं 9 बजकर, और इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं कि क्या हम आपको बताएं. एक और नवरात्र, दूसरी ओर दिवाली की तैयारियां, हम पर फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून में $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस, और भी तमाम चीज़ों की तैयारियां चल रही हैं, जिनमें शामिल हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त फुटबॉल टूर.
10: और ये जो फुटबॉल टूर है ये होने वाला है यहाँ न्यूजीलैंड में.
9: यस, जो इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम है ये आ रही है न्यूजीलैंड के टूर पर. ये फर्स्ट टाइम है न्यूजीलैंड जो है, या इंडिया जो है न्यूजीलैंड में आकर सोका खेलने वाली है. फर्स्ट मैच जो है आज से ठीक एक महीने बाद,
10: ओके, आज से होगा
9: 12th of November को खेला जाएगा एट गो मीडिया स्टेडियम यहाँ ऑकलैंड में ही. और दूसरा मैच जो है ये क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा.
10: ओके,
9: आपको हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं टू विन अ डबल पास टू वॉच द मैच इन ऑकलैंड.
10: ओके,
9: यहाँ ऑकलैंड में जो मैच होगा उसके लिए एक डबल पास आप जीत सकते हैं और जाकर देख सकते हैं ऑल वाइट्स वर्सेस इंडिया.
10: राइट,
9: और आपको करना क्या है, आप जाएं हमारे फेसबुक पेज पर और वहां पर आपको फीचर्ड फोल्डर में एक पोस्ट जो है ये मिलेगा. और विन अ डबल पास ऑल वाइट्स वर्सेस इंडिया.
10: Okay.
9: तो आपको जो पोस्टर है ये मिलेगा, उसमें है यानी फोटो जो है ऑल वाइट्स वर्सेस इंडिया का वो मिलेगा. और उस पोस्ट में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, स्कोर्स जो है ये प्रिडिक्ट करना है कि इंडिया और ऑल वाइट्स के बीच में स्कोर क्या होगा. ये प्रिडिक्शन जो है ये आपको करना है और ये शानदार इनाम आप जीत सकते हैं, अ डबल पास. अपने किसी एक दोस्त को, फैमिली को, किसी को भी टेक करें और प्रिडिक्ट करें द फाइनल स्कोर.
10: राइट,
9: एंड यू बिकम पार्ट ऑफ द ड्रॉ. ड्रॉ जो है ये बहुत जल्द होने को है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं होगा, सो यू नीड टू डू दैट नाउ. विजिट आवर फेसबुक पेज, फीचर्ड फोल्डर में विन अ डबल पास ऑल वाइट्स वर्सेस इंडिया ये पोस्ट आप मिलेगा. अपने किसी एक फैमिली फ्रेंड को या फैमिली को या फ्रेंड को टेक कर दें एंड प्रिडिक्ट द फाइनल स्कोर ऑफ दैट मैच.
10: राइट, तो बस आप टेक कीजिए, स्कोर बताइए आपके हिसाब से क्या रहेगा, और बदले में आप ड्रो में शामिल होकर एक डबल पास जीत सकते हैं एंड विटनेस द मैच दैट विल हैपन ऑन द 12th ऑफ नवंबर एट गो मीडिया स्टेडियम इन ऑकलैंड। तो फुटबॉल अगर आपको पसंद है, दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम, एक हिस्टोरिकल मोमेंट का हिस्सा आप भी बन सकते, क्योंकि पहली बार अगर इंडिया आ रही है न्यूजीलैंड फुटबॉल खेलने के लिए, तो ऑफकोर्स ये ऐतिहासिक है ही। क्या सुनील छेत्री आने वाले?
9: नहीं, वो नहीं आएंगे ना मेरे ख्याल से।
10: अच्छा, ओके, because
9: has he taken retirement from football?
10: I don't know,
9: check करना पड़ेगा।
10: हाँ, but because he is one person जिनको अगर जिनकी journey देखी जाए when it comes to Indian soccer, Indian football, he is one person who is you know spoken about it very openly, promoted it very proudly, represent भी किया है इन्होंने you know India को on international levels as well when it comes to football, and अगर वो आते तो I mean not that की Indian football team is coming is not a big deal, of course it's a big deal, but him joining the team would have been like चार चांद।
9: अभी तक All Whites और India के बीच दो बार matches हुए हैं, एक बार दोनों टीमें 1981 में nil all से बराबर थी।
10: 1981? हाँ, okay।
9: और 2018 में जो match हुआ था उसमें All Whites की जीत India के खिलाफ 2-1 से हुई थी।
10: Wow।
9: So this time around 2026 न्यूजीलैंड में ये पहली बार वो आ रहे हैं। इससे पहले आई थिंक दे हैव कम अक्रॉस, दे हैव गोन टू फिजी, फिजी से इंडियन, दैट वाज द लास्ट टाइम इंडियन सोकर टीम जो है दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में आए थे सोकर खेलने के लिए। सो अब अपॉर्चुनिटी है आपके पास, बहुत ही रेयर ओकेजन ऐसा होता है, सो इस ओकेजन का आप जरूर हिस्सा बने। विजिट आवर फेसबुक पेज, जो कंपटीशन पोस्ट है उसके कमेंट सेक्शन में किसी को टैग करें और फाइनल स्कोर प्रिडिक्ट करें, लगे हाथों पोस्ट को लाइक भी कर ले तो और अच्छा होगा।
10: एब्सोल्युटली, चले इसी के साथ साथ अपनी आप भी अपनी एंट्रीज जो है रजिस्टर कराइए फेसबुक पेज विजिट करते हुए, और जिस दिन ड्रॉ होगा उस दिन तो आपको जरूर उससे पहले कॉन्टेक्ट किया जाएगा ताकि पासेस आपको मिल जाए और आप भी इस बहुत ही हिस्टोरिकल और अमेजिंग मोमेंट का हिस्सा जो है ये बन सके। तो चलिए आपके लिए और भी डिटेल्स थोड़ी देर बाद हम लेकर आने वाले हैं, डेली राउंड अप भी आपके लिए रहेगा इन अ वाइल।
11: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
12: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ, मैं लाऊं अपना ए गेम।
11: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: some amazing collaborations जो over the past years हुए हैं उनमें से एक ये रहा 2023 में जहां दिलजीत दोसांझ और सिया a very well known international artist जो है इन्होंने collaborate किया था और ये गाना हस हस आपके लिए लेकर आ रहे थे और ये Chartbusters में आज हमने आपके लिए पेश किया by the way एक खबर जो है ये आई है and it is something that just happened over the weekend जहां पर इमरान खान पता है आपको याद है वो
1: जिन्होंने सुना मैंने
0: जाने तू या जाने ना में काम किया था द वेरी फर्स्ट मूवी ही इज आल्सो वेरी पॉपुलरली नोन एज आमिर खान नेफ्यू तो इन्होंने इनफैक्ट एक प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया जिसके चलते इनको डिटेन किया गया था बाय दी मुंबई पुलिस लेकिन उससे पहले चलिए आपको पूरा जो डिटेल है ये देते हैं अपेरेंटली अकॉर्डिंग टू द पुलिस कहा गया है कि एक अनऑथराइज प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें इमरान खान अलॉन्ग विद हिज गर्लफ्रेंड नेखा वाशिंगटन और उनकी कजन जैन मरी खान जो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था And they were joined by a mass gathering at South Mumbai's August Kranti Maidan. ये जो gathering है ये in solidarity with a New Delhi demonstration हुआ था organized by the Cockroach Janta Party यानी CJP. Protesters जो है वो demand कर रहे थे the resignation of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar over controversy surrounding a special intensive revision of electoral rolls. और इसके चलते कहा गया है मुंबई पुलिस ने एक यू नो जो स्टेटमेंट है ये रिलीज़ किया कि ये जो ऑर्गेनाइजर्स हैं दे हैड नॉट ऑब्टेन्ड द रिक्वायर्ड लीगल परमिशन ताकि वो ये रैली जो है दैट पर्टिकुलर लोकेशन कर सके अथॉरिटीज़ ने स्टेट किया दैट अकॉर्डिंग टू बॉम्बे हाई कोर्ट डायरेक्टिव्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस इन द सिटी आर ओनली परमिटेड एट आज़ाद मैदान मेकिंग असेंबली एट ऑगस्ट क्रांति मैदान अनऑथराइज्ड जिसके चलते एक मैस डिटेंशन जो है ये हुए जिनमें आमिर माफ कीजिएगा इमरान खान के साथ करीबन 400 और प्रोटेस्टर्स थे जिन्हें कस्टडी में लिया गया बाय दी मुंबई पुलिस टू प्रिवेंट पब्लिक डिसऑर्डर और उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी इन्फोर्स किए थे और वेन्यू को क्लोज ऑफ भी किया था वैसे इस मामले में इमरान खान का कहना है कि वो इस पर्टिकुलर डिटेंशन से पहले उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट दिया सेइंग कि वो किसी भी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं ही सिंपली जॉइंड दिस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट ताकि एज अ कॉन्सेंट सिटीजन ऑफ मुंबई वो ये देख सके कि क्यों फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है इट इज़ बीइंग रिस्ट्रिक्टेड एंड क्यों लोगों को आज़ादी से अपनी राय रखने की यू नो या लोगों को अपनी राय रखने की आज़ादी जो है ये नहीं मिल रही है जिसके बाद चलकर उनको डिटेन किया गया और उनके साथ ही जो है उनको डिटेन किया गया इन्हें करीबन 2 घंटे तक अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स तक पुलिस व्हीकल में ड्राइव किया गया अराउंड और फिर बाद में सेफली छोड़ दिया गया रिहा कर दिया गया बेसिकली फॉलोइंग द इंसिडेंट मुंबई पुलिस जो है उन्होंने एक फॉर्मल फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी FIR जो है ये रजिस्टर किया है अगेंस्ट इमरान खान और उनके जो बाकी डेमोन्स्ट्रेटर्स थे अंडर दी भारतीय न्यायालय संहिता फॉर अनलॉफुल असेंबली एंड डिसोबीडियंस टू पब्लिक ऑर्डर
1: सो लेट्स सी अभी कॉकरोच जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं उन्होंने कहा कि उनका कैंपेन जो है कि रुकने वाला नहीं है अलेज्ड जो इलेक्शन फ्रॉड है उन सारी चीज़ों को लेकर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इट्स गोइंग टू कंटिन्यू जो भी होगा अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे
2: Mornings made better.
3: दो फ्राइंडा, चार टोस्ट, बटर, जैम और एक स्पेशल चाय.
2: The breakfast show with Vijay and Pooja.
4: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन
5: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations. 11 Boulderwood Place, Beery. Call 24/7 on 0927-88600.
6: इस Mental Health Awareness Week में एक पल निकाल कर देखिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं. Sleep, मूड, एपेटाइट या रूटीन में चेंजेस इसका साइन हो सकते हैं कि इमोशनल सपोर्ट मदद कर सकता है। आप किसी अपने से एक सिंपल चेक इन के साथ रीच आउट कर सकते हैं। एशियन फैमिली सर्विसेज फ्री कॉन्फिडेंशियल इमोशनल सपोर्ट देता है। एशियन हेल्पलाइन 0800-862-342 पर कॉल करें। अगर आप या आपका कोई जानने वाला इमीडिएट डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें।
7: Be in to win one of five $10,000 MyTitan gift cards. Zara socho, isse kya kya ho sakta hai? Apna ultimate backyard hangout bana sakte ho. Camping ka pura gear le sakte ho. Ek room ka makeover kar sakte ho. Ya apne garden goals ko reality banao. The possibilities are endless. Bas $20 ya se zyada spend karo. Apna receipt code online enter karo. And you are in the draw. Plus, club members get their entries doubled. T's and C's apply. Ends 1st November. Shop now at MyTitan.
8: The Cooperative Bank are in the house. Got that home dream, but don't know where to start? Deposit, pre-approval. How much can I borrow? Let's make a plan today for where you could be tomorrow. Talk to the Cooperative Bank's home loan crew. We got you.
9: रुजबे 2026 में ना बहुत काम कर लिया है, अब तो ब्रेक बनता है।
10: बिल्कुल, तो लेते हैं एक लग्जरियस हॉलिडे ब्रेक, बाली और बैंकॉक।
9: और आप भी चलिए सन टूर्स के साथ ईस्टर 2027 में।
10: बाली 6 दिन और बैंकॉक 5 दिन, कंप्लीट लग्जरियस हॉलिडे पैकेज। बुक कीजिए टिल दिवाली और पाइए फ्री 2 nights 3 days सिडनी टू सिडनी क्रूज पैकेज।
9: 2027 ईस्टर को बनाइए एक्स्ट्रा स्पेशल, बाली बैंकॉक और फ्री क्रूज।
10: बुक नाउ विद सन टूर्स।
9: कॉल करें 0800-478-688।
11: दिवाली आ रही है और फॉर्च्यून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका। लोटस मैनिकाओ, माउंट रॉस्किल या बोटनी एंड नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी टू फॉर्च्यून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश। साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट। बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो। फॉर्च्यून दिवाली, बी इन टू विन, एंड 15th November। टीज एंड सीज
12: Get fresh dinner deals at New World North Island, like skinless chicken breast fillets, $12.99 per kilo, and loose or truss tomatoes, $6.99 per kilo. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
13: When your car needs a service, bringing it into Midas instead of the dealer you bought it from stops your brain going down rabbit holes like, what else are they going to find in there?
14: Lots.
13: Will they word salad me into fixing stuff that doesn't need fixing?
14: Probably.
13: Am I paying for this free coffee?
14: Definitely.
13: Will they talk me into an upgrade?
14: Oh.
13: Ditch the dealer, bring it into Midas. Same great service and mates rates prices. Midas, the peace of mind motoring.
15: True Midas.
16: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle kijiye apna home loan of 500,000 ya usse zyada Finance World ke saath. And you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2, 5 days, 4 nights. Do lucky winners. Har eligible home loan of 500,000 ya usse zyada automatically aapko draw mein enter karta hai. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
17: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
18: What's going on?
1: 18 मिनट रह गए हैं अब 10 बजने में। डेली राउंडअप में तीन स्टोरीज हैं, जल्दी जल्दी मैं आपको बता दूं। साउथ ऑकलैंड ऑटोहूहू में हाई स्ट्रीट में एक घर में लगी आग में एक व्यक्ति की जान चली गई। फायर इमरजेंसी न्यूजीलैंड के 3 फायर ट्रक्स जो है इसने आग पर काबू किया, लेकिन पुलिस के मुताबिक मौके पर बचाए गए एक व्यक्ति को मेडिकल हेल्प दी गई, इसके बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। न्यूजीलैंड फेस्ट ने दोबारा सरकार में चुने जाने पर अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा को ख़त्म करके उसकी जगह शॉर्टेज लेड स्किल्ड वर्क वीज़ा लाने का ऐलान किया है। नई पॉलिसी के तहत विदेशी वर्कर्स को एम्प्लॉयर अक्रेडिटेशन के बजाय स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन, रीजन और जेन्युइन स्किल शॉर्टेज के आधार पर एंट्री मिलेगी। पार्टी का कहना है कि देश में लगभग 171,000 लोग अनएम्प्लॉयड हैं और पहले लोकल जो लोग हैं उनको काम और नौकरी, काम और ट्रेनिंग जो है ये मिलनी चाहिए। उधर एक पार्टी ने अपना फिजिकल प्लान जो है ये आम किया है, जिसमें डेट को कम करने, स्पेंडिंग घटाने और सुपर एनुएशन एज बढ़ाने, डिसेबिलिटी बेनिफिट्स में $653 मिलियन की कटौती करने का वादा जो है ये भी किया है।
0: और मेरी ओर से आज सिर्फ एक ही अपडेट, जहां पर न्यूजीलैंड फर्स्ट के लीडर विंस्टन पीटर्स ने कहा है कि द क्लेम दैट आइदर क्रिस्टोफर लक्सन या क्रिस हिपकिंस विल डिसाइड द नेक्स्ट गवर्नमेंट आर नॉनसेंस। उन्होंने कहा है कि अब जस्ट फ्यू डेज अवे फ्रॉम द इलेक्शंस फॉर 2026, 7 नवंबर को जबकि ये न्यूजीलैंड में होने वाला है, विंस्टन पीटर्स का कहना है कि पॉलिटिकल लैंडस्केप कुड लुक वेरी डिफरेंट वंस वोट्स जो है इन्हें काउंट किए जाएंगे। उन्होंने ये तक क्रिटिसाइज किया है कि जो फोकस हो रहा है फिलहाल ऑन द टू मेजर पार्टी लीडर्स, सेइंग कि न्यूजीलैंड का जो MMP सिस्टम है इसका ये मतलब होता है कि स्मॉलर पार्टीज कैन प्ले अ क्रूशियल रोल इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट। और उन्होंने यहाँ तक ये सवाल भी उठाए हैं कि जो राइवल पार्टीज फिलहाल अपनी पॉलिसीज को लेकर प्रॉमिस कर रहे हैं, कैन दे एक्चुअली अफोर्ड देयर इलेक्शन प्रॉमिसेस, क्योंकि न्यूजीलैंड का इकोनॉमिक ग्रोथ फिलहाल बहुत वीक है टू फंड देम ऑल, ये उनका कहना है।
1: तो ये आज का डेली राउंड अप आपके लिए रहा और हम
2: From the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your

0: by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction. Do
1: Baate. आज की पहली बात गौर करें इस पर कि हवाएं माफी मांग भी ले तो क्या, हवाएं माफी मांग भी ले तो क्या, टूटी हुई टहनी तो टूटी ही रहती है।
2: नाइस।
1: और दूसरी बात, सोच और पानी हमेशा साफ होना चाहिए।
2: ओके।
1: खराब पानी तबीयत बिगाड़ देता है,
2: खराब सोच
1: जिंदगी।
2: वेरी नाइस एंड वेरी ट्रू। चलिए इसी के साथ अब आपसे चाहेंगे इजाजत, जाने की जाने का समय हो रहा है। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच आप सभी के आज जो साथ आपने हमारे नाम किए उसके लिए, आपके कीमती समय के लिए भी। वादा यही, कल एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे ठीक सुबह 6 पर द ब्रेकफास्ट शो विद विजयन पूजा लेकर हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। तब तक के लिए एंजॉय योर मंडे एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। एंड पेरेंट्स, डोंट मिस योर किड्स अलॉट, क्योंकि वो तो शायद स्कूल में एंजॉय कर रहे होंगे और शाम को वापस आए तो ज़रूर फीडबैक लीजिएगा। टॉक टू देम, स्पेंड टाइम विद देम, फाइंड आउट उनका दिन कैसा गया, वापसी स्कूल के साथ उनकी कैसी रही।

0: जो कि आ रही है।
1: My time with Kashika.
2: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल। हाउ आर यू? स्टूडियो की घड़ी में समय सुबह के 10:03 हो चुके हैं। आपका साथ निभाने के लिए मैं काशिका आ चुकी हूँ आपकी रिमाइंडर क्लॉक बनकर, ये बताने के लिए आपके लिए आपका खुद का समय कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये कुछ समय जो आप अपने लिए निकालते हैं ना, उससे बेहतर, उससे बढ़कर कुछ नहीं होता। और आपके लिए अब इससे बेहतर कुछ नहीं है कि फेस्टिव सीज़न शुरू हो चुका है। ऐसे में आपको पता है कि मच अवेटेड फेस्टिवल ऑफ द ईयर, द मोस्ट फेवरेट फेस्टिवल, दिवाली बिल्कुल हमारे पास आ चुका है। और ऐसे में ये

बिग बी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे कल, एंड ऐसे में मैंने सोचा एक दो गाने उनके लिए बजा ही डालूं, अपनी तरफ से एक डेडिकेशन दे ही डालूं। आपका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे।

0: திருகிடுதாம்.
1: எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அட்டா, एक्सपर्ट्स अड्डा में आज लीगल एसोसिएट से मेरे साथ तो ऑलरेडी यहाँ पे सवाल आ चुका है एंड आई हैव द एक्सपर्ट वेरी मच ऑनलाइन विद मी. फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू राज प्रदीप सिंह जी फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स. हाउ आर यू सर? गुड मॉर्निंग
2: ऑल योर हम एफएम लिसनर्स.
1: कैसे हो सर?
2: वेरी गुड. Weather is a little wet, otherwise everything is very good.
1: absolutely. अच्छा, मेरे पास एक सवाल आया सर, और मैंने सोचा मैं आपसे बात करके पूछ ही लेती हूँ ये कि you know, इन्हें options चाहिए कि किस तरह से आप parents को यहाँ पर बुला सकते हैं. So कुछ आपके पास?
2: Yeah, that's right, Kashika जी, ये काफी query तकरीबन हमारे पास भी week में 2-3 आती रहती हैं. Especially about you know parents visas के क्या option है. It's not about mainly residence visa, but even you know how they can spend maximum time with their children in New Zealand. तो parents के लिए सबसे ऊपर तो of course residence visa options are there if they meet जो लोग यहाँ पे रेजिडेंट वीजा होल्डर हैं या सिटीजन हैं, तो वो लोग जो 3 साल से हैं, तो वो रेजिडेंस वीजा पे अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं अगर उनकी इनकम क्राइटेरिया मीट करती है. 3 साल से न्यूजीलैंड में है वो रेजिडेंट वीजा पे, चाहे वो लाइक उनके बच्चे हैं, लाइक 2 बेटे हैं, बेटा बेटी हैं, या उनकी इन लॉ है या सन इन लॉ है, एनी 2 इनकम कैन सपोर्ट देम. और इसमें सबसे बड़ी बात ये होगी है अभी जिस डेट से आप अप्लाई करोगे उसी डेट के हिसाब से वो आपका नंबर आएगा. एंड स्टिल दे गॉट यू नो 10% बैलेट एज वेल, लाइक लॉटरी भी उसके अंदर अभी भी है. तो वो अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है कि दे कैन पुट, और उसके हिसाब से उनका जो क्यू में नंबर आएगा तब वो दे विल रिसीव द इनविटेशन. तो ऑफकोर्स इसके अंदर हेल्थ करेक्टर, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, वो सारी चीजें चाहिए होती है.
1: हाँ जी.
2: अब एंड आई टोटली अंडरस्टैंड, सो मेनी लोग हैं जो रेजिडेंट हैं यहाँ पे लेकिन उनकी इनकम उनके पेरेंट्स के जो वीजा रेजिडेंस वीजा स्पॉन्सर करते उतनी नहीं है. तो ऑफ कोर्स मेन इज फॉर देम. या जो लोग यहाँ पे 3 साल से कम पे हैं रेजिडेंट वीजा उनके लिए, या बहुत से लोग यहाँ पे एक्रेडिटेड एम्प्लॉय वर्क वीजा या स्टूडेंट वीजा पे हैं, वो भी पूछते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को किस तरह से इन्वाइट कर सकते हैं. तो ये बाकी ऑप्शंस उनके लिए हैं. सबके लिए एक है अप टू 9 मंथ्स का जनरल विजिटर वीजा. इसमें जो रेजिडेंट ऑफ कोर्स वो स्पॉन्सर कर सकते हैं, जो रेजिडेंट नहीं है वो लोग सपोर्ट कर सकते हैं. मींस अपना जो टेंसी एग्रीमेंट है, अपना बैंक स्टेटमेंट है, अपने यहाँ का कोई वीजा उनका, उनके साथ के वी वांट कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, चाहे दोनों आए या अकेले आए, मदर या फादर, कि वो हमसे मिलने आए, विजिट करने आए अप टू 9 मंथ्स. सो दे कैन अप्लाई देयर वीजा ऑन दैट. जो दूसरी ऑप्शन है वो सिर्फ रेजिडेंस वीजा वालों के लिए है, वो है 3-year मल्टीपल एंट्री पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स वीजा. तो उसके अंदर ऑफ कोर्स उनका मेडिकल या पीसीसी लगता है, देन दे कैन अप्लाई फॉर 3 साल का वीजा. उसके अंदर इनकम क्राइटेरिया नहीं है, स्टिल दे कैन स्पॉन्सर, और उनको 3 साल में 6-6 महीने का मल्टीपल एंट्री विजिटर वीजा मिलता है. एक और है जो ऑफकोर्स रेजिडेंट वीजा के लिए है, और जिनकी इनकम ज्यादा है जो चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स उनके साथ रहे, तो वो 5 साल का वीजा है जिसको पेरेंट बूस्ट वीजा कहते हैं. लेकिन अगेन वो इनकम के बेस पे है. अगर जो न्यूजीलैंड स्पॉन्सर है उनकी इनकम अच्छी है, उसमें भी 2 लोग उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं मिलके अपने पेरेंट्स को, तो वो भी मेडिकल पीसीसी और उनकी इनकम के हिसाब से, इंश्योरेंस पेरेंट्स की इसके अंदर जरूर चाहिए, उनके हिसाब से वो अप्लाई कर सकते हैं. अगेन आई कैन अंडरस्टैंड, जैसे मैंने बोला कि मैं सबके लिए वी कैन डू, वेदर कोई यहाँ पे चाहे एक्रेडिटेड एम्प्लॉय वर्क वीजा पे, पार्टनरशिप वीजा पे, या ओपन वर्क वीजा पे, इवन दे कैन इन्वाइट देयर पेरेंट्स है, और जो रेजिडेंट या सिटीजन है वो लोग भी इन्वाइट कर सकते हैं. लॉट्स ऑफ ऑप्शन जो हमें सुन रहे हैं, ऑफकोर्स आपको पता उनकी सबकी सिचुएशन डिफरेंट है, एंड अगेन केस बाई केस बेसिस दे कैन डिस्कस विद अस एज पर देयर इनकम और एज पर देयर वीजा.
1: आप चले जाएंगे आपको ऑनलाइन बुक करने का मौका मिलेगा, वेदर इट्स इन ऑकलैंड और इन हैमिल्टन. सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे राज जी.
2: थैंक यू कशिका जी.
1: बाय.
3: माय टाइम विद कशिका.
4: आजकल चल रहा है बहुत न्यूज में, आप भी तो नहीं.
5: हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
0: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
5: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
0: इंटरेस्टिंग। और कुछ?
5: बस इतना ही।
0: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
3: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु कंडोला, a household name in finance and insurance industry, and Fortune. Bring home the fortune.
6: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free, and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply. कॉमनवेल्थ वॉल्ट आपके प्रेशियस बिलोंगिंग्स को रखता है सेफ और सिक्योर। गोल्ड, बुलियन और प्रेशियस मेटल्स की वैल्यू जब ऑल टाइम हाई पे है, तब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके एसेट्स थेफ्ट और नेचुरल डिजास्टर से प्रोटेक्टेड रहें। जब आप अपने वैल्यूएबल्स कॉमनवेल्थ वॉल्ट को इंट्रस्ट करते हैं तो आपको मिलता है पीस ऑफ माइंड, ये जानते हुए कि वो सेफ, सिक्योर और प्रोटेक्टेड रहेंगे। कॉमनवेल्थ वॉल्ट, सिक्योरिंग योर वैल्यूएबल्स फॉर अ लाइफटाइम एंड बियॉन्ड। डिटेल्स एट commonwealthvault.go.nz. That's commonwealthvault.go.nz.
7: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
8: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited, trading as Assure One, is a licensed financial advice provider.
9: Glad I got my enrollment sorted the other day. See, mate, I told you it was easy.
10: Enrollment for voting? I still haven't done mine. The election isn't until November. I've got time, right?
9: No, not this year. You need to be enrolled by the 25th of October. You can't enroll and vote on the same day.
10: Really? What if I miss it?
9: Well, your vote won't count for this year's election.
10: Achcha, you've convinced me. I'll enroll tonight.
11: Last chance to enroll is midnight 25 October. Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
12: दिवाली आई, खुशियाँ लाई, PFSL स्पेशल ऑफर लेकर आया है। अपने ड्रीम होम का सपना सजाएं, PFSL के साथ होम लोन करवाएं, $400,000 या उससे ज्यादा का एलिजिबल लोन सेटल करें और $250 का गिफ्ट कार्ड घर ले जाएं। 50 इंच टीवी के लकी ड्रॉ में भी एंट्री पाएं। तो इस दिवाली खुशियाँ बढ़ाएं, PFSL के साथ अपना ड्रीम होम सजाएं। सर्च PFSL और कॉल ऑनलाइन 8469934। टर्म्स एंड कंडीशंस एंड लेंडिंग क्राइटेरिया अप्लाई।
13: Octopus factory farms in New Zealand? Sounds unthinkable, but your tax dollars have been funding the research. Sign the petition and keep octopuses wild. Go to banoctopusfarming.co.nz.
14: Make the most of your deck with a stylish louver from Trade Tested. From tiny decks to massive decks, we've got a louver that'll suit you. Easy to put together and unbeatable value starting at only $3,000. Make your backyard great at Trade Tested today.
15: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल, 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री, परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी डिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए, या बस सीधा कप से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस, ऑलवेज देसी। अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड। ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन, कशिश नेचुरल योगर्ट।
3: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
16: Office shout out.
1: Of course, office shout out में आज the golden vagar queen आप मीनाक्षी मुझे सुन रही हैं और आप फास्टिंग के फूड भी बना रही हैं, और क्या बात है, हाँ नवरात्रि है, ऐसे में फास्टिंग का फूड आपका डेफिनेटली डेफिनेटली रेडी होता होगा, लेकिन साथ में आप के आपको एक मौका दे देती हूँ जहाँ पे आप इस समय हम कर रहे हैं सब लोग $1,000 वर्थ का हैरिंगटन लिविंग का होम डेको या फर्नीचर वाउचर। एक विनर हम ढूंढ रहे हैं जिसे मिलने वाला है हैरिंगटन लिविंग मैनकाओ की ओर से ये वाउचर। वहाँ इस समय स्प्रिंग सेल चल रही है, ब्यूटीफुल फर्नीचर है, 60 मंथ्स का इंटरेस्ट फ्री, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई की जाती हैं। हैरिंगटन लिविंग मैनकाओ आप पहुँच सकते हैं। वैसे हम rova.nz पर आप हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस समझना भी चाहें तो समझ सकते हैं। मैं अगला दो गाने बजा रही हूँ और दो गाने तक आपके लिए इतना मौका मैं लेकर आ रही हूँ जहाँ पर आपको लिखना है HL, स्पेस देना है और आपको लिखना है ऐसा कौन सा फर्नीचर जाके आप हैरिंगटन लिविंग से पिक करने वाले हैं। तो आपका टाइम शुरू होता है अब और बस 5 मिनट, ओके? अपना नाम लिखना मत भूलेगा। रिमेंबर, हैरिंगटन लिविंग का शॉर्ट फॉर्म है HL। आप कौन सा फर्नीचर पिक करना चाहेंगे या होम डेकोर, और साथ में आपको लिखना है अपना नाम।
3: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: My time with Kashika.
1: Wow.
2: How?
1: Adbhut.
2: Are you ready? Chatbusters.
3: Thoda sa hall bana de.
0: Brought to you by Lifestyle Furniture, Manuko, Mount Wellington and Westgate. Up to 60% off on now.
4: 12 नवंबर के दिन आपको बता देती हूँ कि क्या होने वाला है. ऑल वाइट्स जो है फुटबॉल के फैंस रेडी हो जाइए डबल पास जीतने के लिए. आप ये न्यूजीलैंड फुटबॉल में आपको मौका मिलने वाला है टू गो लाइव एंड वॉच दिस. इफ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस एक्शन हमारे फेसबुक के पेज पे आप आ जाइए, टैग कीजिए अपने फ्रेंड को, प्रिडिक्ट कीजिए स्कोर एंड यू विल बी इन द ड्रॉ टू विन. द गेम विल बी अनाउंस्ड बाय ऑनररी मार्क मिशेल एज पार्ट ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स विजिट. उस समय ये बात हुई थी डिसाइड. और यस ऑल वाइट्स 12 तारीख को चाहिए फेसबुक के पेज पर.

0: बीट ऑफ बॉलीवुड
1: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
2: वैसे नवरात्रि के मौके पे बहुत सारे ऐसे स्पेशल्स चल रहे हैं जो आप जाके जहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। रामकृष्ण मंदिर में नवरात्रि की सेलिब्रेशन है, श्री हनुमान मंदिर में आदि शक्ति दुर्गा मंदिर, दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट, माँ दुर्गा टेम्पल में, श्री राम मंदिर में भी ये बहुत सारी सेलिब्रेशन चल रहे हैं। B.R. अम्बेडकर स्पोर्ट्स क्लब 34th एनुअल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल टूर आपके लिए एक टूर्नामेंट करें 24th एंड 25th को। कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टग ऑफ वॉर, आप प्रदीप से संपर्क करें 0212385948। ग्लोबल पावर सर्च जो है ये होने वाला है, मेनोबॉस ग्लोबल प्रेजेंट आपके लिए करने वाले हैं। ऑनलाइन एक इवेंट है जो द फर्स्ट लाइट ऑफ आउटरोआ आपके लिए लेकर आ रहे हैं, सन अराउंड द वर्ल्ड, और यहाँ पर आप को इनरोल कर सकते हैं फॉर दिस फ्री प्रोग्राम। ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, इसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी ऑन menobossglobal.com पर। बाय द वे अश्विन, सनिल, अंतप्रीत, अश्विन आनंद, चंद, शरण, सुनील एंड दविनेश, आपका नाम मैंने ड्रॉ में ऐड किया।

0: ईट बेटर लिव बेटर एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से न्यूजीलैंड के कस्टम सर्विसेज के जो ई गेट्स हैं देयर डाउन एट बोथ डिपार्टिंग एंड अराइवल्स एट ऑकलैंड एयरपोर्ट और न्यूजीलैंड कस्टम सर्विस सिस्टम के जो पासपोर्ट कंट्रोल के एक्सपीरियंस जहां चल रहे हैं काफ़ी डिले चल रहा है तो उनकी टीम इस पर क्लोजली काम कर रही है. ट्रैवलर्स से इंकरेज किया जा रहा है टू चेक द ईमेल्स और एयरलाइन ऐप कोई अपडेट के लिए फॉर द एयरलाइंस और देयर फ्लाइट डिटेल्स.
1: मन फूला फूला मेरे जगत में कैसा रहता रे.
2: हर दिन की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते. आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने.
1: गणराज गजानन जाऊंगा.
2: हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं. हम फीजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने.
3: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम.
4: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
3: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है.
4: और पता है मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है.
3: और दैट्स नॉट गुड. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर. और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं.
5: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111. रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18.
6: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे.
7: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं. डेवलप करना बेहतर लगता है पर पैसों का डर है.
6: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं.
8: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है. आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए. NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस. कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI.
9: इस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक में एक पल निकाल कर देखिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं. स्लीप, मूड, एपेटाइट या रूटीन में चेंजेस इसका साइन हो सकते हैं कि इमोशनल सपोर्ट मदद कर सकता है. आप किसी अपने से एक सिंपल चेक इन के साथ रीच आउट कर सकते हैं. एशियन फैमिली सर्विसेज फ्री कॉन्फिडेंशियल इमोशनल सपोर्ट देता है. एशियन हेल्पलाइन 0800-862-342 पर कॉल करें. अगर आप या आपका कोई जानने वाला इमीडिएट डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें.
10: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
11: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
12: विदेश से लोगों को यहाँ काम करने के लिए अब एम्प्लॉयर अक्रेडिटेशन कंपलसरी हो गया है. इमिग्रेशन के नए रूल्स और परेशानियों से बचने में आपको मदद करेंगे ओकलैंड साउथ इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के अतीश नारायण. अपॉइंटमेंट्स के लिए फोन करें 0800-168-472 पर. अतीश नारायण और उनकी टीम आफ्टर आवर्स और वीकेंड्स पर भी अवेलेबल रहते हैं. फॉर मोर डिटेल्स विजिट देयर वेबसाइट ISIC.co.nz.

0: सॉवरेन वेल्थ वॉल्ट आपके प्रेशियस बिलोंगिंग्स को रखता है सेफ और सिक्योर. गोल्ड, बुलियन और प्रेशियस मेटल्स की वैल्यू जब ऑल टाइम हाई पे है, तब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके एसेट्स थेफ्ट और नेचुरल डिजास्टर से प्रोटेक्टेड रहें. जब आप अपने वैल्यूएबल्स कॉमनवेल्थ वॉल्ट को इंट्रस्ट करते हैं, तो आपको मिलता है पीस ऑफ माइंड ये जानते हुए कि वो सेफ, सिक्योर और प्रोटेक्टेड रहेंगे. कॉमनवेल्थ वॉल्ट, सिक्योरिंग योर वैल्यूएबल्स फॉर अ लाइफटाइम एंड बियॉन्ड. डिटेल्स एट commonwealthvault.co.nz. That's commonwealthvault.co.nz.
1: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
2: ड्रीम डायरी के मैं बारे में बात करती हूँ. तो देखो, नवरात्रि का ये मौका है. जब नवरात्रि का मौका होता है तो आपको सपना आए कि आप डांस कर रहे हैं. अरे भाई, ऑफ कोर्स ये नवरात्रि का मौका है, बट डांसिंग इन ड्रीम्स ये सिंबलाइज करता है स्पिरिचुअल फ्रीडम, इमोशनल फ्लो, हार्मनी ऑफ लाइफ फोर्स. किस तरह से आप कनेक्शन करते हैं टू योर हायर सेल्फ. ये जो ड्रीम होता है, स्पिरिचुअल, कल्चरल, रिलीजियस ट्रेडिशंस को लेकर आपको इस तरह के सपने आते हैं. द एक्ट ऑफ डांसिंग इन अ ड्रीम ये बताता है योर डायरेक्ट मूवमेंट, एज आपका जो मैसेज है, जो एक सबकॉन्शियस में डिवाइन एक्सपीरियंस है, उसके बारे में ही बात करता है. तो चलिए, आपको अब दिल से दिल तक की तरफ एक बहुत ब्यूटीफुल से ट्रैक की तरफ लेके चलती हूँ, जो अमिताभ बच्चन जी के वन ऑफ द मोस्ट बड़ी माइलस्टोन मूवी थी. एंड आई थिंक वी ऑल जस्ट टोटली लव्ड हिम इन दिस मूवी. आई एम श्योर बहुत से लोगों को बहुत सारी बातें अच्छी लगती होंगी. तो चलिए, फिलहाल ये
1: दिल से दिल तक. अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स. फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800-4NZPMI.
2: वैसे आपको बता देती हूँ, टाइमलेस रामायण एक जो क्लासिक है, रामायण एक गाथा, ये 2-3 मिनट की एक स्टोरी आपके लिए मेमोरेबल जो है, हम आपके लिए लेते आएंगे. ज़रूर आप इस फेस्टिवल ऑफ लाइट्स में इन कहानियों को सुनिए, सुनाइए और जेनरेशंस तक इसे आप बताते चले जाइए.

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक

0: यू बाई 0800 रचना. इधर उधर जाने से बचना. कॉल करो 0800 रचना. दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन.
1: अगले घंटे पर न्यूज के बाद मैं आपकी कॉल लेने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास $300 कैश जीतने का एक सुनहरा मौका है. आपका नाम ड्रॉ में ऐड करने वाली हूँ. यू हैव टू जस्ट डू मी अ फेवर. आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू इन द नेक्स्ट आवर. लेकिन तैयार रहेगा अपने फ़ोन कॉल्स करने के लिए. इस पिक्चर का कमाल था, अग्निपथ में अमिताभ बच्चन जी वॉज सुपर्ब.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: It feels like 17 degrees and the highs of 20, overnight temperature 14. Aaj ka temperature bataya ja raha hai. साउथ की तरफ फांगापुरोहा वहाँ पर हैवी रेनफॉल जो है वो चल रही है और हो सकता है इस दोपहर तक ईज हो जाए. वेस्ट इंडीज आपका साथ दे रहे हैं 7:35 पर सनसेट.

और नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल। हाउ आर यू? स्टूडियो की घड़ी में 11:03 एक्चुअली अगर देखे जाए बात करते करते 4 मिनट हो गए हैं आपका साथ निभाते हुए। 12 बजे तक मेरा आपका साथ बना रहेगा। कशिश फूस के सौजन्य से ये मुमकिन हो जाता है। आपका बर्थडे एनिवर्सरी है तो वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड अ वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। ऑल राइट, और टाइम आ रहा है जहाँ थोड़ी देर बाद मैं आपकी एंट्रीज लेने वाली हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप कुछ बताएं हमें, आपकी ज़िंदगी में ऐसे कौन हैं जो आपकी लाइफ के दिया बने हुए हैं।

0: मेरे पिताजी कहते हैं कि दारू पीने से लिवर खराब होता है, और मैं कहता हूँ कि बोल बच्चन से कुछ खराब नहीं होता।
1: नौटंकी गड़ी गड़ी ड्रामा करता है। अरे ऐसे ही बोल बच्चन करता रहेगा तो आसमान से गिरेगा, खजूर में अटकेगा।
2: या फॉलिंग फ्रॉम स्काई स्क्रेपर हैंगिंग इनटू ड्राई फ्रूट।

0: यू सी सर, द होल कंट्री ऑफ द सिस्टम ये है कि हम फिल्म में है नहीं, सिर्फ नाम है हमारा बच्चन।
1: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट।

0: better. Eat better, live better, and I will only say that win better. क्योंकि मैं चाहती हूँ इस दिवाली में आप अब मुझे कॉल करें 0800 00 हम पर. मैं चाहती हूँ किसी एक ऐसे, आपकी फैमिली मेम्बर नहीं होना चाहिए, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जो आपको इंस्पायर कर चुके हैं. शायद आपकी ज़िंदगी में वो एक दिया बनकर आए हैं, और वो दिया जब बनकर आए हैं वो उन्होंने आपको रोशनी दिखाई और आप देखिए कितने आगे निकल कर आ गए. सो मैं चाहती हूँ आप उन्हें अप्रिशिएट करें, उन्हें एक शाउट आउट दें. 0800 00 4866 पर मुझे कॉल करें एंड आई विल एड योर नेम टू द ड्रॉ. एंड आई हैव रिसीव्ड माय फर्स्ट कॉलर. ओके, लेट मी टेक दिस कॉल एंड सी. हम गुड मॉर्निंग, किनसे बात हो रही है? हेलो, ओ सॉरी, माय फॉल्ट.
1: हेलो,
0: हाँ जी हाँ जी, किनसे बात हो रही है? सॉरी,
1: सनील है कशिका जी.
0: हाँ सनील, कैसे हैं?
1: ठीक ठीक हूँ, आप कैसे हो?
0: मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए कौन है ऐसे?
1: She is my wife.
0: अच्छा, मैंने बोला भाई फैमिली मेंबर नहीं हो सकता.
1: ओह, फैमिली मेंबर नहीं हो सकता.
0: ओके ओके ओके. कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई आपके ऑफिस का हो सकता है, चलेगा? बताइए कोई ऐसा.
1: ओह अच्छा, हाँ मेरा दोस्त है एक जो वो मेरे को बहुत इंस्पायर हुआ है.
0: ओके, वेरी गुड. और क्या नाम है उनका, क्या किया उन्होंने आपके लिए?
1: उसका नाम है रोमित.
0: रोमित, ओके.
1: जी हाँ हाँ.
0: ओके, और क्या किया खास आपके लिए उन्होंने?
1: ओ, जब मैं इधर न्यूजीलैंड आया तो मेरे बाद वो आया, फिर मैं थोड़ा हार्ड टाइम पे था तो उसने मेरे सभी टाइम पे मेरे को मदद किया, हर एक टाइम पे. जब मेरे को नीड था और उसने मेरा साथ सभी टाइम दिया जब हार्ड टाइम से मैं गुजर रहा था ना.
0: ओके, कहाँ के रहने वाले हैं आप वैसे, कब कहाँ से?
1: फिजी.
0: आप फिजी से हैं, नौसारी के हैं. तो अब तो सब ठीक है ना?
1: अभी तो सब ठीक.
0: ग्रेट, थैंक यू सो मच. मैंने आपकी आपकी डिटेल्स ले ली है. थैंक यू, बाय बाय.
1: थैंक्स.
0: हम गुड मॉर्निंग, किन से बात हो रही है?
2: गुड मॉर्निंग, मैं संगीता बोल रही हूँ. एंड हाउ आर यू?
0: आई एम गुड संगीता, आप कैसी हैं?
2: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. मैं अपनी इंस्पिरेशन मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं वे बैक इन 1996 पढ़ाती थी.
0: wow.
2: अब वो दोनों बच्चे सेटल्ड हैं एज कपल इन ऑस्ट्रेलिया, चक्षु एंड नितिन. एंड इस एज में उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि मैम, यू बीन द बेस्ट टीचर वी एवर हैड, वी वांट यू टू कोच आवर स्टूडेंट्स नाउ.
0: ओह माय गॉड.
2: तो या, तो मैंने जस्ट लास्ट मंथ ये चैलेंज एक्सेप्ट किया एंड मैंने ऑनलाइन, आई एम वेरी बैड एट टेक्नोलॉजी, बट मैंने ऑनलाइन फर्स्ट सेशन दिया है उनके बच्चों को एंड एज एन इमोशनल इंटेलिजेंस मेंटोर.
0: क्या बात है, वाओ, आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय दिस दिया. ओह फैंटास्टिक. एंड यू सेड द नेम इज चक्षु एंड
2: नितिन.
0: नितिन, ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. टेक केयर.
2: थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय
0: बाय. हम गुड मॉर्निंग, किन से बात हो रही है?
3: नमस्ते कशिका जी, सुनील बोल रहा हूँ.
0: बोलिए सुनील जी.
3: मैं शाउट आउट करना चाहता हूँ अपने टीचर्स को.
0: हाँ.
3: स्कूल टाइम में जितने भी मेरे टीचर्स थे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया. चलो हर टीचर वैसे तो स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं, बट आउट ऑफ द लाइन जाकर भी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि हमारे घर की फाइनेंशियल हालत इतनी अच्छी नहीं थी तो मैं आगे स्टडी के लिए इतना वो कर नहीं पा रहा था. तो उन्होंने मुझे हर तरह से फाइनेंशियली स्टडी मटेरियल, और यहाँ तक कि मेरे 5 साल तक मेरे स्कूल ने माफ कर दी सबसे. तो आज मुझे लगता है कि जितना मेरे माता पिता का हाथ है मेरे एजुकेशन में, उतना ही मेरे टीचर के भी सपोर्ट है कि मैं यहाँ पे.
0: क्या नाम है आपके टीचर का?
3: मोहन लाल पाठक.
0: मोहन लाल पाठक, ओ वाओ, वेरी नाइस, वेरी इंस्पायरिंग. थैंक यू सो मच सुनील, थैंक यू.
3: थैंक यू कशिका जी,
0: थैंक यू, बाय
3: बाय.
0: इन तीनों के नाम तो मैंने ड्रॉ में ऐड कर ही लिए हैं एंड $300 कैश जीतने के लिए जो 6 नवंबर के दिन ड्रॉ होने वाला है.
4: इस दिवाली सिर्फ घर नहीं, रिश्ते भी रोशन करें. एक दिया एक कहानी के साथ जुड़िए दिवाली पूजा, पूजा विधि, दिवाली पूजा सामग्री और दिवाली रामायण गाथा के साथ. हर दिया एक कहानी कहेगा और हर दिल अपनों के और करीब आएगा. हम की ओर से आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं. ब्रॉट टू यू बाय फाइनेंस वर्ल्ड. रामायणा मूवी बाय फोरम फिल्म्स, इंडेलिबल होम्स, लोटस फॉरेन एक्सचेंज, एबीसी बिजनेस कंसल्टेंट्स, सोना संसार, पैशन लैंडस्केप, अम्मास फूड, पीएफएसएल, अर्जुन सुपरमार्केट, बिग बाजार एंड फॉर्च्यून फूड्स.
5: Power into summer with Powerball. There's 100 extra prizes of $20,000 that must be won. Get a triple dip at your local Lotto NZ store or online. Prizes drawn 17th October. T's and C's apply.
6: Get the bold new flavors of Subway rice bowls, like chicken teriyaki or green goddess falafel, packed with protein, fiber, warm brown rice and your choice of salads from just $11. Eat fresh with new Subway rice bowls.
7: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है? क्या आप हिम्मत हार चुके हैं? तो एक मौका मुझे देके देखिए. हाय, मैं हूं गुरु खंडोला फ्रॉम लॉजिक फाइनेंस. जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूं. लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला बातों में नहीं काम में विश्वास रखते हैं.
8: टर्म्स कंडीशन फीस एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई. कॉल लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला को ऑन 0800 लॉजिक जी व्हिच इज 0800 5644424.
9: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास है. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
10: दिवाली आई खुशियां लाई. PFSL स्पेशल ऑफर लेकर आया है. अपने ड्रीम होम का सपना सजाएं. PFSL के साथ होम लोन करवाएं. $400,000 या उससे ज्यादा का एलिजिबल लोन सेटल करें और $250 का गिफ्ट कार्ड घर ले जाएं. 50 इंच टीवी के लकी ड्रॉ में भी एंट्री पाएं. तो इस दिवाली खुशियां बढ़ाएं. PFSL के साथ अपना ड्रीम होम सजाएं. सर्च PFSL और कॉल ऑनलाइन 8469934. टर्म्स एंड कंडीशंस एंड लेंडिंग क्राइटेरिया अप्लाई.
11: Your favorite parking app has changed names. The AT Park app is now the AC Parking app. It has a new name and looks a little different, but the way you park stays as easy as always. Your account, vehicles and login details stay the same too. To make it even more of a smooth ride, your app should have updated automatically or prompted you to do it. Search Auckland Council AC Parking for more. Tāmaki Turiki, All Together Auckland.
12: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो.
13: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है. सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
14: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994939 और विजिट legalassociates.co.nz.
15: How does one person finance on a new Jeku sound? Right now at West City Omura Jeku, get one person per annum fixed finance for 36 months with a 20% deposit on the Jeku J7 SHS. And it's just dropped $2,000 in price, now starting from $47,990 plus on-road costs. Talk to Jimmy Taylor and team at West City Omura Jeku for full terms.

0: Factor.
1: Eat better, live better. लेकिन six word story इस बार मैं रखने वाली हूँ about dancing during the नवरात्रि. तो चलो भाई, इसके लिए आपका time भी ज़्यादा मैं नहीं लूँगी, लेकिन आपको एक बात और भी बताना चाहती हूँ. Election special में खड़क सिंह ठाकर नीनी के जो candidate हैं labour के, ये बातचीत करने वाले हैं small business and cost of living, supermarket competition, retail crime, community safety, policing, policing एंड साथ साथ ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर इनका विजन क्या है ठाकर नीनी एंड साउथ ऑकलैंड के लिए. तो लेटेस्ट पॉलिटिकल डिबेट जो है क्रिस्टोफर लक्सन एंड क्रिस हिपकिंस की, उन्होंने उसके ऊपर भी एक अपना टेक दिया है. 5599 पे आप ड्राइव लिख के भेजें एंड आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगी.
0: सिक्स वर्ड स्टोरी.
1: ओके, मेरी सिक्स वर्ड स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि आज मैंने सोचा कि टाइम शॉर्ट था, क्योंकि आई वाज सो एक्साइटेड एंड गॉट कैरिड अवे विद द लवली स्टोरीज जो आपकी लाइफ के दिया हैं उनके ऊपर. मतलब क्या कमाल है. वैसे सावित्री, थैंक यू फ्रॉम पापा टोइटो. शर्मिला 5018, थैंक यू. भूमि फ्रॉम माउंट रॉस्कल. विशाल 8968, एंड या दैट्स ग्रेट. आई मीन ब्यूटिफुल लवली डिटेल्स आपके जो हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर. तो चलो, यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं. एंड थैंक यू फॉर मेकिंग माई डे. विजय और पूजा तो है ही नहीं इस शो में. अभी BF लिख के भेजा आपने 6676. अब उनके टाइम पे तो उनका ही वो आप ऐड कर सकते हैं. आप फॉर्च्यून सोदी लिख के भेज रहे हैं तो वो भी अभी आपके लिए डिटेल्स जो है थोड़ी उलट पुलट हो रही हैं. कोई बात नहीं, आई एम जस्ट गोइंग टू बी टेकिंग दिस फर्दर. तो मेरी कहानी है नाइन नाइट्स एंडलेस रिदम डिवाइन ग्रेस. नाइन नाइट्स एंडलेस रिदम डिवाइन ग्रेस.
0: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स. बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: Kashika.
1: Wah.
2: How?
1: I'm good.
3: महंगाई तो भाई पूछे मत किस तरह से आ जाती है, लेकिन ऐसे में फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून में आपको बता देती हूँ, $5,000 वर्थ के हम प्राइजेस दे रहे हैं। उसमें से एक प्राइज है फ्यूल के वाउचर्स। अब $1,000 का एक फ्यूल का वाउचर एक विनर लेके जाने वाला है। और अब एक थैंक यू टू इंडेलिबल होम्स जो आपके बिल्डिंग एक्सपर्ट हैं। इनसे अगर आप बातचीत करना चाहते हैं indelibleholmes.co.nz की वेबसाइट आप पहुँच सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको यही अब आपको लिख के भेजना है, IH लिखिए, और IH लिखने के बाद आपको लिख के मुझे बताना है कि आपकी पहली गाड़ी कौन सी थी। आपको बस यही लिख के मुझे बताना है। एंड यस, आई विल बी पुटिंग योर नेम इनटू द ड्रॉ। अपना नाम लिखिएगा ज़रूर। एंड चलिए, आपका टाइम अब शुरू करने वाली हूँ। अगले गाने तक के लिए आपको टाइम देती हूँ।
4: Gentlemen, unfiltered with Sandy and Rizvi, क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं, और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real, और conversations होते हैं बिना mask के।
5: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
4: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rova, Spotify और anywhere you get your podcast.
6: बिग बाजार में बिगेस्ट रेंज ऑफ पूजा घर मिल रहे हैं। प्योर मार्बल मूर्तिज, कॉपर मूर्तिज, गन मेटल मूर्तिज, देवी देवताओं के वस्त्र, सभी तरह के हार एंड एक्सटेंसिव रेंज ऑफ पूजा आइटम्स, बिग रेंज ऑफ कंसोल टेबल्स, मिरर्स, कर्टन्स, सोफा कवर्स, बीना एंड लाहौर ब्रांड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी अवेलेबल है। बिग बाजार 302 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोई टोई, योर वन स्टॉप शॉपिंग।

0: 35 minutes and we've moved 3 kilometers.
1: Welcome to peak hour commute, babe.
0: Maybe I should use this time to check if I'm eligible to vote.
1: Over 18? Lived here for more than a year? And a resident for electoral purposes?
0: Yeah, that sounds like me.
1: Then why don't you enroll now? Only takes a few minutes.
0: Well, you're driving, so I'll do it now.
1: That was quick and easy.
2: Last chance to enroll is midnight 25 October. Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
3: How does one person finance on a new Jayco sound? Right now at West City Omura Jayco, get one person per annum fixed finance for 36 months with a 20% deposit on the Jayco J7 SHS. And it's just dropped $2,000 in price, now starting from $47,990 plus on-road costs. Talk to Jimmy Taylor and team at West City Omura Jayco. For full terms and conditions, head to westcityautogroup.nz.
4: विदेश से लोगों को यहां काम करने के लिए अब एम्प्लॉयर अक्रेडिटेशन कंपलसरी हो गया है इमिग्रेशन के नए रूल्स और परेशानियों से बचने में आपको मदद करेंगे ओकलैंड साउथ इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के अतीश नारायण अपॉइंटमेंट्स के लिए फोन करें 0800-168-472 पर अतीश नारायण और उनकी टीम आफ्टर आवर्स और वीकेंड्स पर भी अवेलेबल रहते हैं फॉर मोर डिटेल्स विजिट देयर वेबसाइट asic.co.nz
5: बिग बाजार में बिगेस्ट रेंज ऑफ पूजा घर मिल रहे हैं प्योर मार्बल मूर्तिज कॉपर मूर्तिज गन मेटल मूर्तिज देवी देवताओं के वस्त्र सभी तरह के हार एंड एक्सटेंसिव रेंज ऑफ पूजा आइटम्स बिग रेंज ऑफ कंसोल टेबल्स मिरर्स कर्टन्स सोफा कवर्स बीना एंड लाहौर ब्रांड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी अवेलेबल है बिग बाजार 302 ग्रेट साउथ रोड पापा टोय टोय योर वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन दिस नवरात्रि

0: Factor.
1: Rescue me, recycle me.
2: रेस्क्यू मी रिसाइकल मी जब बात आती है तो भाई बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं कर पाते या हमें लगता है ओ माय गॉड ये करेंगे तो ऐसा होगा, वो करेंगे तो वैसा होगा। लेकिन कभी कभी ये जो मखाने हम घर में लेकर आते हैं, ये मखाने हमें बहुत तरीके से बनाने के लिए आते हैं और कुछ लोग तो सिर्फ जस्ट रोस्ट करके मखाने खा लेते हैं। वॉट अबाउट चेंजिंग इट इंटू समथिंग एल्स? सो आपको मैं बताना चाहती हूँ अबाउट समथिंग इंटरेस्टिंग। अब आप मखाने की खीर बना सकते हैं। इसको मखाने को आपने हल्का सा रोस्ट कर लिया, ठीक है, आपको लगा कि कढ़ाई में से ज़्यादा नमकीन का एक तरफ आपने बना के रख दिया, दूसरी तरफ इन जो मखाने हैं आपको इनको जो रोस्ट करने के बाद उसको ठंडा हो करने के बाद आप उसको ब्लेंडर में पीस लीजिएगा। दूध के साथ आपने मखाने की खीर बनाई और आप देखिए क्या ज़बरदस्त टेस्ट आपका आ जाता है। देखिए लेफ्ट ओवर्स में आप इसी तरह बात कर सकते हैं। हाँ, अभी मैं फ्यूल के बारे में बातें कर रही थी तो आपको बता देती हूँ, जो क्रूड ऑयल के प्रोड्यूसर्स हैं, ओनर्स हैं, जो रिफाइनरीज के एंड न्यूजीलैंड गवर्नमेंट, दे आर अमंग्स द मोस्ट हु आर मेकिंग मोर मनी इन फ्यूल प्राइसेस, जो हाईएस्ट अब पहुँच चुका है अकॉर्डिंग टू गैस प्राइस कंपेरिजन ऐप गैसपी। ये एवरेज प्राइस 91 फ्यूल की है $3.60, डीजल इज स्टिल सिटिंग एट $3.23। चलिए मैंने आपसे कहा था ना आपकी एंट्री मैं ले रही हूँ, आप अपनी एंट्री फटाफट मुझे दे दीजिए। इस गाने की शुरुआत के हाफ तक आपकी, चलो मैं एंट्री इस गाने के एंड तक आपकी एंट्री लेने के लिए तैयार हूँ। याद रहे आपको क्या बताना है, IH लिखना है, आपको ये बताना है कि ऐसी कौन सी गाड़ी है जो आपकी पहली गाड़ी थी, आपकी पहली राम प्यारी थी।
0: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: दुबई 0800 रचना इधर उधर जाने से बचना कॉल करो 0800 रचना दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स इन्वेस्टर्स बिजनेस लोन कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन
1: तो चलिए फिर कीजिए स्वीकार काशी का नमस्कार आज का दिन कहलाता है आपके लिए सोमवार आने वाला पूरा हफ्ता आपके लिए और भी जोरदार दमदार और शानदार बना रहे बस यही हमारी मनोकामना है और यस आपका अगर नवरात्रि का फास्ट चल रहा है तो नवरात्रि की शुभकामनाएं आपको और भाई आप जा रहे हैं डांडिया वगैरह करने तो ऐसे में भी आप लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट कीप ऑन डांसिंग कीप ऑन हमिंग हम कीजिएगा हमारे साथ दिस इज काशिका साइनिंग ऑफ फ्रॉम द हम स्टूडियोज टेक केयर बाय बाय

क्या ओरा नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, आपका स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के खूबसूरत शो में। इसका नाम है, मेरा शो का नाम है लंच बॉक्स शो। मेरा नाम केतन है और मैं अब इसलिए कह हूं 3 बजे तक बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी गपशप करेंगे, एक से बढ़कर एक गाने चलाएंगे और यहां पे ऑफकोर्स कुछ मौके भी देने वाला हूं। फेस्टिव सीजन चल रहा है तो जो भी कॉम्पिटिशन्स यहां पे चल रहे हैं आपके सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यू स्टे ट्यून एंड आप बस बने रहिए, बहुत सारी खबरें लेके आने वाला हूं। सो यस, स्टे ट्यून एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस अमेजिंग सॉन्ग। मेक श्योर आप होम सिक रेमेडीज के लिए मुझे मैसेज भेजिए आज, देखते हैं। वैसे यस, इस आर में या फिर नेक्स्ट आर में आई विल बी टेलिंग यू वन अमेजिंग स्टोरी जो कि हॉरर से रिलेटेड होगी, तो आप बस बने रहिए, सुनते रहिए मेरा लंच बॉक्स शो।

0: होमसिक रेमेडीज के लिए ये रहा मैसेज। सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं आज के इस लंच वॉक शो में फिर से। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन, अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो। बट अगर आप मुझे सुन रहे हैं 10 मिनट पहले से तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे यस, ये मैसेज आया है आकाश भाई का। आकाश भाई कहते हैं, क्यों रखे दिन, फिनिश माई वर्क शिफ्ट एट 5 PM yesterday एंड ड्रोव स्ट्रेट टू द शॉपिंग सेंटर टू बाय अ पेयर ऑफ शूज एंड रन अ फ्यू क्विक errands. I reached there at 5:15 only to find out every single retail store pulling down their metal shutter, shutting off lights and locking up. Some are closing their glass windows, glass doors. And yes, back home in Mumbai, 5 p.m. is when the evening life just begins. Market stays vibrant and open till 10 p.m. and you can shop peacefully after work. यहाँ पे ऑकलैंड में as soon as the sun goes down, the whole city turns into an empty ghost town on weekend. Sitting in a dark car in a deserted mall parking lot made me feel so isolated and bored. How do you cope with the city that sleeps at 5 PM? Bro, सबसे पहले तो thank you so much for sending the message. And weekend का इतना जल्दी थोड़ी ना market बंद होता है, but I don't know what part of Auckland you are living at. आपने वो तो बताया नहीं है, but yes, weekend का I feel that the thing is all right. I mean, हाँ, obviously आप compare करोगे India से तो definitely यार, मतलब इतना कुछ है नहीं यहाँ पे. बट स्टिल वीकेंड इतने बुरे नहीं होते हैं, बट अगर वीकेंड का भी अगर देखें, सॉरी वीकेंड का ऑब्वियसली इतना कंप्लेन नहीं कर सकते, बट वीकडेज में ऑब्वियसली यू नो अभी तो खैर दिन भी बड़े हो रहे हैं, सम मॉल्स टाइमिंग हैज बीन चेंज्ड, डेलाइट सेविंग हुई थी लास्ट मंथ, तो आप डेफिनेटली टाइम थोड़ा बाहर निकाल सकते हो. इनफैक्ट आई नो फ्यू प्लेसेस जहाँ पे यू कैन स्टे, यू कैन गो देयर लिटिल आफ्टर आवर्स एंड वहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं. सम ऑफ द मॉल्स डू गेट क्लोज, बट यहाँ पे आप मुझे बताइए, सजेस्ट करिए टू माई बाकी के लिसनर्स, कोई ऐसा मॉल है जहाँ पे आकाश भाई विजिट कर सकें एंड टू शॉप अराउंड आफ्टर 5 एज वेल ड्यूरिंग वीकडेज. वीकेंड तो डेफिनेटली आई फील लाइक सम ऑफ द मॉल्स डू ओपन फॉर लिटिल लॉन्गर. बट एक और सुझाव दे सकता हूँ, देसी जुगाड़ बता देता हूँ. सबसे पहले रूल, ऑकलैंड के रिटेल इकोसिस्टम को समझो. यहाँ पर कोई भी दिन हो लेट नाइट शॉपिंग होती है. इनफैक्ट आप ये भी पता कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू गो, तो यहाँ पे नाइट मार्केट भी लगता है काफ़ी जगह. फॉर एग्जांपल पापड़ टोटो में फ्राइडे नाइट को लगता है इफ़ यू वांट टू गो देयर, और कहीं ट्यूसडे, कहीं मंडे. सो देयर इज डिफरेंट प्लेसेस वेयर यू कैन गो एंड यू नो डू अ नाइट शॉपिंग इफ़ यू वांट टू. उसके बाद ऑफ कोर्स कुछ अगर खाने पीने को है तो काफ़ी ऐसी जगह हैं जो लेट नाइट तक भी खुलने रहने शुरू हो चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल पापड़ोटे में जहाँ मैं रहता हूँ तो वहाँ पे एक शॉप है, वो 11 बजे तक खुली रहती है. इफ़ यू वांट टू हैव सम टी और स्नैक्स और स्ट्रीट फूड्स ऐसा कुछ अगर खाना है तो काफ़ी बढ़िया मार्केट वहाँ पे खुल गया है. और अगर आप सेंडिंगो में जाएंगे, सेंडिंगो में भी मुझे अभी रिसेंटली पता 2 बजे तक खुला रहता है. एक स्टॉल है वो 2 बजे तक, दो नहीं एक्चुअली सुबह की 4 बजे तक खुला रहता है. और जैसे ही मैंने मॉम डैड को वो 4 बजे का बताया सेंडिंगो में, पापा इज़ लाइक हाँ ये हमारे यहाँ पे भी हुआ करता है, यू नो 4 बजे और ये आप पोहे खा सकते हो, जो चाहे खा सकते हो एंड ऑल. मैंने कहा अब यहाँ पे भी वैसा ही माहौल हो रहा है धीरे धीरे. बट यस, इफ दीज आर एग्जैक्ट थिंग यू आर आफ्टर, यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शन बताया है. और यहाँ पे अगर कोई और भी है जो मुझे सुन रहा है, आप प्लीज़ लेट मी नो कुछ और भी सजेशन अगर आप देना चाहें आकाश भाई की हेल्प करो, ताकि ये ऑकलैंड को नेक्स्ट टाइम गोस्ट टाउन नहीं कहे. राइट, लंच बॉक्स विद केतन.
1: मुझे पसंद है लड़का. हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
2: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ.
1: बढ़िया है. अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए. और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
2: इंटरेस्टिंग, और कुछ?
1: बस इतना ही.
2: सर मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
3: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry. And Fortune, bring home the fortune.
4: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
5: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
6: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
7: It's Macca's 50th birthday, and to celebrate, we're giving you 1 in 3 chances to win food prizes. Order ticketed items using the Macca's app to play. The more the merrier at Macca's 50th. T's and C's apply.
8: How does one person finance on a new Jeku sound? Right now at West City Omura Jeku, get one person per annum fixed finance for 36 months with a 20% deposit on the Jeku J7 SHS. And it's just dropped $2,000 in price, now starting from $47,990 plus on-road costs. Talk to Jimmy Taylor and team at West City Omura Jeku. For full terms and conditions, head to westcityautogroup.nz.
9: Save big at Rebel and get the family sorted for the summer season. Take 15% off all kids' Nike clothing. Their selected big brand kids and adults tees, 2 for $50. Plus, get 20% off selected bags and bottles. Summer value is on now, only at Rebel Sport. See you on T's and C's.
10: मैं हूँ हरीश लोडिया। दिवाली के धूम एट सोना संसार नया स्टॉक्स ऑफ 22 कैरेट ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी की स्टॉक्स आ गया है। सिल्वर स्टॉक्स और सोने और चांदी की बिस्किट्स आ गया है। लक्ष्मी गणेश और प्योर चांदी के मूर्तियाँ वो भी आ गई है। डायमंड ज्वेलरी इंक्लूडिंग न्यू अराइवल्स ऑल एट हाफ प्राइस। सोना संसार 190 स्टोरार्ड रोड माउंट रॉस्किल या फिर 138 ग्रेट साउथ रोड पेपरटोए कॉर्नर ऑफ ईस्ट तमाकी एंड ग्रेट साउथ रोड। हमारा फोन नंबर 6293333। फॉर स्पेशल डील्स विजिट आवर वेबसाइट sonasansar.co.nz।
11: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
3: Non-stop Bollywood.
12: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
3: हम playing Bollywood's biggest hits.
13: Lunchbox with Ketan.
14: हीरा लड़का है। टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़े लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
13: हम
3: Top hit of the hour. Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

वेलकम बैक, स्वागत करते हैं आज के इस लंच बॉक्स शो में फिर से। एंड हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं। स्टोरी में न्यूजीलैंड की हिस्ट्री का एक बहुत ही पेनफुल चैप्टर है। वेल, पेस चेंदेल की बैटल जो है, जिसे न्यूजीलैंड का ब्लैकेस्ट डे कहा जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान आज के दिन 1917 को बेल्जियन टाउन के पास न्यूजीलैंड सोल्जर्स ने अटैक किया, लेकिन मडी ग्राउंड, बेप्ड वायर और जर्मन मशीन गन फायर की वजह से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। वैसे यस, आज ही के दिन 1917 को इस बैटल में 843 न्यूजीलैंड सोल्जर्स की जान गई थी और वो मॉर्टली वाउंडेड हुए थे, यानी कि वो शहीद हुए थे। करीब 2700 न्यूजीलैंड ट्रूप्स कैजुअल्टी का शिकार हुए। मड और डिफिकल्ट बैटलफील्ड कंडीशन की वजह से आर्टिलरी सपोर्ट भी इफेक्टिव नहीं था और आखिरकार अटैक फेल हो गया और वाउंडेड सोल्जर्स में से कई रेस्क्यू होने से पहले ही शहीद हो चुके थे। वैसे इस दिन को न्यूजीलैंड की हिस्ट्री में आज भी उन सोल्जर्स की सेक्रीफाइस और वॉर की टेरिबल ह्यूमन कॉस्ट के लिए याद किया जाता है। हमें याद दिलाता है कि ये लोकेशन हमें याद दिलाती है कि वॉर के पीछे सिर्फ बैटल्स और विक्ट्रीज ही नहीं, बल्कि हजारों फैमिलीज का लॉस और दर्द भी होता है।

वेलकम बैक। देखिए आज बर्थडे जो है वो बहुत ही बढ़िया है। शक्ति मोहन, आप काफी जाना माना नाम हो चुका है, अभी काफी फिल्मों में भी आई है, लेकिन यस उनकी शुरुआत जो है, लेट मी टेल यू, दीज आर थ्री सिस्टर्स, शक्ति मोहन, नीति मोहन और एक और नाम है मैं मिस आउट कर रहा हूँ, एक एक्टर है, एक सिंगर है बहुत ही अच्छी और एक ऑफकोर्स डांसर है। वेल 1985 में ये बॉर्न हुई थी दिल्ली में। प्रोफेशन इनका डांसर है और मेरे ख्याल से ABCD 2 में भी आ चुकी है। जी हाँ, वैसे शक्ति मोहन को पहली बार आपने देखा होगा Season 2 के ZTV के डांस रियलिटी शो डांस इंडिया डांस में, जब उन्होंने जीता था ये डांस प्लस सिंस 2015 टू 2019। उसके बाद काफ़ी कंटेस्टेंट और फाइनलिस्ट ऑन झलक दिखला जा, इसमें भी उन्होंने पार्ट लिया था। हर फर्स्ट सॉन्ग एज अ कोरियोग्राफर इन बॉलीवुड वॉज नैनो वाले ने, पद्मावत मूवी का इन्होंने पूरा कोरियोग्राफ किया था। उसके बाद शी ओन्स हर ओन डांस ब्रांड कॉल्ड नृत्य शक्ति, ये उन्होंने अपना पूरा बहुत ही बढ़िया तरीके से खुद का ब्रांड जो है उसे मार्केट में रखा हुआ है, विच इज़ गोइंग सो ग्रेट। एंड उनके बाद उन्होंने जज भी किया है कुछ एंड मेंटर इन द डांस कॉम्पिटिशन कॉल्ड डांस प्लस, वहाँ पे इन्होंने जज भी किया था। एंड शी इज़ द यंगर सिस्टर ऑफ नीति मोहन एंड यस द ओल्डर सिस्टर ऑफ मुक्ति मोहन, यस दैट्स द वन। नीति मोहन जो है वो है सिंगर और मुक्ति मोहन जो है वो एक्टर है। बहुत ही अमेजिंग ट्रिपलेट ही कहेंगे ना इसको, तीन हैं तो ऑफ कोर्स ट्रिपलेट ही कहेंगे, राइट? लंच बॉक्स विद केतन, मुझे पसंद है लड़का। हाँ।

0: Breakfast with Ketan.
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
2: हम मार्च 2027 एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
0: रुजबे टिकट्स बुक हो गए
2: तो फिर देर किस बात की। बाली बुला रहा है,
0: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
0: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
2: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
1: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
2: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजवे, ओनली ऑन हम।
5: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास है। Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
6: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है? क्या आप हिम्मत हार चुके हैं? तो एक मौका मुझे देके देखिए। हाय, मैं हूँ गुरु खंडोला फ्रॉम लॉजिक फाइनेंस। जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूँ। लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला बातों में नहीं काम में विश्वास रखते हैं।
7: टर्म्स, कंडीशन, फीस एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई। कॉल लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला को ऑन 0800 लॉजिक जी, विच इज 0800 5644424।
8: दिवाली आ रही है और फॉर्च्यून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका। लोटस मैनिकाओ, माउंट रॉस्किल या बोटनी एंड नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी टू फॉर्च्यून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश। साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट। बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो। फॉर्च्यून दिवाली, बी इन टू विन, एंड्स 15th November। टीज एंड सीज अप्लाई।
9: विदेश से लोगों को यहाँ काम करने के लिए अब एम्प्लॉयर अक्रेडिटेशन कंपलसरी हो गया है। इमिग्रेशन के नए रूल्स और परेशानियों से बचने में आपको मदद करेंगे ऑकलैंड साउथ इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के अतीश नारायण। अपॉइंटमेंट्स के लिए फोन करें 0800-168-472 पर। अतीश नारायण और उनकी टीम आफ्टर आवर्स और वीकेंड्स पर भी अवेलेबल रहते हैं। फॉर मोर डिटेल्स विजिट देयर वेबसाइट asic.co.nz।
10: बिग बाजार में बिगेस्ट रेंज ऑफ पूजा घर मिल रहे हैं। प्योर मार्बल मूर्तिज, कॉपर मूर्तिज, गनमेटल मूर्तिज, देवी देवताओं के वस्त्र, सभी तरह के हार एंड एक्सटेंसिव रेंज ऑफ पूजा आइटम्स, बिग रेंज ऑफ कंसोल टेबल्स, मिरर्स, कर्टन्स, सोफा कवर्स, बीना एंड लाहौर ब्रांड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी अवेलेबल है। बिग बाजार 302 ग्रेट साउथ रोड, पापटोई, योर वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन दिस नवरात्रि।
11: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Huge side-by-side black stainless steel fridge freezers, just $699. Midea inverter heat pumps with Wi-Fi from just $699. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
12: न्यूजीलैंड के रीसेंट फ्लड्स ने काफी डैमेज किया है। फोकस किचन सारे न्यूजीलैंडर्स की तरह इन विक्टिम्स के साथ खड़े हैं एंड आर हेल्पिंग देम गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ बाय हेल्पिंग देम आउट विद देयर किचन कैबिनेट्स। फोकस किचन प्रोवाइड कर रहे हैं अ वेरी स्पेशल प्राइस फॉर पीपल विद फ्लड डैमेज किचन्स। कॉन्टैक्ट फोकस किचन ऑन 0928130050, यूनिट के 33 वॉम्सली रोड, ओटाहूहू। फॉर इन्फो एंड डिजाइन आइडियाज विजिट focuskitchens.co.nz।

0: Chutney Shots.
1: चटनी शॉट के सेगमेंट में स्वागत है। ये रही फटफट खबर। फटफट तो क्या, एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग आई और मुझे लगा शायद मैं आपके साथ शेयर करूं। इनका खेल के क्वींस पार्क में 2 अक्टूबर को एक यंग गर्ल पर सीरियस असॉल्ट हुआ है और अब पुलिस उन दो गुड जो एंट्रेंस है को ढूंढ रही है, जिन्होंने उस लड़की के साथ असॉल्ट किया है उन्हें भी ढूंढ रही है। घर तक तो पहुंचा दिया और हेल्प भी की है, बट यस, पुलिस के मुताबिक एक कपल ने रात लगभग 10 बजे के मिडनाइट के बीच लड़की को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी और उसे घर छोड़ा। कपल की कार ऑरेंज या उसके आसपास के कलर की हो सकती है। पुलिस को अभी एग्जैक्ट लोकेशन कंफर्म नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि लड़की को केल्विन गाला या हर्बर्ट स्ट्रीट के आसपास देखा गया है। क्वींस पार्क के पास पिक भी किया गया था और इस इंसिडेंट के संबंध में 2 यंग पीपल को अरेस्ट भी कर लिया है और वो पिछले हफ्ते इन्वकागल यूथ कोर्ट में पेश हुए थे। उन्हें 23 अक्टूबर को दोबारा कोर्ट में अपियर होने को कहा गया है। सो यस, पुलिस अब उस कपल और किसी भी आई विटनेस से सामने आने की अपील कर रही है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप पुलिस को कॉल कर सकते हैं 105 और उन्हें रिपोर्ट दे सकते हैं।
2: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: मैं नहीं नाचूंगा वाचूंगा।
1: ओए पुत्तर नचना, भैन की सगाई च तो पैनू नचना ही पैंदा।
0: हाँ हाँ तो फिर बड़े भैया को नचाओ ना।
2: क्यों, तेरी भी तो भैन है।
3: ए गल चंगी बोली।
4: ओ कम ऑन शेखर, नाचो ना।
0: नहीं नहीं मुझे नहीं नाचना।

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम.
2: Lunchbox with Ketan.
3: हीरा लड़का है. Telescope लेके ढूंढेगा ना तो भी.